शांति और ऊर्जा के साथ करने की, तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दिव्य दर्शन के एक और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही पवित्र प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हम हमेशा बात कर रहे हैं कि ये विषय गूढ़ है, ये मजे मजे का विषय नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से हम कुछ ऐसे प्रबुद्ध इंसानों को, प्रबुद्ध व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं जिससे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ समझा हो और हमें वो उस बात को समझा सके। तो आज मेरे साथ जो मेहमान हमारे साथ उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं, वो हैं अनिल गौड़ साहब। बाकी मैं अनिल गौड़ साहब से ही प्रार्थना करूंगा, उनका आभार व्यक्त करते हुए, उनका स्वागत करते हुए, कि अनिल जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, जिससे कि हमारे जानने वाले जो इस हमारे सुनने वाले जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो अनिल जी के साथ आध्यात्मिक तौर पर जुड़ सकें। तो अनिल जी बहुत बहुत आभार है आपका जो आप आए। अब आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें परिचय दीजिए, भला आप कौन हैं?
1: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार आपको समीर जी। और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि आप कौन हैं, और ये जो कौन का जो जवाब है यही स्पिरिचुअलिटी में छुपा होता है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हम क्यों हैं। और इसी का जवाब जब मिल जाता है लोगों को तो वो निश्चित तौर से आगे बढ़ जाता है। जहां तक मेरा सवाल है, जो मेरा परिचय है वो ये, मैं कानपुर शहर का निवासी हूं और आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूं। और जहां तक भगवत भक्ति की बात है, स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो ये संवेदनाओं का विषय है। और चूंकि मैं कलाकार हूं तो जाहिर सी बात है कि कलाकार संवेदनशील होता है और वो आसपास जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कानपुर शहर में रहता हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता हूँ, संगीत का विद्यार्थी हूँ, गीत वगैरह गाता हूँ, और साथ में एक अभियान चला रहा हूं अपनी तरफ से कि स्पिरिचुअलिटी, धर्म, रिलीजन और इससे जुड़ी जो विषय है जिसमें काफी कुछ भ्रांतियां भी हैं लोगों के मन में, काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही रास्ते पर नहीं जा रही, तो क्यों ना उन्हें जागृत किया जाए अपने भजनों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से। तो वो प्रयास मैं करता रहता हूँ, मेरे लेख अखबारों में भी छपते हैं। और ये जो आपके पास आपने जो हमें बुलाया है और इसके लिए आपने जो इंटरव्यू किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं अपने विषय को कह पाऊंगा। बाकी तो बस ये ऐसे ही है, बस एक छोटा सा प्राणी हूँ इस धरती पर और अपना प्रयास, अपना कर्तव्य कर रहा हूँ।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी परिचय, बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ताकतवर। आपने बहुत ही प्यारी बात कही अनिल भाई की, आप कोशिश कर रहे हैं आध्यात्म, धर्म, सनातन

0: इन सब चीजों के बारे में लोगों को और ज्यादा पहचान कराने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, उनको जगाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ही, मेरे दिमाग में अचानक ये सवाल कौंध गया है आपके बात करने से कि इसकी क्या आवश्यकता है। अनिल भाई, जो आप कोशिश कर रहे हैं सचमुच बहुत ही ज्यादा उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन एक साधारण इंसान होने के नाते, मैं एक बिल्कुल ही साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी कोशिश है उससे, मैं स्वार्थी होके पूछूं, मुझे क्या फायदा होगा।
1: हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि ये जितने भी स्पीशीज हैं इस दुनिया में आते हैं, जीव जंतु और जितनी भी चीजें आपकी जो पूरी की पूरी सृष्टि में विद्यमान है, इसमें मानव भी योनि जिसको ये आदमी बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। और श्रेष्ठ इसलिए मानी गई है क्योंकि उसके पास दिमाग होता है और तर्क करने की क्षमता होती है जो कि जानवरों में नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो तर्क होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं। अब चूंकि हम बचपन से, जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे माता पिता और हमारे चारों तरफ का माहौल हमें जो भी समझाता है, जो भी बताता है, हम उसी को मान लेते हैं और उसी पर आगे बढ़ जाते हैं। ये ऑलमोस्ट 99% केसेस में होता है कि जो कुछ हमें जन्म से सिखाया गया है वो हम उसी को मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे कर्म कांड है, जो भी हमारा रिलीज जन है, हम ईश्वर को किस रूप में देखते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई जीसस कहता है, है ना। तो इस तरीके से जो जो जहां पैदा हुआ उसके हिसाब से उसको मिलता है। लेकिन आपको बताएं कि जब जब ये लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें बन गए कि उसमें कुछ धन का या कुछ प्रभाव बना ले, तो ऐसे में वो चीजें कहीं ना कहीं डिरेल्ड हो गई और पटरी से उतर गई और उसके जो विसंगतियां हैं, जो उसके विकार हैं, वो समाज में देखने को आते हैं। तो उसको ठीक करना, उसे ठीक से बताना और सही रास्ते पे लाना, ये हर बार हर समय पे होता रहा है।
0: साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इस चीज को क्लियर किया है कि ये प्रोग्राम या आपने, आपकी जो कोशिशें हैं, आपके जो प्रयास हैं, वो भला हम साधारण मनुष्यों के लिए जरूरी क्यों हैं। तो मुझे जो समझ में आया आपकी इस व्याख्यान से, आपकी इस बातचीत से, या जो आपने अभी बताया मेरे अपने लिए, कि बहुत बहुत ज्यादातर टाइम हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन आपने एक बात यह भी बताई कि हम में तर्क करने की या समझने की या तर्क वितर्क करके उसको सुलझाने की क्षमता है जो कि जानवरों में नहीं होती। तो हम आपकी बातचीत सुनकर या इस प्रोग्राम को सुनकर कुछ दृढ़ निश्चय कर सकते हैं, कुछ दृढ़ नियम कानून अपना सकते हैं जिससे कि हम डरे नहीं, कमजोर नहीं पड़े और धर्म को और आध्यात्मिकता को मतलब जो सांसारिक चीजों से है उससे न जोड़कर कुछ और ऊपर उठे। और उसके क्या फायदे होंगे वो अभी हम समझ ही लेंगे। तो जाहिर सी बात है ये प्रोग्राम जिस बारे में है, जिस बारे में हम सीखना चाहते हैं, वो है आध्यात्मिकता। तो अनिल जी प्लीज अपने शब्दों में हमें समझाइए, एक साधारण व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता से हम क्या समझें।
1: हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। और ये स्पिरिचुअलिटी, मैंने बोला ना कि वो जो तर्क करने की क्षमता है आदमी के अंदर, यानी कि वो कहीं कुछ सोच सकता है, समझ सकता है। तो जाहिर सी बात है, उसका जन्म हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने लोग, क्या वजह है हम यहाँ पे क्यों आते हैं और क्या वजह होती है हम चले जाते हैं, ये लगातार प्रोसेस चल रहा है। कौन सी ऐसी शक्ति जिसने इन सब चीजों का निर्माण किया है, तो इनसे जुड़ने का, इनसे कनेक्ट करने का और इसको समझ पाने का जो हमारे अंदर जो क्षमता है, वही स्पिरिचुअलिटी है। अब स्पिरिचुअलिटी में जाहिर सी बात आती है कि ये सवाल तो पैदा होता है कि ये सारी के सारे ग्रह नक्षत्र, पूरी की पूरी सृष्टि का निर्माण है ना, आकाश गंगा और हमारा पृथ्वी लोक, और इसके बाद सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं, तारे भी हैं, ये पेड़ पौधे, झील, झरने, ये सब चीजें रियली हमने नहीं बनाए हैं, ये किसने बनाए, कौन है इसका निर्माता। तो जाहिर से बात है कि सवाल पैदा होता है। फिर दूसरी बात आपको सच बताऊं तो जब इस सृष्टि के निर्माण के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बहुत बड़े फिलोसफर्स ने इसके बारे में शोध करना शुरू किया और अलग अलग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करी और बहुत कुछ उन्होंने बताया कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, प्रोटॉन था, ये था, वो था, परमाणु थे, आपस में टकराए, ताकत के साथ तैयार, तो इस तरीके से इन चीजों का निर्माण होना शुरू हुआ। ये उनके अपने लॉजिक्स हैं जिन्होंने अपने हिसाब से इस चीज को ढूंढने की और देखने की कोशिश करी, लेकिन आखिर में उन्होंने ये जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी मृत्यु क्यों होती है और हम जन्म कहां लेते हैं, ये दो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। कि हम जन्म कहाँ लेंगे और मृत्यु हमें बताने की कब होगी, इसका आज तक जवाब नहीं मिल पाया है। साइंस और दार्शनिक इसकी जबरदस्त खोज कर रहे हैं और लगातार चलता रहेगा। यही प्रोसेस है, यही इस पूरी सृष्टि का निर्माण है कि आपको तर्क दिया है, आप तर्क करिए और देखिए कि ये पूरा निर्माण कैसे है। इतनी खूबसूरत धरती, इतनी खूबसूरत दुनिया, ऐसे खूबसूरत इंसान, कितने कितने तरीके के चेहरे, कितने तरीके के लोग, कितने तरीके के पशु पक्षी, फूल पेड़ पौधे, क्या खूबसूरती से बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो चीजें बनी हैं, इनको जानने की कोशिश करना और उससे कनेक्ट करना, जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी प्रकृति बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए निर्माण करती है। हमेशा ध्यान रखिए समय जी कि जो पॉजिटिव व्यक्ति होगा वो निर्माण करेगा और जो डिस्ट्रक्टिव होगा वो निश्चित तौर से खत्म करेगा, जो नेगेटिव होगा वो डिस्ट्रक्शन करेगा। और इस तरीके के लोग आते रहेंगे दुनिया में, कुछ लोग पॉजिटिव होंगे, कुछ लोग नेगेटिव होंगे, और यही पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचाई जाए और उनको बताया जाए कि ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, ये इसके निर्माण के पीछे कौन सा उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है और इस किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो इसको जानने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना और मानवता के साथ, मानव लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करना और खूबसूरत जिंदगी बनाना, एक खूबसूरत दुनिया बनाना, ये हमारा फर्ज है, यही स्पिरिचुअलिटी है सर। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कुछ है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अनिल जी ने किस तरह से आध्यात्मिकता को यानी कि स्पिरिचुअलिटी को हमारी प्रकृति के साथ जोड़कर और इसके बनने के साथ जोड़कर समझाया है। तो बात बिल्कुल अनिल जी ने शुरू से शुरू की है कि कब, कैसे, क्यों ये प्रकृति आई और उसको किस किस तरीके से साइंटिस्ट्स ने दिया, दूसरे लोगों ने समझा, और फिर आध्यात्मिकता हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाती है। बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा रुकिए, विचार कीजिए जो अनिल जी ने अभी कहा है गहराई से। तब तक उन्हीं की आवाज में गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा सा भजन हम यहां सुनते हैं। यहां पर मैं ये भी बात जरूर जरूर बता देना चाहूंगा कि अनिल गौड़ साहब हमारे आज के कलाकार के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं। जब हमारा ये प्रोग्राम आज से 2 साल पहले शुरू हुआ था तो अनिल जी ने उस वक्त हमारा हाथ थामा था और उनकी गायकी अब आप सुनेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। चलिए इस भजन का आनंद उठाइए, मैं वापस लौटता हूं।

0: अति सुंदर, बहुत ही खूबसूरत भजन, हमेशा की तरह वही सधी हुई आवाज और वही सौंधी सौंधी खुशबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अनिल जी, आध्यात्मिकता को अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया जैसे आपने बताया, तो एक और शब्द है जो पीछे नहीं रहता, वो भी उसके अगल बगल ही घूमता है, वो है धर्म। तो जरा सा हमें धर्म भी समझाइए। किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन टोटैलिटी में, मतलब संपूर्णता में अगर देखें तो धर्म क्या है?
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और यही ये बहुत जरूरी भी है और यही बहुत सारी बोना कंटेंशन भी यही है, मतलब कुल मिलाकर के झगड़े की जड़ भी यही है। अब होता क्या है कि हमारी मानव प्रवृत्ति का स्वभाव होता है कि जो चीज भी हम पसंद करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, धारण करते हैं, उसी को हम श्रेष्ठ मानते हैं और हम कोशिश यही करते हैं कि बाकी लोग भी इसको समझें और उसी को फॉलो करें। एक एक मानव प्रवृत्ति होती है, इसमें कोई नहीं, हमेशा चलती रहेगी। अब बात आती है कि धर्म की बात आती है तो धर्म की व्याख्या गलत हो गई और धर्म को गलत तरीके से समझा गया। बेसिकली धर्म जो है वो कहते ना कि मानव धर्म, कि मानव धर्म क्या है, जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जितनी भी चीजें हैं जो इस दुनिया में आपको श्रेष्ठ बनाती हैं और दूसरों से जोड़ती हैं, वो धर्म को धारण करने वाली स्थिति, यानी कि आपको क्या क्या धारण करना चाहिए। तो जैसे धर्म के लक्षण बताए गए कि जो धारण करने चाहिए, धैर्य, क्षमा, सद्बुद्धि, स्वच्छता, विद्या यानी शिक्षा, अक्रोध यानी क्रोध ना करना, इंद्रिय संयम और चोरी ना करना, ये चीजें बताई गई हैं कि इस तरीके से। और निश्चित तौर से ये जितने भी मानक हैं, अगर हम सही तरीके से पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो करें तो हमारे कोई भी रास्ते हो जो जिसको हम धर्म कहते हैं, बेसिकली वो धर्म नहीं है। मैंने आपको बताऊं कि मैंने एक भजन लिखा है इसके ऊपर कि धर्म को प्रतीकों से कैसे अलग देखा जाए। तो मैंने जैसे इन सारी चीजों के बारे में बताया कि ये सब चीजें जो धर्म के आते हैं, जो एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए जो मैंने भी बताया कि धैर्य, क्षमा, सद्बुद्धि, संयम, स्वच्छता, विद्या, शिक्षा, क्रोध, इंद्रिय संयम, चोरी ना करना, ये सब बहुत जरूरी है। बट इसमें दो चीजें जो ज्यादा जरूरी जो मैंने जोड़ी आपको बताऊं, अगर ये सारी चीजें हों और उसके बाद अगर आपके अंदर करुणा और आपके अंदर प्रेम नहीं है, ध्यान रखिए समीर जी, एक करुणा और प्रेम सर्वोच्च है। अगर हम ये सारी चीजें अपने पास रखें, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इसके बाद अगर हमारे अंदर करुणा नहीं है और प्रेम नहीं है, तो ये धर्म हमारा किसी काम का नहीं रहता है। आपके अंदर करुणा और प्रेम बहुत जरूरी है और यही लोगों के साथ जुड़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने एक छोटा सा भजन लिखा था, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पढ़ के बता दूं।
0: जी
1: आपको, जी जी हाँ जी। तो मैंने लिखा था कि तिलक टोपी पगड़ी क्रॉस, देखिए तिलक सनातन में आ जाता है, टोपी इस्लाम में आ जाता है, पगड़ी सिखिज्म में आ जाता है, क्रॉस आपका जो है क्रिश्चियनिटी में आ जाता है। हाँ जी हम, तो तिलक टोपी पगड़ी क्रॉस तो प्रतीक यार हैं, मतलब ये सिंबल्स हैं, है ना, तो प्रतीक यार हैं करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार। अगर इन सारे के सारे प्रतीकों में करुणा और प्रेम को अगर जोड़ दिया जाए तो ये संपूर्ण हो जाता है।

0: देने का प्रयास किया जाए और उसे कोई भी किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए, हमेशा उसका भला, उसकी शुभचिंता, यही प्रेम है। अगर ये चीजें आधार हो जाए, बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो तिलक, टोपी, पगड़ी, क्रॉस तो प्रतीक यार हैं, करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार है। ये जनेऊ, दाढ़ी, बाल तो निशानी मात्र हैं, करुणा और प्रेम ही तो धर्म का आधार है। इसके आगे लिखता हूँ, जी जी, मस्जिद चुनवाई तूने, मंदिर तूने गढ़े। देखिए, मस्जिद कहीं से नहीं निकली, हमारे पास पर्वत है, झील है, सागर है, ग्रह है, नक्षत्र है, आकाश गंगा, लेकिन मस्जिद नहीं निकली कहीं से। तो मस्जिद चुनवाई तूने, मंदिर तूने गढ़े, गुरुद्वारा चर्च तेरी मर्जी से है बने, आरती नमाज सुबह शाम तो तू ही करे, गुरुद्वारा माथा टेके शीश गिरजाघर नवे, ये विचार नियम तेरे सब तो कर्म कांड है, करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार। तो जितनी भी चीजें हम ये कर रहे हैं, ये सब हमारे कर्म कांड है, ये हो या ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं साहब, अगर करुणा और प्रेम आपके जीवन में है तो निश्चित तौर से आप सबसे ज्यादा धार्मिक है। जन्म सबकी एक जैसी। अब देखिए, होता क्या, हम एक दूसरे को छोटा बड़ा करने लगते हैं कि मेरा धर्म, मेरा पंथ, मेरा रिलीजन श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ है, और इसी को सब लोगों को फॉलो करना चाहिए। इसका बहुत सारा प्रयास बहुत सारे लोगों ने अपने समय पे करते रहे और अभी भी लगे हुए हैं इस पे। मैं फिर कहता हूं कि जो आदमी जन्म लेता है उसकी उसकी प्रकृति कैसी है। जन्म सबकी एक जैसी, मृत्यु सबसे ना परे। सबके जन्म एक ही जैसे होते हैं साहब, कोई कोई बता दीजिए कि किसी का जन्म अलग तरीके से होता हो, है ना। सबका जन्म एक जैसा है, और मृत्यु से सब ना परे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म लिया वो मृत्यु जरूर प्राप्त करेगा, भले उसने बड़े प्रयास किए हों कि साहब हम अमर हो जाएं। बहुत सारे प्रयास हुए इतिहास में और आप प्राचीन सभ्यता में देख सकते हैं, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो जन्म सबकी एक जैसे, मृत्यु से सब ना परे। बचपन जवानी बुढ़ापा से हम सभी बड़े, रक्त मज्जा हड्डी मांस से हम सभी बने, श्वास लेते श्वास छोड़ते यूं ही सब जीवन चले, मतभेद श्रेष्ठता की खिली सब में रार है। देखिए सब यही बात मैं कहना चाहता हूं, मतभेद जो है हमारा एक धर्म से दूसरे धर्म का जो मतभेद है वो श्रेष्ठता की है कि हम श्रेष्ठ है। मतभेद श्रेष्ठता की छिड़ी सब में रार है, रार मतलब झगड़ा है, करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार है। धर्म अपना, नियम अपना, वेशभूषा अपनी अपनी, है ना। हमने अपना धर्म बना लिया, हमने नियम बना लिया, अपनी अपनी वेशभूषा बना ली, है ना। धर्म अपना, नियम अपना, वेशभूषा अपनी अपनी, खान पान अपने अपने, चाल ढाल अपनी अपनी, मेरा मेरी, तेरा तेरी, आस सबकी अपनी अपनी, सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह सबकी अपनी अपनी, सर्वश्रेष्ठ बनने की चाह सबकी अपनी अपनी, अपनी अपनी ढपली है, अपना अपना राग है, लेकिन भाई करुणा और प्रेम प्यारे धर्म का आधार है। हर आदमी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग सुना रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि करुणा और प्रेम अगर आपके यहाँ से मिसिंग है तो किसी भी तरीके का धर्म आपका नहीं चलता। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि भेदभाव जो सिखाए, इसके आगे जाता हूं, भेदभाव जो सिखाए धर्म नहीं हो सकता, आपस में जो लड़ाए धर्म नहीं हो सकता, हत्या कर जीव खाए धर्म नहीं हो सकता, मार सब खुद को जियाए धर्म नहीं हो सकता, मार सब सबको मार कर खुद को जियाए धर्म नहीं हो सकता, लालच भय दुर्गुण दोनों धर्म शत्रु यार हैं। लालच और भय, इन्हीं दोनों चीजों से साफ पूरी दुनिया चल रही है, या तो लालच है या भय है। तो लालच भय दुर्गुण दोनों धर्म शत्रु यार हैं, करुणा और प्रेम करे धर्म का आधार है। ठीक है जी,
1: जी।
0: तो एक एक बात आखिरी में कहना चाहूंगा कि धर्म का आडंबर कर पैर जो पुजवाता है, सुनिएगा मेरी बात
1: जी,
0: धर्म का आडंबर कर पैर जो पुजवाता है, धर्म का चोला पहन जो सब जन ठकवाता है। धर्म का आडंबर कर पैर जो पुजवाता है, धर्म का चोला पहन जो सब जन ठकवाता है, धर्म की आड़ में जो जन जन लड़वाता है, धर्म की दुहाई देके स्वयं भू बन जाता है, जगत पिता ऐसों को करता धिक्कार है। ये जगत पिता जिनसे पूरी सृष्टि को रचाया, वो तीसरी शक्ति है, वो दिखाई पड़ती है नहीं दिखाई पड़ती है, साकार है निराकार है, निर्गुण है सगुण है, इसके झगड़े में मैं नहीं पड़ता, लेकिन कोई तो है जिसने इसको निर्माण किया है। तो धर्म की दुहाई दे के स्वयं वो बन जाता है, जगत पिता ऐसे को करता धिक्कार है, करुणा और प्रेम ही प्यारे धर्म का आधार है। तो जो आपने धर्म की बात करी सर, उसके बारे में बस एक ही बात कहूंगा, समझे कितनी बात हमने कही है, जो ये बात समझने की है कि करुणा और प्रेम जिनके अंदर है वही धार्मिक है, बाकी सब तो सब नियम है, संयम है, करुणा और कर्मकांड है। ये सब आप करके कहीं ना कहीं अपने आप को मानते हैं कि आप धार्मिक हैं। धार्मिक वही है जो करुणा और प्रेम के साथ चलता है।
1: बहुत सुंदर, क्या व्याख्या है, और कितनी ही बहुत ही खूबसूरत भजन, जो बहुत कुछ मुझे एक बहुत ही प्यारी सी कविता के रूप में सुनाई दिया। इस बात

0: अनिल जी, मेरे सामान्य बुद्धि में एक सवाल उठ रहा है कि चारों तरफ हमें यही दिखाई दे रहा है कि आपने कहा ना पीछे कि कोई अपने पैर छुआ रहा है और लोगों को बांट रहा है और लोगों को समझा रहा। हम चारों तरफ देखते हैं तो अनिल जी, मुझे लगता है 90% से ज्यादा लोग वही हैं जो इनके पीछे जा रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: सही कहा।
0: आंखों पर पट्टी बांधकर जितने भी हमारे सो कॉल्ड प्रबुद्ध बाबा जी लोग बैठे हैं चारों तरफ, वो कुछ कुछ
1: जी
0: बता रहे हैं और करोड़ों की तादाद में उनके पंडालों में भीड़ लग रही है, और
1: जी जी जी
0: कोई उनके खिलाफ क्या उनकी कोई उनकी अथॉरिटी के ऊपर एक छोटा सा सवाल उठा दे तो लोग तलवारें निकालकर मारने काटने को आ जाते हैं कि आपने हमारे गुरु के बारे में एक ऐसा बोल कैसे दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर बहुत जबरदस्त परेशानी खड़ी हो जाती है इस बात को देख के, बहुत छटपटाहट आ जाती है कि फिर इन सब बातों की सार्थकता कहाँ रह जाती है अनिल जी, कि हम धर्म को समझें, आध्यात्मिक हो जाएं, क्योंकि ये जो बाबा बैठे हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने तो धर्म और आध्यात्मिकता को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और 90% लोग उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी जो बचे 10% जिन्होंने आपकी और मेरी इस प्रोग्राम की बात को समझकर आध्यात्मिकता अपनाई, उनका होगा क्या सर? 90% तो उधर चली गई है, वो 90% जनता इन 10% लोगों को तबाह कर रही है। तो फिर आध्यात्मिकता और धर्म की सार्थकता कितनी रह गई, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना।
1: बहुत बहुत अच्छा सवाल है साहब आपका। रियली बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने, और ये सवाल का जवाब एक मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं जब कभी अपने प्रोग्राम्स करता हूँ, जब भजनों का प्रोग्राम करता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि एक ही व्यक्ति, सुनिएगा मेरी बात, तो एक ही व्यक्ति किसी चीज को बहुत बड़ा कर सकता है। और कोई एक ही व्यक्ति, यानी आपने व्यक्ति को इतनी ताकत मिली है, सृष्टि के निर्माण ने इतनी ताकत दी है कि लगभग वो ईश्वर जैसा ही है। उसके अंदर वो ताकत सारी की सारी समाहित है। मैं छोटी सी बात कहता हूँ कि एक सोने का पर्वत है, और उसमें से एक जो उसकी सोने की जो क्वालिटी है, जो उसकी कॉस्ट है, उसमें से अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी निकलता है, तो भले वो छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी कॉस्ट उस पर्वत से कम नहीं आकी जा सकती। उसकी क्वालिटी, उसकी कॉस्ट वैसे ही है। तो एक व्यक्ति के अंदर, तो आपने जो निराशा जाहिर करी, वही निराशा आमतौर से मेरे जीवन में भी आती है कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा समूह ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है, जिनको कैसे समझाया जाए। नहीं साहब, मैं फिर कहता हूं कि एक व्यक्ति पूरे दुनिया को बदल सकता है, और इसके बड़े बड़े उदाहरण है साहब। आप कबीरदास जी को ले लीजिए, बुल्ले शाह जी को ले लीजिए, आप स्वामी रैदास जी को ले लीजिए, है जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, नाम हुए, ये अपने समय पे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं विवादित भी रहे, है ना। सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, है ना, आर्यभट्ट हो गए, जिन्होंने वास्तव में साइंस के साथ लोगों को धर्म और अध्यात्म का समझाने की कोशिश करी। कई बार उनका विरोध भी हुआ, लेकिन आज किताबों में उनको पढ़ा जाता है लोग। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक व्यक्ति ही बहुत काफी है। आप 100 लोगों को बताते हैं, अगर 100 में से 2 आदमी भी आपकी बात को समझ गए ना साहब, तो निश्चित तौर से दुनिया बेहतर तरीके से चलेगी, और इसको चलने में एक डिसिप्लिन मिल जाएगा। हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए। पॉजिटिविटी ही इस दुनिया को चलाएगी, सकारात्मकता ही चलाएगी। और सकारात्मक अगर आप हैं, आप समझदार हैं कि इतना बढ़िया प्रोग्राम आपने बनाया है, ये बहुत सफल प्रयास है आपका। निश्चित तौर से आज जो सुनने वाले लोग हैं, अगर इसको समझ पाएंगे, तो इनमें से अगर 2 लोग भी सुधर गए, तो रियली बता दें आपको कि निश्चित तौर से दुनिया बहुत अच्छे से चलेगी, बहुत अच्छे से निर्माण होगा। इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। हम जितने भी लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, जो भी सकारात्मक लोग हैं, जो इस दुनिया में सबको प्रेम और करुणा के साथ देखते हैं, निश्चित तौर से सृष्टि का हमेशा बैलेंस बना रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। हमें अपने प्रयासों को कमी नहीं करनी चाहिए। ये चीजें दिखती जरूर हैं, लेकिन होता वही है। और एक बात बताएं आपको सर, कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति पॉजिटिव है और पॉजिटिव लोगों को सुरक्षित करती है। मेरा अपना अटूट विश्वास है साहब।
0: चलिए दोस्तों, सकारात्मक रहते हुए, अपने आप को वापस से अपलिफ्ट करते हुए, विचार करते हुए एक प्यारा सा भजन और अनिल जी की ही आवाज में हम लोग सुने, उसका आनंद लें, उसे समझें और फिर अनिल जी के पास वापस प्रस्तुत होते हैं।

0: बिल्कुल ठीक अनिल जी, बहुत ही प्यारा सा भजन और बहुत ही प्यारी गायकी। अब बात थ्योरी से हम लोग प्रैक्टिकल पर आए थे, एक और प्रैक्टिकल बात ही पूछना चाहूंगा जिससे कि लोग बाग उस प्रैक्टिकलिटी को समझ सके, अपना सके कि आपके ऊपर ही बात लेकर आते हैं। छोड़िए ना किसी और साधु की, संत की, बड़े लोगों की बात नहीं करते, क्राइस्ट की या पैगंबर की या नहीं करते, छोड़िए ना, मैं अपनी और आपकी बात करता हूं। हम लोगों को सीखना है, ये लोग तो बड़े बड़े लोग थे जो सिखा के गए। आप अपने बारे में बताओ, आपके दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास क्या क्या हैं जिससे शायद हमें कुछ हिंट मिल जाए।
1: हाँ जी बिल्कुल सही है। हाँ देखिए, ये जो अभ्यास है बेसिकली ये अपने आप को कूल करने के लिए है। देखिए क्या होता है कि जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो आपको निश्चित तौर से आप सपोर्ट नहीं मिलता लोगों को, और विरोध ज्यादा होता कई बार, तो उसमें एक देलत होता है, एक मन में कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, शरीर में भी और विचारों में भी कहीं ना कहीं होता है इन चीजों को। तो उसको शांत करने के लिए भाई जाहिर सी बात है कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं कि जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन करते हैं लोग। तो भाई मेडिटेशन क्या है, सांसों को देखना, पढ़ना और अपने ब्लड प्रेशर को पूरी तरीके से कूल करना और फ्रेश कर लेना। तो जाहिर सी बात है कि हमें फ्रेश रखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जिस तरीके की भौतिक जीवन है, जो पूरा का पूरा सांसारिक जीवन है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयां है। कहते नहीं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो रियली हर कदम एक नई जंग है। तो उस जंग से लड़ते हुए आगे बढ़ना है और अपने आप को कूल रखना। अगर आप कूल नहीं रहेंगे, आप ठंडे नहीं रहेंगे, तो जाहिर सी बात की स्पार्क आप ही के अंदर से निकलने लगेगा, तो वो किसी और को क्या शांत करेगा। तो मेडिटेशन हो गया, और सबसे बड़ी बात अध्ययन करना। और अध्ययन करते समय इस बात को हमेशा ख्याल रखना है, मैंने बार बार बोला कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कैसे हो सकता है, तो अच्छे विचारों के साथ के लोग साथ बैठना, उनके साथ बातें करना और वो मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना। ठीक है, मैं फिर कहता हूँ ध्यान लगता नहीं है साहब, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात बता रहा हूँ। ध्यान लगाने की जितनी कोशिश आप करते हैं उतना ही ध्यान इधर उधर जाता है, भटकता है। तो ठीक है, कुछ लोग इस थेरेपी को भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो फायदा होता है। मैं ये नहीं कह सकता 100%, लेकिन हाँ 10-20% भी अगर आप कूल हो गए, मेंटली आप फ्री हो गए, फ्रेश हो गए, तो निश्चित तौर से आपकी काम की ऊर्जा बढ़ जाती है और आप आगे बढ़ करके अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। तो चाहे भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो, इसमें जरूरी है कि हम अपने आप को फ्रेश रखें और रिफ्रेश करते रहें। और जाहिर सी बात है कि अगर दो चीजें मैं बार बार कहता हूं सर, करुणा और प्रेम अगर आपके अंदर है, आपके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा, आप अपने साथ के लोगों के साथ हमेशा बहुत ही लविंग रहते हैं, उनके बारे में चिंतन करते हैं, उनके बारे में उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लगातार प्रयास करते हैं या सोचते ही हैं, तो भी आपको चारों तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है यही आपको रिफ्रेश करती है। बाकी तो ठीक है, ध्यान लगाइए, सवेरे बैठ करके योगा करिए, और पूजन ध्यान भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि आप अगर आप कोई मूर्ति पूजा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करता है और आपको ईश्वर से जोड़ता है, तो वो भी करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
0: जी जी, मैं बिल्कुल ठीक समझ गया। तो ये कुछ अभ्यास हैं जिसमें से अभी जो अनिल जी ने बताया, मुझे उसमें एक चीज पकड़ में आई जिसको मैं अपना सकता हूं, अपनाने की कोशिश करता हूं, और मुझे सच बताऊं दोस्तों अच्छा लगता है। अब आप तय कीजिए कि अनिल जी की बातों से कौन सा अभ्यास आप उठाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा अनिल जी ने बताया कि सब लोग सही हैं, उचित हैं, कोई गलत नहीं है। बहुत सुंदर, चलिए तो एक ब्रेक ले लेते हैं एक बहुत ही प्यारे से भजन के नाम, जो अनिल जी ने हमारे लिए इस प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड किया।

0: जी जी आपने सही सही
1: जवाब किसी की जिंदगी हल्की बसी थी इस बात जी जी
0: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों अनिल जी की इन बिल्कुल शुद्ध बातों के साथ साथ हम अपने आप को इनके भजनों से भी दूर नहीं रखेंगे। लीजिए ना एक और भजन का आनंद उठाएं पहले।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जाहिर सी बात है अनिल जी, शुरू शुरू में ही आपने प्रारंभ में ही ये बात काफी अच्छे तरीके से डिटेल में हमें समझाई, लेकिन फिर भी हो सकता है सुनते सुनते हम थोड़े भटक गए, क्योंकि मैं ही भटकता हुआ महसूस कर रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज महसूस कर रहा हूं। तो मैं फिर से एक बार फोकस होना चाहता हूं, थोड़ा स्वार्थी हूं तो इसलिए फिर से आपसे पूछूंगा, तो मैं अपने आप को रिवाइज करके संभल जाऊंगा कि क्या आध्यात्मिकता को समझें, धर्म को माने, प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं, इससे मेरे फायदे की बात कर रहा हूं, इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, तो क्या ये सब चीज अगर मैं करने लगूं तो मेरा टेंशन कुछ कम हो जाएगी क्या?
1: बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आप देखिए, समझिए, टेंशन तनाव जो है ना, देखिए तनाव तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जो जीवन आपको मिला है वो निर्माण के लिए। देखिए, एक बड़े निर्माता ने आपको एक रोल दिया, ठीक है, एक बड़े निर्माता ने आपको एक रोल दिया, और वो भी निर्माण का ही काम कर रहा है। एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, डायरेक्टर हूँ या प्रोड्यूसर हूँ, मैंने फिल्म का निर्माण किया, अब मैंने आपको हीरो बना दिया। अब ये हीरो एक पूरी इमेज का निर्माण कर रहा है कि वो हीरो है, वो कमजोरों को बचाता है, महिलाओं की सुरक्षा करता है, माता पिता को प्रेम करता है, देश के लिए काम करता है, तो ये निर्माण कर रहा है। तो उस पूरी सृष्टि ने हमको निर्माण के लिए भेजा, और निर्माण में कष्ट होता है साहब।
0: क्या बात है, चलिए हंसते खेलते तनाव को स्वीकार करते हुए उससे बिना डरे एक प्यारे से भजन का आनंद उठाइए, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत ही प्यारा सा भजन। अनिल जी, बस अब चलते चलते मैं आपसे इतनी सी ही प्रार्थना करूंगा कि हम सब लोगों को एक दो तीन स्टेप बताते जाइए कि किस तरीके से हम आध्यात्मिक हो जाएं और किस तरीके से हम धर्म का पालन कर लें, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टेप्स कि भाई आप ये कर लो, एक दो तीन खत्म।
1: जी जी जी जी नहीं, बहुत ही बढ़िया है। और मैं जैसे भी बताया कि युवाओं के लिए मैं सारा काम युवाओं के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ कि जब मैं कुछ अभी तो मैं इतना नहीं पॉपुलर हो रहा हूँ या ट्रेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जो वीडियोस हैं उसमें जब डालता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि इसको अगर युवा देख रहे हो तो मोस्ट वेलकम, अगर युवा नहीं है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप चाहें तो उसको बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुनिया भर के तर्क करेगा, फालतू की बातें करेगा और आपकी ऊर्जा खराब करेगा, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं कहीं यहाँ पे धार्मिक नहीं, इस तरीके का धार्मिक नहीं हूँ कि वो मैं एक बात सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि जो मैं एक छोटी सी टेक्नोलॉजी, आप कोई भी चीज डिवाइस लाते हैं घर पे, टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, कार लाते हैं, जो भी लाते हैं, तो उसका एक मैनुअल होता है,
0: बिल्कुल।
1: वो मैनुअल से आप ये देखते कि हाउ ये कैसे इसको हाउ टू ऑपरेट, ठीक है जी। अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि एक डिवाइस के रूप में इस दुनिया में आया जिसके पास अनंत शक्तियां हैं, जो खराब भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। इस डिवाइस का जो मैनुअल है सर, वो भगवत गीता है सर। मैं फिर से रोक रके कहना चाहूंगा, भगवत गीता कहने का मतलब मैं हिंदुओं की बात, सनातन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। भगवत गीता एक ऐसा मैनुअल है जो धार्मिक ग्रंथ में नहीं मानता, मैं कह रहा हूँ वो धार्मिक ग्रंथ नहीं, उसमें पूजा अर्चना कर्मकांड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा। उसमें बस यही है कि जो डिवाइस, यानी कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग आए हो, हाउ टू ऑपरेट योरसेल्फ, ये जरूर आप पढ़ दो। उसमें सिर्फ आपके जीवन को बेहतर करने के सारे नियम दिए हुए हैं और आपको सब कुछ बताया हुआ है।
0: अनिल जी, आपका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, लोगों से बातचीत की, अपने भजन भी आपने हमको दिए, सुने हमने, उन अब कविताएं भी आपने सुनाई जो आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में हमारे जीवन के ऊपर लिखी और धर्म के ऊपर लिखी और किस तरह से हमें जीना चाहिए। बहुत बहुत आभार है आपका, धन्यवाद साहब।
1: थैंक यू।

0: दिया।
1: हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3, एनर्जी चेक, चाय रेडी, दिल रेडी। मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। कबीर खान। जब भी हम चक दे इंडिया का नाम सुनते हैं, आंखों के सामने एक ही चेहरा आता है, वो कोच जो चिल्लाता कम था, समझता ज्यादा था, जो देशभक्ति को शोर से नहीं, सन्नाटे में लिए हुए एक संकल्प से जीता था, और उस किरदार को जिंदगी दी थी शाहरुख खान ने। कबीर खान ने हमें सिखाया था, देशभक्ति का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं, देशभक्ति का मतलब है हर बार, हर हार के बाद अपनी गर्दन सीधी रखना, जीत के बाद विनम्र रहना, और सबसे जरूरी, अफरा तफरी के बीच विश्वास बनाए रखना। कल मुझे कबीर खान बहुत याद आए, इसीलिए नहीं कि दुनिया ने उनका जन्मदिन मनाया, बल्कि इसीलिए कि एक असली कहानी मेरी आंखों के सामने थी। एक नाम, अमोल मजूमदार। सोचिए, एक नौजवान लड़का मुंबई की रणजी टीम में डेब्यू करता है, और पहली ही पारी में 216 रन, वो भी नॉट आउट। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक ऐलान था कि मैं तैयार हूं। लगभग 25 साल तक वो रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। उन्होंने 11,000 से ज्यादा फर्स्ट क्लास रन बनाए, 30 शतक, हर मुश्किल वक्त में टीम के लिए दीवार बनकर खड़े रहे। टैलेंट था, संकल्प था, आंकड़े भी साथ थे, लेकिन कभी कभी किस्मत अपनी अलग ही कहानी लिखती है। इंडिया की नीली जर्सी उनसे दूर ही रही। सोचिए जरा, जब दुनिया कहती हो ये लड़का देश के लिए खेलना चाहिए, और फिर भी मौका ना मिले, ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसका सपना आंखों के सामने हो और हाथ तक पहुंचकर फिसल जाए। ये कहानी यही मुरझा भी सकती थी, लेकिन नहीं, कुछ लोग सपने टूटने के बाद बिखरते नहीं, वो उन टुकड़ों को ईंधन बना लेते हैं। जब खेलने का सफर धीरे धीरे खत्म हुआ, तब उन्होंने मैदान छोड़ा नहीं, बस अपनी जगह बदल ली, बैट्समैन से मेंटर बन गए, IPL में बैटिंग कोच, अंडर 19, अंडर 23 के साथ काम, मुंबई टीम के हेड कोच, और फिर आया 25 अक्टूबर 2023, एक नया अध्याय। BCCI ने उन्हें इंडियन वुमेन्स टीम का हेड कोच बना दिया। उस दिन सिर्फ उनका सपना नहीं बदला, एक पूरी टीम का भविष्य बदलने की शुरुआत हुई। फिर आया 2025 का वुमेन्स वर्ल्ड कप, शुरुआत शानदार, श्रीलंका पर जीत, पाकिस्तान पर जीत, देश को लगा इस बार कुछ खास होने वाला है। लेकिन खेल सिर्फ जज्बात से नहीं जीता जाता। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, 3 लगातार हार, विश्वास हिल गया, सवाल उठने लगे, सपना नाजुक लगने लगा। इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद तो लगा कि बस, सेमीफाइनल बस एक पतली सी डोर पर लटका हुआ है। ये वही पल था जहां कहानी टूट भी सकती थी, लेकिन वही, फिर से एक शांत आवाज उठी। कोच ने टीम को देखा, गुस्से से नहीं, शोर से भी नहीं, शांति से, और कहा, गलतियां बार बार नहीं दोहरा सकते, लाइन पार करनी होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये डर से आजादी का संदेश था। उन शब्दों ने आग जगाई, खुद पर विश्वास आया, और फिर जो हुआ वो कहानी का मोड़ था। टीम वापस मैदान पर उतरी डर के साथ नहीं, दृढ़ निश्चय के साथ। हर मैच में एक नया जज्बा, हर ओवर में एक नई उम्मीद, और फिर कैप्टन हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में इंडिया ने 2025 का वर्ल्ड कप जीत लिया। ट्रॉफी उठी, आंखों में आंसू थे, देश जश्न मना रहा था। लेकिन जीत के बीच एक चेहरा था, शांत, विनम्र, अमोल मजूमदार। उन्होंने टीम को सिर्फ टेक्निक नहीं दी, उन्होंने टीम को डर से बाहर निकाला। उन्होंने बताया, हार अंतिम सच नहीं है। कबीर खान एक फिल्म का किरदार था, लेकिन यहां कहानी असली थी। कबीर खान ने कहा था 70 मिनट, यहां शायद 70 मिनट नहीं, 70 दिन लगे, या 70 साल का सब्र। लेकिन सीख एक ही थी, देशभक्ति सिर्फ जोश नहीं होती, देशभक्ति शांति होती है, जिम्मेदारी होती है, और सबसे बढ़कर दूसरों के सपनों को अपना बना लेना होता है। अमोल मजूमदार खुद इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, लेकिन उन्होंने एक पूरी टीम को दुनिया जीतना सिखा दिया। कभी कभी खुदा हमें वही नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो हमें उससे भी बड़ा देता है। खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इतिहास लिखने का मौका जरूर मिला, और शायद यही असली जीत थी। इस कहानी का सार, जीत तब बनती है जब अहंकार छोटा हो और संकल्प बड़ा, और कभी कभी सबसे बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो खुद स्पॉटलाइट में नहीं होता। कबीर खान ने हमें सिनेमा में भी यही सिखाया था, और अमोल मजूमदार ने जिंदगी में दिखा दिया, और शायद इसीलिए ऐसे लोग देश के दिल में बस जाते हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: इंडियन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, कोई भी चाचा जी फॉरवर्ड भेज देंगे ये मैसेज 11 लोगों को भेजो वरना, और नीचे लिखा होगा साइंटिफिकली प्रूवन। इंडिया में रिसर्च का सबसे बड़ा सोर्स है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स।

सफर बीच का। कभी कभी ना सुबह थोड़ी ज्यादा शांत होती है, जैसे दुनिया ने हल्का सा वॉल्यूम कम कर दिया हो। शहर की आवाजें, गाड़ियों के हॉर्न, फोन की घंटी, लोगों की भाग दौड़, सब धीरी पड़ जाती है। और उस शांति के बीच एक ट्रेन चल पड़ती है। सोचिए, एक औरत साड़ी में लिपटी हुई, हाथ में किताब, उंगलियां उस किताब के पन्नों के बीच ठहरी हुई, जैसे जिंदा निशान, जैसे कोई याद रुक कर बैठी हो। ट्रेन धीरे से पहाड़ों की तरफ बढ़ रही है। सुबह की रोशनी साड़ी के पल्लू पर गिरती है और कपड़े की सिलवटें भी कहानी सुनने लगती है। प्लेटफॉर्म पर हल्का सा कोहरा है, ठंडी हवा, दूर पहाड़ों पर बादल लटके हुए, और वो उतरती है बिना शोर के, जैसे सफर ने उसे हल्का सा छू कर आगे बढ़ा दिया हो। ये कोई तेज रफ्तार सफर नहीं, यहां कोई जल्दी नहीं, यहां सिर्फ बीच का वक्त है। सुबह का पर्दा जब पहाड़ों से उठता है ना, तो लगता है जैसे दुनिया ने पानी के रंग से खुद को रंग दिया हो। दियोदार के पेड़ बादलों में गुम हो जाते हैं, चाय के बागों में शबनम मोती बनकर टिक जाती है, पहाड़ियां कोहरे की पतली सी डोर से जुड़ी होती हैं, और ट्रेन के अंदर अंदर वक्त अलग चल रहा है। चाय के कप की हल्की सी खनक, पहियों की एक समान धड़कन, धक धक धक धक धक धक, जैसे पूरा देश सांस ले रहा हो। कोई कूली आवाज लगाता है, कोई अपनी शॉल का कास लेता है, कोई खिड़की से बाहर देखते देखते खुद में खो जाता है। यहां कोई भाग नहीं रहा, यहां सिर्फ रुकना है, महसूस करना है। स्टेशन आते हैं, छोटे छोटे स्टेशन, जैसे कहानी के बीच में छोटी सी एक तस्वीर, लैंप की पीली रोशनी, आधे चेहरे, गरम पकौड़ों की खुशबू।

बच्चे स्वेटर पहने हुए। एक आदमी हाथ हिलाता हुआ जैसे वो आपको पहचानता हो, जैसे आप दोनों का कोई पुराना रिश्ता हो बिना मिले। और आप सोचते हो क्या होता अगर मैं यहीं रह जाती, क्या होता अगर मैं इस शहर की हो जाती। लेकिन सफर रुकता नहीं, एक तेज सी सीटी और ट्रेन फिर से चल पड़ती है। वो शहर पहाड़ों में लिपट जाता है लेकिन लेकिन दिल में रह जाता है। कुछ जगहें होती है ना जो बस पल भर के लिए मिलती हैं, पर उनका असर गहरा होता है, कभी कभी तो मंजिल से भी गहरा। हाँ, शायद सफर का सच यही है, मंजिल जरूरी है पर जो बीच का रास्ता है ना वो ज्यादा याद रहता है। वो इंतजार, वो खिड़की से बाहर देखना, वो सोचना कि जिंदगी पहुंचने का नाम नहीं है, वो लम्हे जब आप किसी सुरंग से गुजरते हो और अंधेरा पल भर के लिए सब कुछ चुप कर देता है, फिर अचानक रोशनी जैसे याद दिलाती हो अंधेरा भी सफर का हिस्सा है। पुल हल्की सी कांप के साथ पार होते हैं, नीचे गहरी घाटी, ऊपर खुला आसमान, और तब कहीं जाकर समझ आता है ये सफर सिर्फ एक जगह का नहीं है, ये सफर अंदर का है। हर स्टेशन एक एहसास है, हर मोड़ एक सीख, हर रुकना एक मौका। जिंदगी भी शायद ऐसी ही है, हम सोचते हैं मंजिल पे पहुंचकर सुकून मिलेगा, पर सुकून तो अक्सर रास्ते में मिल जाता है, एक कप चाय में, एक अनजान मुस्कान में, एक पल के ठहराव में। और फिर धीरे से समझ आता है मंजिल सिर्फ बहाना है, असल खूबसूरती तो सफर में है। वो धक धक, वो कोहरा, वो पहाड़ी शहर जो पल भर के लिए अपना सा लगने लगता है, वो सफर जो हमें बदल देता है बिना शोर किए। और जब आप अपनी मंजिल पर उतरते हो तो आप वही नहीं होते जो चढ़े थे, कुछ यादें साथ होती हैं, कुछ शहर दिल में बस जाते हैं, कुछ चेहरे नाम के बिना अपने हो जाते हैं। और फिर जिंदगी की किसी शांत सुबह में जब आवाजें कम हो जाती हैं तो वही सफर फिर से याद आता है, तब समझ आता है जिंदगी का मतलब सिर्फ पहुंचना नहीं था, जिंदगी का मतलब था चलना, महसूस करना, रुकना और फिर से चल देना। सफर मंजिल से ज्यादा खूबसूरत था। जेंटली, धीरे से सफर कर देखिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: देसी मिडिल क्लास लग्जरी। इंडियन मिडिल क्लास के पास सब कुछ होता है, बस उसे यूज करने की परमिशन नहीं होती। ड्राइंग रूम का सोफा सिर्फ गेस्ट्स के लिए, नया डिनर सेट सिर्फ खास मौके के लिए। और वो खास मौका कब आता है? जब डिनर सेट का डिजाइन आउटडेटेड हो जाता है। हम लोग चीजें फ्यूचर के लिए संभाल के रखते हैं भाई, और फ्यूचर आता है डीक्लटर करने।

नवंबर 2008, मुंबई की एक ऐसी रात जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। शहर रोशनियों से भरा था, लेकिन अंधेरा अचानक बहुत गहरा हो गया। गोलियों की आवाज, लोगों की चीखें, डर का एक भारी सा साया। ऐसा लगा जैसे आतंक ने मुंबई की हिम्मत तोड़ने की हर कोशिश की हो। लेकिन उस अंधेरी रात में एक रोशनी भी थी, एक ऐसा पल जहां इंसानियत और साहस ने डर को चुनौती दी। उस रोशनी का नाम था तुकाराम ओमले। वो मुंबई पुलिस के एक साधारण से कांस्टेबल थे, ना कोई बड़ी कुर्सी, ना कोई बड़ी ताकत। उम्र 54 इयर्स, शरीर अपने बेहतरीन दौर में भी नहीं था, और हाथ में ना बंदूक ना सुरक्षा कवच, सिर्फ एक लकड़ी की लाठी। लेकिन जो चीज उनके पास थी वो किसी भी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली थी, उनका संकल्प, उनका फर्ज, उनका देश के लिए जीने और मरने का जज्बा। उस रात जब गोलियां चल रही थी, उन्होंने एक ऐसे आतंकवादी का सामना किया जो पूरी तरह से इक्विप्ड था, हथियार से लैस था, AK-47 लेकर खड़ा था। सोचिए, एक तरफ ऑटोमेटिक राइफल, दूसरी तरफ एक लाठी। अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं ना ऐसे ही दृश्य, लेकिन ये फिल्म नहीं थी दोस्तों, ये सच था, उस रात का काला सच। जैसे ही उन्होंने आतंकवादी को देखा, उन्होंने पल भर का भी इंतजार नहीं किया, सीधा बढ़े और उस बंदूक की नाल को पकड़ लिया। हाँ, बंदूक की नाल, वो लोहा जो गोली चलाने से तप रहा था, वो लोहा जो मौत बरसा रहा था। उन्होंने उसे दोनों हाथों से जकड़ लिया। गोलियां चल रही थी बिल्कुल पास से, एक के बाद एक उनके शरीर को चीरते हुए। कहते हैं उन्हें 12 से ज्यादा गोलियां लगी थीं, लेकिन सोचिए, हर गोली जो उनके शरीर ने सही वो किसी और तक पहुंचने से रुक गई। हर पल जो उन्होंने उस नाल को पकड़ कर रखा, वो पल देश को बचाने का पल था। खून बह रहा था, शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई। जब तक उनके साथियों ने आकर उस आतंकवादी को काबू में नहीं कर लिया, तब तक वो पकड़, वो हिम्मत, वो दृढ़ता आखिरी सांस तक बनी रही। दोस्तों, ये सिर्फ एक बहादुरी का काम नहीं था, ये इतिहास था। दुनिया भर में बहुत ऐसे हमले हुए हैं, लेकिन शायद ये पहली बार था जब इतने बड़े शहरी आतंकी मामले में एक भारी हथियार से लैस हमलावर को जिंदा पकड़ा गया। और ये मुमकिन हुआ एक निरस्त्र कांस्टेबल की वजह से। उस जिंदा गिरफ्तारी ने सच को दुनिया के सामने रखा, साजिश का चेहरा बेनकाब हुआ, न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। अगर वो उस रात डर जाते, अगर वो एक कदम पीछे हट जाते, तो शायद कहानी कुछ और होती। दोस्तों, हिम्मत का मतलब सिर्फ ताकत नहीं होता, कभी कभी हिम्मत का मतलब होता है डर के सामने खड़े रहना, अकेले, निरस्त्र, लेकिन टूट कर नहीं। श्री तुकाराम ओमले ने हमें ये सिखाया कि देशभक्ति शब्द नहीं होती, वो क्रिया होती है, वो फैसला होता है जो आप उस पल में लेते हो जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल का फासला हो। उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन देश को एक अनमोल चीज दे गए, सच, न्याय की उम्मीद और एक मिसाल। आज हम जब 26/11 को याद करते हैं, तो हम दर्द को याद करते हैं, शहीदों को याद करते हैं, लेकिन उन सब के बीच एक चेहरा जो हमें हमेशा याद रखना होगा, एक हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक साधारण आदमी जो किसी फिल्म का हीरो नहीं था, जो किसी पोस्टर पर भी नहीं था, लेकिन जिसने असली जिंदगी में हीरो होने का मतलब दिखा दिया। उनका नाम लेना ही सीने में एक गर्व भर देता है,
श्री तुकाराम ओमले। उन्होंने हमें दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा काम सबसे साधारण लोग कर जाते हैं और देश देश उन पर हमेशा कर्जदार रहता है। आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं ना, जब हम अपनी जिंदगी आराम से जी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस रात का वो पल हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा किसी ने अपने खून से लिखी थी और उस लिखावट में एक नाम हमेशा चमकता रहेगा, श्री तुकाराम ओमले, हमारे अमर नायक, हमारे सच्चे वीर और हमारी यादों में सदा जीवित।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। सोशल मीडिया रियलिटी। हम सब बोलते हैं मैं सोशल मीडिया से दूर रहना चाहती हूँ, फिर 2 मिनट बाद फोन उठा के चेक करते हैं किसी ने हमें मिस तो नहीं किया। सबको पीस तो चाहिए पर नोटिफिकेशन साइलेंट नहीं करते। इनर पीस और ऑनलाइन प्रेजेंस दोनों एक साथ मेंटेन करना, यही मॉडर्न योगा है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग कला और पेंटिंग की सतरंगी दुनिया का है और हमेशा की तरह आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका जीवन स्वयं एक रंगों से सजा कैनवास है, समर्पण, सौंदर्य बोध और सृजनशीलता से भरा हुआ। हमारी आज की अतिथि हैं डॉक्टर अर्चना कुलश्रेष्ठ जी, एक प्रख्यात चित्रकार, शिक्षाविद और कला साधिका। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की, स्वर्ण पदक से सम्मानित रही और 4 दशकों से अधिक समय तक कला, शिक्षण, शोध और सृजन का शानदार सफर तय किया। देश विदेश में 50 से अधिक प्रदर्शनियां, अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार और कला के क्षेत्र में आज भी उनका योगदान उतना ही जीवंत है जितना कि उनके चित्रों के रंग। तो आइए अर्चना जी से जानते हैं कला, सौंदर्य और जीवन के उन रंगों के बारे में जो उनके ब्रश से निकलकर समाज तक पहुंचते हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: अर्चना जी। शुरुआत आपके बचपन से करते हैं क्योंकि बचपन के बारे में बातचीत करना हर किसी को अच्छा लगता है। क्या बचपन से ही आपको कला और चित्रकला में रुचि थी?
1: हाँ जी, बहुत ज्यादा रुचि थी। बचपन से ही मैं पेंटिंग्स बनाया करती थी, मूर्तियां बनाते थे हम लोग, और मेरे पास संगीत भी था। मैं संगीत भी सीखती थी, नृत्य भी सीखती थी, तो सारी कलाओं से ही मैं जुड़ी हुई थी और मुझे बहुत पसंद है ये सब चीजें। और मैंने साइंस नहीं लिया, कला ही ली, कला को ही चुना अपना विषय, इसलिए कि मेरा इसमें बहुत ज्यादा बचपन से इंटरेस्ट था। कविताएं भी करती थी मैं।
0: अरे वाह, तो आप तो पूर्ण रूपेण एक तरह से कला के लिए समर्पित थी, बहुत ही अच्छा लगा जान के। आपकी शिक्षा और ड्राइंग पेंटिंग में स्वर्ण पदक भी प्राप्त करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: एक्चुअली मैंने कभी ये प्रेरणा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे फादर से मिली। वही कहते थे, तू बिना पढ़े लिखे ही इतने अच्छे नंबर लाती है, टॉप करती है साइंस आर्ट्स दोनों पैकेजेस में, तो पढ़ेगी तो कितना अच्छा होगा। और उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। तो वो एक प्रेरणा भी थी और मेरी आवश्यकता भी थी, तो मैंने खूब मेहनत करी और स्वर्ण पदक मुझे उदयपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ। उदयपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया था हमें, क्योंकि यहाँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में था ही नहीं।
0: और पीएचडी के लिए आपने किस विषय पर शोध किया और उस विषय का चुनाव कैसे किया?
1: मैं जब भी सफर करती थी तो मुझे यहाँ की हवेलियों पे, मंदिरों में, बावड़ियों में, हर जगह पे भित्ति पे चित्र दिखाई देते थे और वो मेरे साथ साथ दौड़ते रहते थे। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि इतना काम यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली 16वीं शताब्दी से चित्र बन रहे हैं भित्तियों पर, और उसका जो इतिहास है वो आज तक किसी ने अभी ऐसा लिखा नहीं था। तो मुझे लगता था कि मैं इसी के ऊपर शोध करूं। और दूसरी, उसका ऐतिहासिक महत्व, तो मेरा पीएचडी का जो सब्जेक्ट का टाइटल था वो राजस्थान की भित्ति चित्र और उनका ऐतिहासिक महत्व। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी बाद में विषय खुला और मेरे को कोई गाइड नहीं मिले, तो मैंने इतिहास के ही एक विद्वान जो कि टॉप 10 में आते हैं इंडिया के, उनसे उनको अपना गाइड बनाया और वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहा और बहुत अच्छी तरीके से मैं उस पर काम कर पाई उनके साथ में।

0: अच्छा भित्ति चित्र पे आपने पीएचडी की है, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत ही जोरदार बात है। और राजस्थान में तो जगह जगह भित्ति चित्र
1: जगह
0: हर
1: जगह
0: जगह है, जगह जगह। और
1: बिल्कुल
0: बावड़ियों
1: बिल्कुल
0: का आपने जिक्र किया, बावड़ी
1: हाँ जी
0: भी
1: हाँ जी
0: राजस्थान में बहुत है क्योंकि यहाँ पानी की कमी
1: बहुत
0: रहती है।
1: बिल्कुल
0: एक यहाँ चांद
1: आपको हर
0: बावड़ी
1: जगह
0: है,
1: चित्र मिलेंगे यहाँ पे। हाँ
0: बिल्कुल एक चांद बावड़ी है, वो भी मैंने भी देखी है, बड़ी जोरदार है, कहते हैं
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत फेमस है। अब थोड़ी सी आपकी शिक्षण की तरफ अपन रुख करते हैं। आपने
1: जी
0: लंबे समय तक राजस्थान के कई कॉलेजों में ड्राइंग और पेंटिंग विभाग का नेतृत्व किया, इस सफर में
1: जी
0: कौन-कौन सी बातें आपको सबसे अधिक संतोष देती हैं?
1: देखिए, एक लेक्चरर का, एक व्याख्याता का सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष होता है, वो ये होता है कि उसके जो विद्यार्थी है वो उसको उनको पसंद करें और उनको समझें, उनकी पढ़ाई पढ़ाई हुई शिक्षा को वो ग्रहण करें तो उनको आनंद आए। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो यही है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बहुत पसंद करते थे और अभी वो सब भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर भी हो गए, तो वो लोग आज तक भी मुझे याद करते, तो मेरे को इस बात का बहुत संतोष होता है कि मैंने अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है जिससे कि वो भी उससे फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। तो ये संतोष सबसे बड़ा संतोष है एज ए
0: बहुत बढ़िया
1: टीचर, एज ए लेक्चरर।
0: जी जी बिल्कुल, शिक्षक का संतोष ही ये होता है कि उसके जो
1: विद्यार्थी से उनको
0: विद्यार्थी
1: याद
0: हैं वो
1: करें।
0: बिल्कुल याद करें। बिल्कुल, एक शिक्षक से लेकर प्राचार्य और फिर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स तक की इस यात्रा में आपको किन-किन चुनौतियों और उपलब्धियों का सामना करना पड़ा, कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा कीजिए।
1: चुनौतियां तो बहुत बढ़ गई थी क्योंकि शिक्षक तो जो है उसको कोई चुनौती इतनी, बस एक ही चुनौती होती है कि उसके बच्चे उसका पढ़ाया हुआ जो भी है वो उसको समझ सकें और उसको अपने जीवन में ला सकें। लेकिन प्राचार्य के पोस्ट पे आते ही आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, छात्रों का असंतोष, और छात्रों का ही नहीं, वहाँ के जो आपके व्याख्याता है उनका असंतोष, और उसके बाद में जो है वो होते हैं पियोन्स वगैरह सबका, मतलब बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है सबको संतुष्ट करना, और वो भी ऐसे इस कॉलेज में जहाँ 8,000 छात्र गांव से आते हैं सीधे हड़ौती में, तो वो सिर्फ आपको वो आपके हड़ताल, चाकू छुरे सब तरीके से, साम दाम दंड भेद, और उनकी राजनीतिक यात्रा जो वो दो जो नेता बनते हैं वो वहीं से ही शुरुआत होती है, तो उसको फेस करना आपको आना चाहिए और उनको संतुष्ट करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चिल्ला के करें, आप उनको समझा सकते हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि

0: मैं कुछ ऐसा वो है कि मैं किसी को भी आराम से समझा लेती हूँ, वरना इतना मुश्किल होता था कि वो वहां पे आपकी तोड़ फोड़ चाकू छुरे आपके उस पे से उठा लेते, और प्रिंसिपल उसको तो वो उठा करके भी ले गए कई तरीके से, लेकिन मैं उसके अंदर बहुत सफल रही और उनको मैंने अपना बना करके और बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हमारे हमारे को इस वाली उसमें क्यों रख दिया, हम इसकी हमारे को इसमें क्यों डाल दिया आपने, इसमें बहुत काम है, फैकल्टीज वगैरह जो हम उनको यूज करते हैं कई कई अपने कार्यक्रमों में, कि आपको ये संभालना है आपको ये संभालना है आपको, तो कई तरह की उनकी वो होती है व्याख्याताओं की भी, और स्टूडेंट्स की तो बहुत होती है, पानी नहीं है ये नहीं है फर्नीचर नहीं है फलाना नहीं है, मतलब किसी भी बात को लेके उनको राजनीति मतलब करनी है तोड़ फोड़ और हड़ताल, और राजनीति का यहीं से उनका पहली सीढ़ी चढ़ते हैं वो, तो वो बहुत जोर शोर से करते हैं, उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी फिर एक लेडी को, वो भी बॉयज कॉलेज के अंदर, लेकिन मैं
1: जी
0: पढ़ी भी
1: हाँ,
0: बॉयज कॉलेज में हूँ और मैं उनको समझती भी हूँ, तो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक इसको चुनौती को स्वीकार किया, और उपलब्धियों की बात यह है कि उन वो जो बच्चे थे और जो अभी भी हमारे यहाँ के कई सारे जो राजनेता हैं अभी जैसे बिरला जी हैं और चांदी धारीवाल हैं और ये सब हमारे यहाँ से ही पढ़े हुए हैं, तो ये लोग जो है इनकी जब वो देखती हूँ मैं उपलब्धियां, और कई लोग रिटायर हो रहे हैं प्रिंसिपल से और कई लोग किसी RAS IAS में जा रहे हैं, तो वो सब उपलब्धियां हैं मेरे लिए कि मैं उनके साथ में रह करके उनको संतुष्ट कर सके और अच्छी तरीके से प्रशासन संभाल सके, क्योंकि ये प्रशासनिक वो दिक्कतें हैं जो चुनौतियां और उपलब्धियां दोनों बन के सामने आती हैं, और डीन का जहां तक सवाल है, डीन मैं यूनिवर्सिटी में थी कोटा यूनिवर्सिटी में, और पूरी फैकल्टी आर्ट्स फैकल्टी उसकी
1: जी
0: मैं डीन थी, तो किसी भी तरीके की कोई भी समस्या किसी भी सब्जेक्ट में थी तो मैं हर एक की BOS में मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज की उसमें बैठती थी बैठक
1: ओके
0: में और उनको सॉल्व करती थी और फिर आती थी, और कितनी हजारों लाखों डिग्रियां आर्ट्स जो फैकल्टी है सबसे बड़ी है, लेकिन उसको भी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से चुनौती ली और उसको फिर सब उसको स्वीकारा भी, और फिर उसके अंदर जो भी मेरे को उपलब्धि मिली वो भी मेरे सामने अभी भी खड़ी है, अभी भी लोग याद करते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी हो स्कूल कॉलेज हो या कुछ भी हो वो सब लोग मेरे से आज भी जुड़े हैं, तो ये उपलब्धियां हैं।
1: बहुत सुंदरता से आपने बताया, और आई कैन अंडरस्टैंड कि कोटा का नाम भी कई तरह से फेमस भी है और कई तरह से इनफेमस भी है।
0: हाँ
1: ये
0: बिल्कुल, जब तक वहां
1: शांत
0: पे ये हब नहीं बना था इसका कोचिंग वाला,
1: कोचिंग
0: उससे
1: कोचिंग
0: पहले
1: वाला
0: सारे बदमाश ही थे, सारे इंडस्ट्रियल
1: वही
0: एरिया
1: वही
0: था वो,
1: वही वही वही
0: तो
1: मैं कह
0: वहां
1: रहा
0: पे तो
1: था।
0: चाकू छुरों से पहले बात ही नहीं होती थी, और
1: बिल्कुल
0: जब भी
1: बिल्कुल
0: इतने
1: बिल्कुल
0: बड़े कॉलेज में कुछ होता तो मुझे बुलाते थे घर से, क्योंकि वो
1: बिल्कुल
0: मेरी बात मानते थे तो यही एक सफलता उपलब्धि है,
1: जेके की फैक्ट्री बंद करवा दी थी इन
0: बंद हुई
1: लोगों ने
0: उसके
1: वहां पे,
0: बाद में
1: और
0: कोचिंग,
1: उसके
0: बिल्कुल
1: बाद
0: बिल्कुल
1: कोचिंग
0: बिल्कुल
1: करवा
0: बिल्कुल।
1: दी। वो
0: हाँ जी
1: मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितनी डिफिकल्टी, और ये शांतिलाल धारीवाल और ये जो वहीं
0: वहीं
1: की
0: के
1: तो
0: हैं,
1: पैदाइश है,
0: बिल्कुल
1: वहीं की
0: वहीं के
1: पैदाइश,
0: हैं,
1: वहीं
0: ओम
1: की
0: बिरला भी
1: पैदाइश है।
0: हमारे कॉमर्स कॉलेज से निकले हैं,
1: कॉमर्स
0: और मैं
1: कॉलेज से
0: लास्ट में
1: निकला
0: जब रिटायर हुई तो कॉमर्स कॉलेज से ही हुई थी, तो
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सारे लोग निकले हैं, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, भुवनेश
1: हाँ
0: चतुर्वेदी ये वो जो सेंटर मिनिस्टर वगैरह सब रहे, तो ये
1: हाँ
0: सारे कोटा के ही तो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ
1: मैंने भी अपने स्कूल की पढ़ाई कोटा में की है, इसलिए कोटा से मेरे को काफी ही एफिनिटी है।
0: हाँ जी
1: चलिए
0: हाँ
1: आगे बढ़ते हैं।

0: आपके निर्देशन में कई शोधार्थियों ने पीएचडी पूरी की,
1: जी,
0: तो एक गाइड के रूप में, शोध मार्गदर्शक के रूप में आपकी सबसे बड़ी क्या जिम्मेवारी लगती है?
1: एक्चुअली क्या है कि आजकल जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शोधकर्ता हैं, बच्चे हैं, वो सिर्फ गूगल से लेकर के और इधर से उधर से लेकर के अपना काम करते हैं, वो कभी भी रिसर्च नहीं करते। मतलब जो चीज है उसी को हमने दोबारा सर्च करना है, तो वहां जाके आप ऑथेंटिक देखो तो सही, उसको समझो सही, पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब वो लिखते हैं तो उसको कॉपी भी एज इट इज करते हैं, मतलब जो गूगल पे लिखा हुआ है वही लैंग्वेज यूज करते हैं। तीसरी बात है कि अशुद्धियां करते हैं, हिंदी में भी अशुद्धियां करते हैं। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको गाइड करें कि भाई आप मौके पे जाके देखो। जैसे मेरा भी फील्ड वर्क था, मैंने पूरा राजस्थान घूमा है, एक एक जिला, गांव, ढाणी, मतलब सब पे, और एक एक हवेली उसकी, मतलब कितना वाइड मतलब काम था। फिर भी क्योंकि हमारे गाइड ऐसे थे कि वो कहते नहीं जाकर क्या हो, मुझे बताओ किसी दूर था क्या था। पर आजकल ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है, वो उठाएंगे किसी भी किताब को और बस उससे लिख देंगे। आप अगर जाओगे वहां पे तो वो चीज मिलेगी भी नहीं वहां पे। बल्कि मेरे जो एग्जामिनर आए थे आरपीएससी में, उन्होंने एक मारवाड़ म्यूरल्स पे एक किताब लिखी थी, उसको लेके मैं घूमी, और बाद में जब वो मेरे एग्जामिनर बन के मतलब वहां पे आए उसमें आरपीएससी में, तो पहले मेरे घर आए, फिर उनको पता लगा कल मैं बैठ रही, तो वापिस गए। और जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, वो वापिस मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी किताब को लेके मैंने बहुत पैसा गवाया, घूमा, कहीं पे कुछ नहीं था। फिर उन्होंने डिलीट भी की, वो भी मेरे गुरु के उसमें करी, तो बिना उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा रही पैसे। तो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए। मेरा जो रिसर्च स्कॉलर्स है उनको मैं कहती हूँ पूरा अपना काम स्वयं जाकर के देखो, उसको समझो वो है भी कि नहीं है। तो कुछ भी लिख दोगे आप और कुछ भी मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं होगा। रिसर्च मतलब कि वो चीज होनी चाहिए, उसको आप वापिस सर्च कर रहे हो, देख रहे हो। दूसरा, आपकी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग बना आनी चाहिए। आप खुद जब सर्च करोगे तो आपका जब एग्जाम वाइवा होगा तो आपको याद आएगा, अगर आपने कॉपी किया होगा तो आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला। फिर वो टाइपिंग में मिस्टेक्स होती है, उसको भी वो लोग नहीं देख पाते, मतलब उसको भी, उसमें भी जो गलतियां रह जाती है वैसी रह जाती है, तो फिर क्या रिसर्च करना है। तो मेरा बेसिक फंडा यही है कि आप पहले अपने आप सारा सर्च करो, उसके बाद अपने सेंटेंस को देखो, फ्रेमिंग्स को देखो, क्या कर रहा है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है। फिर टंकण में जो मतलब टाइपिंग में जो होती है उसको भी आपको देखना पड़ता है एक बार कि भाई सही है कि नहीं है। तो ये सारा मेरा फोकस उस पर रहता था, और वो खुद से अपना काम करें इस बात पे, यही यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है मुझे।
0: सही बात है।

0: चलिए अब थोड़ा सा अपन रुख बदलते हैं। अब आम श्रोताओं के लिए अगर आप सरल भाषा में बताना चाहें कि स्केचिंग, ड्राइंग और पेंटिंग में क्या मूलभूत अंतर है, क्या फर्क है?
1: बिल्कुल, स्केचिंग जो है, एक्चुअली स्केचिंग हम तब करते हैं कि जब हम किसी जगह पर कुछ चीज बनाने जाते हैं वहां पे, तो उसका आप या तो फोटोग्राफ लेके, तो फोटोग्राफ लेना उतना आर्टिस्टिक भी नहीं होता है क्योंकि उसको आप वैसा के वैसा ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। पर आपको अगर आपको अपने ऊपर कमांड है, आपने स्टडी किया है ह्यूमन बॉडी का या पर्सपेक्टिव का, किसी सीन का, मतलब सीस्केप, लैंडस्केप या कोई भी चीज का, तो आप रैपिड स्केच करते हैं। रैपिड मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि आप जब जिस जगह चाहेंगे वहां घंटों तो बैठ नहीं सकते, और आपको वो दृश्य आपको अपनी स्केच फाइल में लाना है, उसके बाद डेवलप करना है, तो आप रैपिड स्केच करेंगे। और उसका एक तरीका होता है कि आप कभी भी रबर यूज नहीं करेंगे, और बार बार आप लाइन खींच सकते हो, उसमें से फाइनल लाइन आप घर में से निकाल सकते हो। तो रैपिड स्केच इस काम में आता है कि आप अपनी जो पेंटिंग बना रहे हैं उससे पहले जिस जगह का आप दृश्य बनाना चाहते हैं उसके कुछ स्केचेस फास्ट एकदम जल्दी जल्दी करके और घर पे ले आए और फिर स्टूडियो में बैठ के उसको डेवलप करें, तो ये स्केचिंग है। पर स्केचिंग में आपको पहले बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, हर चीज के लिए पर्सपेक्टिव आना चाहिए, नापना आना चाहिए, अगर ह्यूमन बॉडी बना रहे हो तो हर चीज की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप रैपिड स्केच खींच पाते हो, डॉट डॉट करके नहीं। और ड्राइंग एंड पेंटिंग जो है वो आप घर पे ला करके उसकी ड्राइंग, फाइन ड्राइंग्स बनाइए और फिर उसमें पेंटिंग कीजिए, ये है।
0: ओके, तो स्केचिंग में इसका मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी, अगर मतलब किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए,
1: थोड़ा सा तो जानकारी हो, तभी आप चार लाइनें खींचोगे तो भी आप बाद में उसमें से निकालोगे, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप चार लाइन भी कैसे खींचोगे, फाइन लाइन्स बाद में निकाल लो आप ड्रॉइंग करते टाइम, लेकिन थोड़ी सी आपको पहले अभ्यास करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ सबसे पहले स्केचिंग के लिए ही लेके जाते हैं बाहर,
0: अच्छा,
1: जिससे कि आपकी आदत पड़े बार बार, क्योंकि सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे एकदम से कैच करते नहीं है, उनके जितने पोस्चर से बदलते रहते हैं, आप नृत्य में देखने जा रहे हैं तो उनके बदलते रहते हैं, कुछ भी बात अगर आप किसी को भी स्केच कर रहे हैं तो वो बदलेंगे, पर आपके लिए वो थोड़ी ना रुकेंगे स्टेज पर।
0: तो आप पेंटिंग की कई विधाएं होती है जो हम लोग में थोड़ा बहुत जानते हैं, वाटर कलर है, ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक है, म्यूरल है, कुछ बताइए ये क्या क्या है और अलग अलग क्यों है और इनमें क्या समानता है, और आपको कौन सी विधा सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है वो?
1: हाँ जी बिल्कुल, वाटर कलर के बारे में सबसे पहले आपने पूछा है, तो वाटर कलर एक बहुत डिफिकल्ट विधा है।

लोग बस सोचते हैं कि ये बहुत सरल है, क्योंकि वाटर कलर में हम लोग जब ट्रांसपेरेंट कलर को यूज करते हैं शीट पे या किसी पे भी, तो व्हाइट की जगह हम व्हाइट छोड़ते हैं, उसके बाद हम बहुत लाइट कलर से शुरू करके डार्क कलर की तरफ जाते हैं। और अगर आपने गलती से पहले गलत जगह पर डार्क लगा दिया तो फिर तो आप उसको ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट कलर है और उसको नीचे जो शेड है वो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो आपको बहुत संभल के काम करना पड़ता है, पहले लाइट कलर लगाओ, फिर दूसरी टोन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके आपको करना पड़ता है। और पहले से आपको ध्यान रखना पड़ता है हाईलाइट कहाँ छोड़नी है। ये तो वाटर कलर की बात, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑयल पेंटिंग थोड़ी इजी होती है, इजी इसलिए होती है कि ऑयल पेंटिंग सूखती देर में है, और आपने अगर गलत भी लगा दिया, वैसे तो इसको आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये डार्क टू लाइट होती है, वो लाइट टू डार्क होती है, ये डार्क टू लाइट होती है। क्योंकि अगर आपने डार्क के ऊपर थोड़े हल्का फिर हल्का फिर हल्का लगाया, कुछ नहीं होगा, ब्राइटनेस रहेगी, शेड्स भी बदलेंगे।

पेंटिंग का ये बिल्कुल रिवर्स है वॉटर कलर से, डार्क टू लाइट और वो लाइट टू डार्क। और इधर एक्रेलिक है, एक्रेलिक ओपेक कलर होता है, ओपेक मतलब थिक, जिसमें से नीचे ट्रांसपेरेंस नहीं होती, नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो वो एक्रेलिक कलर को आपको लगाने से पहले, वो सूखते बहुत जल्दी हैं और वैसे बहुत इजी होते हैं वो लगाने, लेकिन उसमें आपको फाइनली पहले एक लेआउट बना लेना चाहिए कि ये कलर मैं यहाँ लगाऊंगा, ये यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, फिर आप उसको बड़ा कर दो, उस उन कलर्स को आप फैला दो, क्योंकि उसमें भी आपको फ्रेशनेस तभी दिखेगी जब आपके फ्रेश कलर होंगे, मिक्स करोगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो मिक्स करने जैसे होते नहीं, बहुत कम जगह पे आप लेयर वगैरह करके यूज कर सकते हो या टेक्सचर दे सकते हो, लेकिन वो बहुत जल्दी सूखने वाले कलर हैं, तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कौन से एरिया में क्या कलर लगाना है। म्यूरल का जहां तक सवाल है, म्यूरल पेंटिंग्स में तो मेरी रिसर्च ही है, तो उसके लिए डिफिकल्ट बहुत है, क्योंकि पहले आपको वॉल बनाने को, दो तरह के होते हैं म्यूरल्स, एक सैको और एक ब्यूनो, तो जो ब्यूनो होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें दीवार को भी तैयार करना पड़ता है आपको, भूसा और ये सब चीजें लगा लगू करके, कई सारी चीजें उसमें अंदर डाल के, और फिर उसको गीले गीले के ऊपर ही एक खाका बनाना पड़ता है और उसके अंदर रंग भरने पड़ते हैं और वो सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद वो बाहर नहीं निकलते। तो उसमें भी आपको बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा, ज्यादातर मिट्टी के खनिज रन ये सब यूज होते हैं, या फिर कोई अपने धातु वातु से बने हुए, जैसे तांबे पे हरा रंग आ जाता है, अपन कुछ खटाई लगा दो ये सब, तो उस तरह के रंग इन पे यूज होते हैं। और उसके बाद इनको नारियल की पोटली से ऐसे टप टप टप टप करना पड़ता है, जिससे वो अंदर तक घुस जाए और चिकनी एक लेयर आ जाए तो वो निकलेगी। तो ये डिफिकल्ट है, काफी लंबा प्रोसेस है। और दूसरा सेको जो है वो बिल्कुल आपके ओपेक कलर, जैसे एक्रेलिक है, ऐसे आप किसी भी वॉल के ऊपर सूखे कलर्स ऊपर से लगा सकते हो, पर वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मतलब ज्यादा देर तक नहीं रहते, वो निकल जाते, लेकिन जो सेको है वो उसमें चले जाते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी अजंता के और ये जो मिनिएचर बनाते हैं उसमें थोड़ा उन्होंने कभी दीवारों पे भी बनाया, वो सारे ब्यूनो टेक्निक से बनाया, तो ब्यूनो टेक्निक ज्यादा अच्छी होती है और अंदर तक चली जाती है और पता ही नहीं लगता है, वो दीवार के अंदर ही एक अपना वो ले लेती है अस्तित्व। तो ये है इसकी म्यूरल की बात। अब इसमें से मेरे को कौन सी शैली विशेष प्रिय है, तो मैंने ज्यादातर काम तो उसमें किया है ऑयल में, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है और मैं पोर्ट्रेट्स और लाइफ ज्यादा बनाती हूँ, तो उसमें कई बार उसको बनाऊंगी तो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो ऑयल में बड़े फ्रीली आप कर सकते हो काम, बस इतना ध्यान रखना है कि डार्क पे लाइट नहीं लगनी चाहिए। तो ज्यादा काम मैंने उस पर किया है, वैसे मैंने सब में किया है, वॉटर कलर में भी किया है, एक्रेलिक में भी किया है, और मैंने कोलाज भी किए हैं। मैं किसी भी शैली को कभी छोड़ती नहीं, मेरे को सब सीखने का शौक है, पर मैं ज्यादा काम मैंने ऑयल पेंटिंग पे किया हुआ और एक्रेलिक में।

0: अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी ब्यूटीफुली आपने ये सब चीजें एक्सप्लेन की। हालांकि एज ए लेमैन ये बहुत कुछ चीजें मेरी आधी समझ में आई आधी नहीं आई, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा और थोड़ा बहुत जानकारी भी हो गई इस आपके इस एक्सप्लेनेशन से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत
1: अब मेरा होगा एक भाग्य कि मैं आपको थोड़ा
0: बढ़िया।
1: बता सकी।
0: नहीं, ये बहुत ही टेक्निकल सा काम है। वैसे आप थोड़ा राजस्थान की लोक कला की तरफ आते हैं, कला की दृष्टि से राजस्थान की लोक कला और परंपरागत चित्र शैली जैसे किशनगढ़, फड़, पिचवाई, इसको आप कैसे देखती हैं?
1: एक्चुअली लोक कलाएं हैं वो तो मांडने भी हैं, और दूसरी जो करते हैं ये लोग फेस्टिवल पे वो भी सब वही हैं। लेकिन
0: अच्छा।
1: अब आपने पूछा है कि किशनगढ़, तो किशनगढ़
0: हाँ
1: शैली जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर है तो एक बनी ठनी नाम की एक पेंटिंग है,
0: हाँ बनी ठनी,
1: जो
0: बनी ठनी।
1: कि वहां के राजा सावंत सिंह के टाइम में वो गायिका थी और कवित्री थी, वो बहुत सुंदर थी और उन्हीं को मॉडल रख करके और उन्होंने इस बनी ठनी को बनवाया था। तो उसका एक अलग ही अपना, अच्छा किशनगढ़ का जो काम है ना वो थोड़ा, जितने भी काम है बूंदी की शैली, किशनगढ़ की शैली, उदयपुर की, बीकानेर की, जोधपुर की, सब में थोड़ा सा फर्क है। तो जो किशनगढ़ का जो काम है उसमें तो थोड़ा येलोइश लेते हैं वो लोग स्किन के कलर में, और जो
0: अच्छा।
1: बूंदी का है उसमें थोड़ा रेडिश लेते हैं, ऐसे सबकी थोड़ी थोड़ी, ये जो होती है बहुत डेलिकेट होती है, आंखें इनकी बिल्कुल कान तक होती है, नाक बहुत छोटी जैसी होती है, बहुत खूबसूरत होती है। और वो
0: अच्छा।
1: जो बूंदी की है वो थोड़ी सी मतलब स्टाउट सी होती है, थोड़ी गुलाबी से रंग की होती है। वो सब वहाँ की जो मतलब वहाँ के जितने भी इंसान है ना क्षेत्र वाइज अलग अलग होते हैं। आप देखो जोधपुर के बहुत बड़े होंगे, बीकानेर के लंबे होंगे, मेवाड़ के
0: जी।
1: ठीकने होंगे, उसी के अनुसार उन्होंने अपनी ये पेंटिंग्स बनाई है। लेकिन इसमें किशनगढ़ की शैली पे जो बड़ी ठनी बनी है उसकी तो तुलना जो वो जो उन्होंने बनाया था, क्या नाम है, हमारे बहुत बड़े कौन से कलाकार हैं, वह उन्हें ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, बहुत
0: जहाँ
1: विंसी,
0: कोई बात नहीं,
1: लियोनार्डो
0: कोई बात
1: विंसी, विंसी से मिलती
0: नहीं।
1: जुलती हैं। तो और बाकी के ये जो आप फड़ और पिचवाई की बात कर रहे हैं, तो फड़ एक कपड़े पे बनाई जाती है, पिचवाई भी,
0: जी
1: तो ये ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियों के पीछे लगाते हैं और उसमें कोई कथा या कहानी होती है अगर आप उसको
0: जी
1: देखो ध्यान से,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ हाँ
1: वो उसी के लिए ही लगाई जाती है। उसमें पूरा चित्रण होता है उसके, जिसके भी बारे में वो बना रहे हैं, चाहे वो किसी राजा के हो, चाहे वो किसी देवता के हो, चाहे वो कोई किसी के भी हो, तो वो उसकी
0: कृष्ण भगवान के
1: कृष्ण
0: भी
1: के भी हो,
0: बहुत
1: और वो रामदेवरा में भी उनके पे भी कथाएं हैं बहुत सारी, कई सारी चीजें, वो सारी
0: है।
1: फड़ जो है वो कोई कहानी कहती है, मतलब उसमें कई सारे दृश्य होते हैं एक ही फड़ में, और वो पीछे लगाने का, दीवार पे लगाने का है उसका, तो वो भी बहुत अच्छी है। मतलब कलाएं तो सभी बहुत अच्छी है, मांडने भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखोगे ना पुराने मतलब इसके, चाहे हड़ौती के हों, चाहे उदयपुर के हों, चाहे कहीं के भी, मांडने भी इतने खूबसूरत हैं, और उन्होंने उसको भी एक अलग शैली, जो उनके दिमाग एक्चुअली जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपकी मस्तिष्क पे आपके वो इम्प्रेशन छोड़ रहा है उसको लेकर के उन्होंने बनाए, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आज की आधुनिक शैली से मिलते भी बहुत है। वो लोग जो
0: जी
1: जान के करते हैं आज, वो अपने आप करते थे स्वतः, तो ये है।
0: बहुत बहुत सुंदर।

0: तो अब थोड़ा सा बेसिक्स पे आते हैं। एक अच्छा चित्रकार बनने के लिए किन गुणों का या एट्रीब्यूट्स की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों।
1: एक अच्छा चित्रकार होने के लिए सबसे बड़ी बात तो उसकी दृष्टि, उसका परसेप्शन, वो क्या देख रहा है, अवलोकन। और उसके बाद में आपको उसको वो जो सृजन करता है उसकी सारी टेक्निक्स, वो सारी चीजें उसको बनानी आनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि वो एज इट इज कॉपी नहीं, उसके अंदर उसका अपना खुद का जो भाव और जो उसने ग्रहण किया है वो उसके अंदर आर्टिस्टिक रूप में आना चाहिए। मतलब नकल करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने आप स्वतः काम करोगे दिल से, तो आपका अपना एक शैली खुद ही डेवलप हो जाएगी। जैसे हम साइन करते हैं तो अपने आप ही शुरू हो जाते हैं वो अलग। आप कितना भी कोशिश करो तो सबकी अलग पहचान है, तो अपनी एक अलग पहचान और सृजन शक्ति और ये मतलब देखना गहरी दृष्टि से, उसको देखना, उसकी चीजों को महसूस करना, ये चीजें। और फिर अपना मेहनत भी चाहिए उसके लिए, यानी कि जल्दी जल्दी करा और निकल गया।
0: हाँ, सही
1: बड़े
0: सही
1: पेशेंस चाहिए उसके लिए, धैर्य चाहिए उसके लिए।
0: धैर्य
1: तो
0: बहुत।
1: ये सब चित्रकार के गुणों का वर्णन कर सकते हैं कि ये होना जरूरी है। और ये एक तरीके से साधना है, तो ये एक मेडिटेशन भी है जो आपको खुश रखेगी, आप खुद से बनाओगे तब। जी
0: नहीं, आपने अभी बता ही दिया, ऑब्जर्वेशन अवलोकन बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कर सकती है जब आपकी गहरी दृष्टि या आपकी ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत ही ऑर्डनरी साधारण से दृश्य को एक अच्छी कलाकृति में बदल दिया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
1: मेरा एक ब्लैक एंड व्हाइट का एक सीरीज थी पूरी, जिसको कि
0: अच्छा
1: बड़े बड़े चित्रकारों ने और कलाकारों ने भी सराहा है, और उसका काफी पेंटिंग का निकला भी है पेपर्स वगैरह में हर जगह से। तो वो
0: जी,
1: मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को एक्चुअली, मैं बहुत फास्ट काम करने वाली हूँ, मुझसे धैर्य से धीरे धीरे वाले जो क्राफ्टमैनशिप है ना, वो मुझे वो एक अलग चीज होती है, और फाइन आर्ट्स और अपना एक अलग आपका काम होता है। तो मैंने जब स्केचिंग करती थी तो मुझे बोरियत बहुत लगती थी, तो मैंने
0: अच्छा,
1: काजल उठाया जो कि काजल बनता है ये इसमें लघु
0: आंखों में
1: चित्र
0: लगाने
1: में
0: वाला।
1: जिसमें लगाते हैं,
0: अच्छा
1: हाँ उसी को ही,
0: अच्छा
1: उसी को
0: वो
1: उठा के पाउडर बटा के बाजार में भी मिलता है। तो मैं अपनी स्केच फाइल ले जाती थी और जो भी मैं दृश्य देखती थी ना उसको मतलब वैसे नहीं करती थी जैसा कि आप फाइन लाइन से कर रहे हैं ये वो। एक एक आपकी दिमाग पे जो छाप पड़ती है उससे आप उसको फाइन फटाफट फटाफट, पूरी फाइल मेरी उसी से भरी हुई थी। और वो मुझे इतना एप्रिसिएशन मिला उसके अंदर, क्योंकि उसमें आपको एक फीलिंग आती है कि ये गांव की का दृश्य है, कि ये किसी हवेली का है, कि किसी गढ़ का है, कि ये क्या है। तो वो बहुत सबको बहुत अच्छा लगा और उतना उसके तारीफ हुई। और वो पूरी सीरीज बिक गई थी, कोरिया के कुछ लोग आए हुए थे, तो वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज मेरी चली गई, क्योंकि उसके अंदर आभास था, उसके अंदर यहाँ का राजस्थान का एक वो जीवन तो करके दिखता था वो। लेकिन वो प्रॉपर ऐसे नहीं कि आपने इतनी ऐसे ऐसे करके बना रखा है लाइन ड्रेस, वो चला ही जाएगा। आप देखो राजस्थान में धूल बहुत होती है और गड़बड़ सब जो उससे ढके रहते हैं, तो आपको एक इम्प्रेशन आता है। और वो इम्प्रेशन अगर आपने ले लिया, खाली दीवार के ही मैंने खिड़कियां वगैरह बनाई है, उसको भी उसी से ही किया। तो वो मैंने, मेरे को एक शो करना था, मेरी डेट फिक्स थी अहमदाबाद में, तो मैं उसको ले गई फाड़ करके, दो दो पैसे की तो शीट थी है उसकी, और फ्रेम करा के लगाई, वो इतनी पसंद की गई। और बाद में
0: अच्छा,
1: जब मैं आईफेक्स में मेरा शो था तब मैंने लगाई थी, तो वहां पे सकरात का दिन था, तो उस समय सारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो वहां आते हैं, उनका एक डिनर होता है तो सीनियर आर्टिस्ट, तो उन्होंने जब मेरी दोनों पेंटिंग्स देखी, दूसरी भी लगा रखी थी की, तो उन्होंने कहा अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, ये काम तुम्हारा कितना अच्छा है। तो वो सहज काम मतलब जो मेरे स्केचिंग के तरीके से यूज हो रहा था उसको बहुत एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि उसमें एक अलग झलक थी और उसके अंदर वो आभास भी था जो मैं बना रही थी। तो ये एक साधारण सी चीज को देख के, दीवार को देख के, उसकी जाली को देख करके, ऐसे मैंने बहुत सारे बनाए चीजें, और उसकी बहुत तारीफ भी हुई। तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा, और इसको आप मतलब मैं अनुभवी कहूंगी अपना कि ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा था। और गहरी दृष्टि तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो दिखाई दिया मैंने उसको एज इट इज उतार दिया, और वो भी किसी अलग शैली में अलग तरीके से।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

0: हाँ, एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि जो युवा आज
1: हाँ
0: कला
1: जी
0: के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कुछ आप सुझाव देना चाहेंगी, कोई गाइड करना चाहेंगी?
1: हाँ, एक्चुअली क्या है कि अभी एआई के द्वारा इतनी चीजें बन रही हैं, मतलब
0: जी
1: एज इट इज जो जो चाहते हैं वो बना देते हैं, पर आप डिजिटल काम भी कर रहे हो तो भी उसमें उस अगर आपका कुछ का खुद का कुछ है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो कैरियर में, लेकिन अगर आप एआई को रख करके किसी भी चीज को वैसा के वैसा वो बना देना, एक किसी पर्टिकुलर उसको दबा के, ऐप को दबा के या किसी चीज को दबा के, तो फिर आपका क्या कैरियर बनेगा? सिर्फ आप कमा सकते हो, वो भी लोग बाग इतनी जल्दी बोर हो जाएंगे उससे, क्योंकि उसमें कोई नॉवल्टी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी जब तक कि आप उसमें
0: जी
1: टेक्निक्स और दूसरी चीजों का प्रयोग नहीं करोगे। तो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: तो यही कहती हूँ कि भाई डिजिटल आप करो, क्योंकि आज की परिवर्तन तो बिल्कुल ऐसा सत्य है कि जिसको आप नहीं हटा सकते, लेकिन उसमें थोड़ा अपना भी डालो तो हो सकता है कि आप कुछ, मतलब जो भाव और उसके जो अंदर जो भी आप खुद करते हो उसमें जो कोमलता और वो क्रिएट करते हुए, तो वो अपना जो तुम्हारा उसमें जाता है वो ही आपको सक्सेस दिलाएगा, अदरवाइज कोई कैरियर नहीं।
0: अब थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन तक आते हैं। कोई इस पूरी जीवन यात्रा में, कला की यात्रा में, व्यक्तिगत यात्रा में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट या कोई ऐसी घटना जो आज भी आपके स्मृति में जीवंत है, आप अगर हमसे
1: हाँ
0: शेयर करना चाहें तो अच्छा लगेगा।
1: नहीं, मैंने आपको एक तो कांति बाई का उदाहरण बताया,
0: जी
1: इतने बड़े आर्टिस्ट जिनके सामने मैं मतलब खड़ी भी नहीं हो सकती, तो
0: जी
1: उनसे मैंने दो तीन बातें पूछी और उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई मुझे। एक्चुअली हम लोग क्या होता है, ईगो के कारण वही है हमारे में अहम होता है, हमको पता ही नहीं होता है और हम जो है वो सोचने लग जाते हैं कि भी ऐसे कैसे, नहीं मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो उन्होंने मुझे बहुत शांति से, आनंदमयी माँ के वो भक्त थे, बनाते थे उनको, बना भी रहे थे और उनके वो भी थे, तो उन्होंने कहा कि अर्चना, मैंने उनको कहा कि भाई ये फलाना जो है ना वो ऐसे आ जाता है और ये करता है वो करता है और मैं उनको मना नहीं कर सकती, तो उन्होंने मुझे सिंपली कहा कि नहीं, तुम उनको मना इसलिए नहीं कर सकती कि तुम्हारी इमेज उनके उसमें खराब नहीं हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, एक तो ये है, दूसरा मैंने माँ के लिए भी बोला था कि मैं उनको इतना प्यार करती हूँ और फिर वो मेरे से रोती हैं करती हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारा मैं आ गया ना इसलिए, तुम बचपन में वो तुम्हें मारती, तुम पल्ला पकड़ती थी, मतलब दो तीन ऐसी गहरी बातें बताई उन्होंने जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। और मुझे समझ में आया कि सच बात है कि हम किसी को उसको बुरा लगे इसलिए नहीं, हमको कोई बुरा नहीं समझे इसलिए हम उससे ऐसी बात नहीं करते। तो एक तो ये मेरे कभी मेरे स्मृति पटल से जाएगा नहीं कांति भाई की दो तीन सवाल को। दूसरा, एक वशिष्ठ साहब हुआ करते थे हमारे जब मैं लेक्चरर थी भवानी मंडी में, तो वो उन्होंने बहुत कम वहां पे थे, तो मैंने दो ग्रुप्स बनाए थे, मैंने कहा कुछ लोग पहले काम करेंगे फिर वो छुट्टी पे से आ जाएंगे तो दूसरे करें, तो वो वशिष्ठ साहब बड़े अच्छे वर्कर थे, बहुत अच्छे, और मेरे स्टूडेंट्स भी जो अच्छे होते हैं उनको मैं अच्छा ही करती हूँ चाहे उनका कुछ भी हो स्वभाव या कुछ भी करें। तो वशिष्ठ साहब कहने लगे मैं तो आऊंगा नहीं, मेरी बड़ी पहचान है और आप तो कर लो जो करना है, मैं तो घर में रहूंगा, आप दूसरे वाले कैसे जाएं। तो मैंने उनके खिलाफ एक्शन लिया, एक्सप्लेनेशन कॉल करा मतलब उनका, तो उन्होंने मेरे को बहुत, मैं ये हूं मैं ये करा दूं वो करा दूं, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उनकी एसीआर भरी गई, कुछ भी मैंने उनका आपको कर लो जो, तो उसमें मैंने उनको जो दिया ना एक्सीलेंट, तो वो इतने ज्यादा वो हो गए कि मैं तो सोचता था कि आप मेरी बहुत बुरी करोगे ये करोगे। तो मेरा कहना यही है कि हमेशा जो डिजर्विंग है व्यक्ति वो चाहे कुछ भी करे व्यवहार आपके साथ, लेकिन आपको ऑनेस्टली जो डिजर्व कर रहा है वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं, तो उनको मैंने एक्सीलेंट दिया। ऐसे ही मैंने एक और को दिया तो वो अभी प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो मैं हर एक से बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ये जो सीखा है ये भी किसी से सीखा है कि आप अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए किसी और का कैरियर या उसका कोई भविष्य नहीं बिगाड़े। और फिर वो तो बेचारे एक साल तक मेरे से यही कहते रहे, मैं तो सोचा नहीं था, मैंने तो आपको गलत समझ लिया, तो सब वो भी मुझे याद रहता है किस्सा। और स्टूडेंट्स के बारे में भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी मेरी स्मृति में चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि जिसने मेरे को थोड़ा सा शायद एक कदम ऊपर आना सिखाया, तो
0: बहुत
1: ये मेरे को याद
0: बहुत
1: है
0: सुंदर। और ये एसीआर वाली बात तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो
1: नहीं, वो तो बिगाड़ के ही रखते हैं। मैंने मेरी एहसास देखी है ना बाद में, तो चिड़ जाते हैं तो बहुत बिगाड़ते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, जो व्यक्ति जैसा है वो अलग बात है कि उसने क्या किया, वो व्यवहार अलग, पर उसने काम किया था बहुत अच्छा, तो उसको आपको सराहना ही पड़ेगा और जो डिजर्विंग है उसको देना चाहिए।
0: बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, परिवार का कितना सहयोग रखा?
1: हाँ जी, एक्चुअली क्या था कि मैं जब 11th क्लास में थी तो मेरे फादर जो है उनकी का देहावसान हो गया, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू बिना पढ़े लिखे इतना सर जब टॉप टॉप करती सारे स्कूल स्कूल में, तो तू पढ़ा कर क्योंकि तेरे को ही संभालना है मेरे जाने के बाद। उन्हें पता था कि मैं चाहूंगा, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम थी। तो मेरे परिवार में मेरे जो संघर्ष थे वो 11th क्लास के बाद से शुरू हो गए थे, और उन संघर्षों से लड़कर के ही मैं इतनी मजबूत बनी। जिसने कभी पानी नहीं पिया अपने घर में गिलास उठा के, वो सारे काम कर रहे थे, बर्तन माज रहे थे, झाड़ू पोछे कर रहे थे, निवाड़ की खाट बुन रहे थे, गद्दे भरवा के ला रहे थे, और किसी तरह की कोई शर्म नहीं थी। तो मुझे समझ में आया कि आदमी को मजबूत जब बनना होता है ना, तो उसको हर तरीके के

0: संघर्ष से लड़ाई करनी आनी चाहिए। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि मुझे मजबूती जो मिली आज, जो मैं इतनी सबसे लड़ सकती हूँ परिस्थितियों में, वो सिर्फ उसी के कारण है कि जब से वो गए तो मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को तो अब करना ही है, क्योंकि मुझे वो सौंप के गए ये काम कि तुम्हें ये सब करना है, मम्मी को रखना है, अपने भाइयों का देखना है, सब कुछ करना है। तो उस
1: जी
0: संघर्ष में मैंने बहुत आनंद भी लिया और सीखा भी बहुत,
1: बहुत इसने मजबूत बना दिया आपको एक तरह से कह
0: बिल्कुल
1: रहा
0: मजबूत बनाया, बिल्कुल हर परिस्थिति से लड़ना सिखा दिया।
1: है। तो कला यात्रा को अगर 3 शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो कौन से वो 3 शब्द होंगे?
0: तीन शब्द मुझे तो वही लगता है कि अवलोकन, एक तो आपको देखना अच्छी तरह गहराई से आना चाहिए, आपको किसी भी चीज को परखना आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा आपको कल्पना में भी उसको ले जा सकते हैं, एज इट इज ही बनाना, वो तो वैसे भी बहुत सुंदर बनाई हुई है, कैमरा भी दे देता है आपको, और लेकिन आप उसमें अपना थोड़ा सा अपने खुद का फुट डालते हैं कल्पना का और उसका, तो बहुत सारे लगता है। और सृजन के लिए आपको सशक्त सारी जो सृजन की प्रक्रिया है उनको सीख करके और उनको अप्लाई करना चाहिए, ये तीन चीजें।
1: तो डॉक्टर अर्चना जी, आपने जिस आत्मीयता से अपने अनुभव, विचार और जीवन की झलकियां हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपकी बातें साबित
0: थैंक
1: करती
0: यू,
1: हैं कि कला सिर्फ रंगों और रेखाओं का संयोजन नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। हमारी शुभकामनाएं आपके सृजन और प्रेरणा
0: बिल्कुल
1: की यह यात्रा यूं ही रंगों से भरी रहे। श्रोताओं, मुझे विश्वास है आज की
0: थैंक
1: बातचीत
0: यू,
1: आपको भी अपनी रचनात्मकता को नया आयाम देने की प्रेरणा देगी। अर्चना जी, आपने
0: जी
1: अपना
0: बिल्कुल,
1: कीमती समय दिया और हमारे कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं।
0: और मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं अपनी कुछ बातें सब श्रोताओं को सुना करके बता सकती, जो कि मैं महसूस तो करती हूँ पर कहने का कहीं मौका इतना मिलता नहीं।
1: तो श्रोताओं, इसी सुंदर भावना के साथ मैं आलोक कुमार आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे एक नए अतिथि, नई प्रेरणा और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
5: एकता और ऐश्वर्या,
6: कैसे हो बच्चों? नमस्ते नमस्ते। अरे वाह वाह, आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हो।
7: हाँ, भैया।
6: लेकिन ये क्या, ये तुम कुछ छुपा रहे हो क्या?
7: नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे।
6: नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, ये कुशागर और ये निशांत, इनके इन्हें इनके हाथ में शायद कुछ है। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, है इतने सुंदर फूल। वाह वाह वाह, कितने सुंदर फूल है। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। अच्छा ये बताओ भाई, इन फूलों को तुम लेकर कहाँ से आए?
7: ऋचा के बाग के फूल हैं।
6: ऋचा के बाग के
7: हैं? हाँ भैया, ये मेरे बाग के फूल हैं।
6: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत अच्छे फूल लेकर आई हो तुम, बहुत अच्छे फूल है ये। अच्छा ये बताओ कि ये फूल तुम लेकर क्यों आए हो मेरे लिए?
7: भैया, हम आपको उपहार देना चाहते थे।
6: अच्छा,
7: आप हमें एक कहानी इतनी सुंदर भी तो सुनाते हो।
6: अरे वाह, क्या बात है मेरे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वाह, क्या खुशबू है इन फूलों की। सचमुच फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं। एकता और ऐश्वर्या को भी फूल बहुत सुंदर लगते थे।
7: ये कौन है भैया?
6: वही तो बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, मेरी कहानी का नाम है एकता और ऐश्वर्या, और आज के मेरे अक्षर हैं ए और ए। ए ए
8: ए ए
6: ए ए,
8: ए, ए।
6: हाँ, शाबाश। ए से एकता और ए से ऐश्वर्या, एकता और ऐश्वर्या। तो एकता और ऐश्वर्या दो बहनें थीं। दोनों एक दिन एक बाग में घूमने के लिए गईं।
7: ए से एड़ी।
6: हाँ तो बच्चों, वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जैसे तुम लेकर आए हो मेरे लिए, है कि एकता उन्हें एक टक देखती रह गई।
7: ए से एकता और ए से एक टक।
6: शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसने सोचा
9: माली से पूछूं कि उन्होंने इतना सुंदर हर एक गुलाब और हर फूल खिलाया कैसे।
6: हाँ तो बच्चों, फिर एकता और ऐश्वर्या माली को ढूंढने लगी। हाँ तो पता है, माली काका मिले ही नहीं।
7: क्यों?
6: बताता हूँ बच्चों। उन्होंने बहुत ढूंढा तो देखा कि माली काका बाग के कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत यानी शांत, खाली जगह। तो ए से
7: एकांत।
6: शाबाश, ए से एकांत। तब बच्चों, ऐश्वर्या ने माली काका से पूछा,
9: माली काका, आपने इतने सुंदर फूल और वो भी इतने बड़े बड़े उगाए कैसे।
6: तो माली काका एकदम गुस्सा हो गए और बोले, दूर हटो यहाँ से।
7: माली एकदम से गुस्सा क्यों हो गए?
6: अरे बताता हूँ ऋचा, लेकिन पहले बताओ, ए से
7: एकदम।
6: ए से
7: एकदम।
6: एकदम, शाबाश। तो गुस्से में ऐठ गए माली काका। ऐसे
7: ऐठ कर।
6: हाँ शाबाश
7: भैया, ऐसे ऐसा भैया, ऐसे।
6: सही कहा तुमने, ऐसे ऐसा। बिल्कुल सही, शाबाश। तो बच्चों, एकता और ऐश्वर्या की बात सुनकर माली काका बोले,
10: अरे ना जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं। मैं इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं, मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाँ
7: ये तो बहुत बुरी बात है भैया।
6: हाँ बहुत बुरी बात है।
7: मालिका तो दुखी होते होंगे।
6: बिल्कुल होते थे बच्चों,
7: मेहनत करने ऐसा नहीं करना चाहिए।
6: बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
7: मैं तो कभी भी फूल नहीं तोड़ता।
6: फूल। शाबाश। तो बच्चों, तब एकता ने पता क्या किया?
7: बताता हूँ। जल्दी।
6: हाँ जल्दी बताता हूँ। तब बच्चों, एकता ने एक पेड़ की डाल पर ये लिखकर टांग दिया।
7: क्या भैया?
6: यही कि यहाँ फूल तोड़ना एकदम मना है। और ऐश्वर्या ने भी बाग के बाहर ये ऐलान कर दिया।
7: क्या भैया?
6: उसने ये ऐलान किया कि जो भी फूल तोड़ेगा उस पर जुर्माना होगा, और जिसे बाग देखने आना है उसे टिकट भी लेना होगा।
7: अरे वाह, टिकट लगा दिया।
6: हाँ टिकट लगा दिया,
7: की तो कमाई हो गई।
6: बिल्कुल कमाई हो गई, शाबाश। हाँ। तो बच्चों बताओ, ऐसे
7: ऐश्वर्या,
6: ऐनक,
7: ऐसा,
6: और ऐसे ऐलान, ऐसे ऐलान। हाँ ऐलान कर दिया उसने। तो बच्चों, इस तरह से एकता और ऐश्वर्या ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। माली काका की मेहनत भी बेकार नहीं गई और मेहनत का इनाम भी मिला। बताओ कैसे मिला?
7: अब लोग टिकट लेने लगे।
6: बिल्कुल सही,
7: माली काका को भी कमाई हो गई।
6: बिल्कुल कमाई भी हो गई।
7: अब कोई उनका फूल नहीं तोड़ेगा।
6: अब कोई उनके फूल नहीं तोड़ेगा। शाबाश,
7: अब खुश रहते हैं।
6: अब खुश रहते हैं
7: और बहुत सारे फूल खिलेंगे।
6: बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। अब लोग टिकट लेकर बाग देखने आते थे और हाँ फूल भी नहीं तोड़ते थे। इस तरह से न तो फूल टूटते थे और न ही बाग की सुंदरता कम होती थी, बल्कि बाग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाँ, साथ साथ माली काका धन भी कमाने लग गए थे।
11: बहुत खुश हो गए।
7: उनके यहाँ चिड़िया भी आने लग गई।
6: चिड़िया आने लग गई,
7: टूरिस्ट आने लग गए।
11: और उनकी फोटो बाहर छप गई।
6: अखबार में छप गई। यानी उनका बहुत प्रचार हो गया, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए दूर दूर तक।
12: ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

एकांत में बाग का माली था बैठा। पूछा जब ऐश्वर्या ने तो माली थोड़ा सा ऐठा। माली को गुस्से में पाकर दोनों का दिल था बैठा। ऐसे एकांत और ऐसे ऐश्वर्या और

0: एकता और ऐश्वर्या ने पूछा,
1: काका गुस्सा क्यों ऐसे? माली बोला,
2: लोग यहाँ पर आते हैं जाने कैसे कैसे, एक एक फूल को तोड़ फेरते हैं मेरी मेहनत पर पानी जैसे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: तूतुन की रेल छूट गई, पता नहीं कहाँ रह गए बच्चे सभी।
2: अरे लो आ गए बच्चे, आ गए। नमस्ते आओ बैठो, चलो अपने
3: जगह पर बैठो। बच्चों आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो।
4: हम पार्क में खेल रहे थे।
2: अच्छा, तो बहुत मस्ती की होगी तुमने पार्क में, है ना?
3: अच्छा ये बताओ तुम और कहाँ कहाँ मजे करते हो?
4: झूले पर।
2: अच्छा, और
4: सहेली के घर पे, मामा के यहाँ।
3: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बताओ नानी जी के घर कौन मजे करता है?
4: मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाता हूँ।
2: अच्छा,
4: मैं भी जाता हूँ और हम नानी के घर पे खूब शैतानी करते हैं। और उधर मामा जी भी होते हैं हमारे। अच्छा। और मेरी मम्मी भी होती है।
3: भाई वाह। अच्छा बच्चों पता है तुम्हारे जैसा ही एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना नटखट सा बच्चा था जिसका नाम था तूतुन।
2: क्या नाम था?
5: तूतुन।
3: तूतुन को भी अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी तरह।
2: हाँ, और नानी के घर से वापस आने का उसका मन ही नहीं करता था।
4: मेरा भी मन नहीं करता आने।
2: अच्छा?
4: का मैं
2: अच्छा?
4: तो सर्दियों में जाता हूँ।
3: अरे वाह, तो ठीक ऐसे ही तूतुन का मन नानी के घर बहुत लगता था, बड़े मजे आते थे उसे वहाँ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में तूतुन नानी के घर गया तो छुट्टियां खत्म होने पर तूतुन की मम्मी ने तूतुन से कहा,
2: अरे अरे बेटा तूतुन, कहाँ हो? चलो जल्दी से अपना सामान बांधो। हाँ भाई, रेलगाड़ी आने वाली है 5:30 बजे, छूट जाएगी, कहाँ हो तूतुन?
3: और पता है बच्चों 5:30 बजे का मतलब क्या होता है?
2: क्या होता है? हाँ
3: सोचो सोचो। अरे मैं बताता हूँ, 5:30 यानी 5:30 क्या?
5: 5:30।
3: शाबाश,
2: बिल्कुल सही कहा। और फिर पता है क्या हुआ? जाने की बात सुनकर तूतुन बहुत उदास हो गया और सोचने लगा,
6: ओहो हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेलगाड़ी छूट जाए छूट जाए।
2: पर अब क्या हो सकता था, तूतुन को तो जाना था। तो तूतुन अपने मम्मी पापा के साथ 5:15 पर ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तब तूतुन के पापा बोले,
7: अरे भाई तूतुन जल्दी करो। अरे 5:15 बेटा, कहीं ट्रेन छूट ना जाए।
2: और सुनो सुनो आगे सुनो, ट्रेन छूटने की बात पर तूतुन बहुत खुश हो गया और फिर पता है क्या सोचने लगा?
8: लगता है हमारी ट्रेन छूट गई। अरे मजा आ गया, हमारी ट्रेन छूट गई। अब मैं और भी देर तक नानी के घर रह सकता हूँ।
2: तो बच्चों बताओ क्या तूतुन की ट्रेन निकल गई थी? हाँ
4: नहीं, क्योंकि ट्रेन तो 5:30 निकलनी थी ना। अभी 5:15 ही तो बजे थे।
3: बिल्कुल सही तुमने बताया ईशान। अब ये बताओ 5:30 का क्या मतलब हुआ?
5: 5:30।
3: शाबाश।
2: और 5:15 का मतलब क्या हुआ?
5: 5:15।
2: बिल्कुल
3: सही, इसी बात पर हो जाए ताली। पर बच्चों तूतुन को ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो रहा था कि उसकी ट्रेन छूट गई।
2: और तब तूतुन के पापा ने तूतुन को बताया,
7: अरे बेटा अभी ट्रेन को आने में 15 बाकी हैं, ट्रेन 5:30 पर आएगी, अभी तो 5:15 ही है।
4: अब तो तूतुन दुखी हो गया होगा। तो जाना होगा,
9: अब तो उसे जाना ही पड़ेगा।
3: अरे नहीं बाबा सुनो तो सही, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
2: हाँ क्योंकि ट्रेन तो आई ही नहीं। उन लोगों को बहुत देर तक वही इंतजार करना पड़ा।
9: अरे ये कैसे हुआ?
3: यही पूछने तो तूतुन के पापा स्टेशन मास्टर के पास जा पहुँचे और बोले,
7: स्टेशन मास्टर साहब ये ट्रेन क्यों नहीं आई अभी तक, हम बहुत परेशान हैं। अब देखो हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है।
4: तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा?
7: स्टेशन मास्टर ने कहा, सर 5:30 का मतलब है 5:30, असल में आपकी गाड़ी 5:30 पर चली गई।
3: क्या?
7: सर देखिए रेलवे में शाम के 5:30 को 17:30 कहा जाता है, यानी 17 घंटे

0: 30 मिनट।
1: क्या मतलब?
2: 17 घंटे 30 मिनट।
1: शाबाश,
3: 17 घंटे 30 मिनट काफी अजीब सा लग रहा है।
4: हाँ, तुम्हारी ही तरह तुतुन को भी 17 घंटे 30 मिनट सुनकर ना अजीब लग रहा था।
3: पर ऐसा क्यों कहते हैं दीदी?
4: ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि रेलवे में 12 नहीं 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग होता है।
1: हाँ, 12 घंटे की घड़ी में एक ही समय 2 बार आता है, इसलिए हमें उसके साथ सुबह, दोपहर, शाम, रात ये सब लगाना पड़ता है। जैसे सुबह के 9 बजे
4: और रात के 9 बजे,
1: सुबह के 5 बजे
4: और शाम के
2: 5 बजे।
1: शाबाश। अच्छा, सुबह के 11 बजे
2: और शाम के 11 बजे।
1: शाम के 11 बजे नहीं बेटा, रात के 11 बजे। बजाओ ताली इसी बात पर।
3: तो तुतुन की रेल छूट गई थी ना? तुतुन को तो बड़ा मजा आ गया होगा।
1: हाँ बच्चों, बहुत मजा आया था। लेकिन अब तुतुन ने 24 घंटे की घड़ी में समय देखना सीख लिया था।
4: हाँ, और पता है 24 घंटे की घड़ी में जब दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 13 घंटे।
1: क्या कहते हैं?
2: 13 घंटे।
1: हाँ, यानी 12 घंटे में 1 घंटा और जोड़ दिया तो हो गए कितने घंटे? 13 घंटे। शाबाश। अच्छा गुड़िया, तुम मेरी घड़ी देखकर बताओ कि इस वक्त कितने बजे हैं?
3: 4 बजे हैं।
1: 4 बजे हैं, बिल्कुल सही। और शाम होने को है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ?
3: शाम के 4 बजे हैं।
1: शाबाश गुड़िया, बजाओ इसी बात पर ताली।
4: हाँ, तो अब ये बताओ 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ?
1: बताओ बताओ।
3: 12, 13, 14, 15, 16
4: बताओ।
3: 16 बजे हैं।
1: 16 बजे हैं नहीं, 16 घंटे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ बच्चों, 12 घंटे की घड़ी में शाम के 6 बजे हूँ तो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा?
2: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे।
1: शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, 18 घंटे।
4: तो अब ये बताओ शाम के 6:30 हो तो
3: 18 घंटे 30 मिनट।
1: वेरी गुड।
4: और शाम के 7 बजे? हाँ हाँ, सोचो सोचो।
3: 19 घंटे।
1: अरे वाह, शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हैं। वैसे एक बात है, तुतुन भी तुम्हारी तरह बहुत होशियार हो गया था। तो इस तरह हुई कहानी खत्म। बजाओ ताली।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्याभील 90.8 एफएम झाबुआ की आवाज।
1: भूखा अमरूद।

0: Luca Amrud. एक थी ची ची चिड़िया और एक थी गुनगुन गिलहरी। दोनों सहेलियां थी। हाँ बच्चों, एक दिन चींची ने गुनगुन से कहा,
1: चलो गुनगुन अमरूद के पेड़ पर चढ़कर खेलें।
0: तो बच्चों दोनों पहुंची अमरूद के पेड़ के पास और बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम यहाँ खेल सकती हैं?
0: अमरूद ने कहा,
2: हाँ हाँ खेल लो, लेकिन ध्यान रहे मेरी टहनियाँ ना टूटें।
0: चींची चिड़िया हैरान होकर बोली,
1: अरे अमरूद भैया तुम्हें दर्द होता है क्या?
2: और नहीं तो क्या, तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे ही हम पेड़ों को भी दर्द होता है।
1: अच्छा अच्छा, हम नहीं तोड़ेंगे टहनियाँ।
0: ऐसा कहकर बच्चों दोनों खेलने लगी। हैं? कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगी। गुनगुन बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम तुम्हारे अमरूद खा लें?
0: ये सुनकर बच्चों अमरूद ने कहा,
2: मैं अभी भूखा हूँ, तुम पहले मेरे लिए भोजन लाओ, यानी मेरे आहार का इंतजाम करो।
0: हैरान होकर चींची ने पूछा,
1: अरे तुम खाना भी खाते हो?
0: तो अमरूद बोला,
2: इसमें हैरान होने की क्या बात है, खाना तो सभी को चाहिए, खाना खाकर ही तो हम बढ़ते हैं। तुम भी तो पहले छोटी नन्नी मुन्नी थी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें दाना ला ला कर खिलाती थी, तभी तो तुम बड़ी हुई और चलने उड़ने लगी।
0: ये सुन बच्चों चींची ने कहा,
1: लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन लाता है?
0: गुनगुन बोली,
1: और भला तुम खाते क्या हो, हमें बताओ तो झटपट तुम्हारे लिए ले आए खाना।
0: अमरूद ने कहा, बच्चों
2: मैं तो मिट्टी से अपना आहार यानी खाना लेता हूँ, जब जमीन में पानी डाला जाता है ना, तो मेरी जड़ें उस पानी को पीती हैं, तने उस पानी को पहुंचा देते हैं पत्तियों तक, पत्तियां सूरज की रोशनी की सहायता से बनाती हैं खाना, मेरा आहार।
0: गुनगुन ने पूछा,
1: अरे भाई प्रकाश यानी रोशनी से कैसे बनता है तुम्हारा खाना?
0: अमरूद का वृक्ष बोला,
2: जैसे मुन्नी की अम्मा अंगीठी में खाना बनाती है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश है हमारी अंगीठी, उसी की मदद से पत्तियां मेरा आहार बनाती है। और इसके अलावा जैसे तुम सांस लेती हो ना, मुझे भी चाहिए हवा सांस लेने के लिए।
0: तो बच्चों चींची ये सुनकर बोली,
1: लेकिन अमरूद भैया हमें तो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाना आता ही नहीं, हम तुम्हारा आहार कैसे बनाएं?
0: गुनगुन ने पूछा,
1: और शुद्ध वायु कहाँ से लाएं?
0: ये सुनकर बच्चों पास में खड़ा दूसरा अमरूद का पेड़ गाने लगा।

0: पेड़ की ये बात सुनते ही चींची खुश होकर बोली,
1: अरे ये तो बड़ी आसान बात है, गज्जू हाथी तो हमारा दोस्त है। दोस्त अभी लेकर आते हैं उसकी सूंड में भरकर पानी।
0: तो बच्चों झट दोनों पहुंची गज्जू हाथी के पास। उनकी बात सुन गज्जू ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। फिर वे तीनों चल पड़े अमरूद के पेड़ की ओर। अमरूद के पेड़ की जड़ में गज्जू ने सारा पानी उंडेल दिया, ढेर सारा पानी। बस जड़ों ने पानी ऊपर खींचा, तनों ने पत्ती तक पहुंचाया। सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियों ने पेड़ का आहार बनाया। अमरूद का पेड़ अब भूखा ना रहा और बोला,
2: आओ आओ तुम भी अपनी भूख मिटाओ, लो ये अमरूद खाओ खाओ।
0: चींची चिड़िया, गुनगुन गिलहरी और गज्जू हाथी ने मिलकर बच्चों खूब मीठे मीठे अमरूद खाए।

0: खोलो उसमें निकला बम्बे को।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
2: एक दिन का

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: अपनी जिम्मेदारी निभाना।

0: को फुटपाथ पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। महानगर की एक सड़क पर अखबार का एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहा है।
1: भाई साहब
2: जी, मुझसे कुछ कहा?
1: जी हाँ, आप ये बताइए कि आज के वातावरण को, अपने समाज को अगर अच्छा बनाना हो तो क्या करना चाहिए?
2: मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए समाज में शांति होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए
1: जी,
2: लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समाज में ये सब बहुत ही कम रह गया है। मैं तो कहूँगा सब खत्म हो गया है।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब खत्म हो गया है। क्यों बहन जी, आप क्या कहती हैं?
3: अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप भी, आजकल कुछ ठीक भी है क्या? आप छोड़िए भी, हमें क्या करना है इन बेकार की बातों में पढ़कर, हम तो चलते हैं।
4: रुकिए, ये बेकार की बात नहीं है। जब सब कुछ गलत हो रहा है तो यूं मुंह फेर कर मत जाइए, आगे बढ़िए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इस गलती को सुधारने में काम आ जाए। ये समाज सबका है, इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी ही है।
0: बहाना।

0: उषा जी।
1: जी सर।
0: ये पत्र आज ही भिजवा दीजिए, बहुत जरूरी है ये।
1: सर आज?
0: जी आज।
1: सर आज तो नहीं जा सकता।
0: पर क्यों? अभी बजे हैं सुबह के 10 और डाक जाती है दोपहर को 3:30 बजे, तब तक ये टाइप होकर पोस्ट हो सकता है ना?
1: सर अभी तो ये टाइप भी नहीं हो सकता।
0: पर क्यों?
1: सर अभी तो लाइट ही नहीं है।
0: लाइट नहीं है तो क्या हुआ, इस कमरे में तो काफी रोशनी है, आप बिना लाइट के भी इसे टाइप कर सकती हैं।
1: सर मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए कंप्यूटर नहीं चलेगा।
0: पर इलेक्ट्रिसिटी आ भी तो जाएगी।
1: सर इलेक्ट्रिसिटी तो 1 घंटे बाद आएगी।
0: और क्या?
1: तब तक चाय का
0: तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या?
1: सर है तो,
0: पर क्या?
1: तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं।
0: आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा, वो खाली पड़ा रहता है।
1: शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है।
0: चलिए जाने दीजिए उषा जी, आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर चाय या अपनी बारी किसी का इंतजार मत कीजिए, आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए। क्या ये हो सकता है?
1: हाँ सर ये तो हो सकता है।
2: काम न करने के इतने बहाने और काम करने का कोई बहाना नहीं।

0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
2: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
3: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जैसे कि पैर है, हाथ है, उनके अंडकोश हैं, उसमें सूजन आने लगती है। वह सूजन इस प्रकार होती है कि हाथी के पाँव के समान लगती है, इसलिए उसको हाथी पाँव भी कहा जाता है। इसमें शरीर में लालपन भी आ जाता है, इसमें फीवर आ जाता है, बुखार आता है और त्वचा भी निकलने लगती है शरीर से।
2: जी, तो ये सारे तमाम सारे लक्षण हैं और जैसा कि आपने बताया इसे बोलचाल की भाषा में हाथी पाव भी कहते हैं। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया रोग कैसे होता है और उसके बाद ये फैलता कैसे है।
3: जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परजीवी कृमि से होता है। जो फाइलेरिया के कीटाणु हैं वह संक्रमित मनुष्य को अगर कोई मच्छर क्यूलेक्स होता है अगर काटता है तो वह उसको संक्रमित करता है। फिर उस संक्रमित मच्छर अगर फिर से वह किसी मनुष्य को काटता है तो वह उनको संक्रमित करता है। इस प्रकार से यह चक्र चलता रहता है।
2: यानी कि आपके कहने के आधार पर क्यूलेक्स नाम का जो मच्छर है वो इस बीमारी का वाहक है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि जो विसंगतियां हमारे शरीर में आ जाती हैं फाइलेरिया रोग की वजह से, हाथों पैरों में या शरीर के किसी अंग में सूजन, क्या वो कभी ठीक हो पाती हैं?
3: एक बार जब विसंगति आ जाती है जैसे कि शरीर में सूजन आ जाती है हाथ या पैर हो, तो वह पूरी तरीके से नहीं सही हो सकती है। इसलिए इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है।
2: जी जी जी, जान लेना चाहिए कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली इस उन्मूलन अभियान में खिलाई जाती है उसका जरूर सेवन करें। और जी बताइए
3: आकांक्षा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अभी जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसको, लेकिन अगर ये एक बार फाइलेरिया ये हो गया है किसी को, तो वह चिकित्सा परामर्श लेके इसके लिए हमारे पास दवाइयां उपलब्ध हैं सरकारी अस्पताल में, उनसे वो चिकित्सा उपचार लेके वह दवाइयां खा सकते हैं। साथ में ये हमारी सरकार जो है यहाँ पे हाइड्रोसिल के ऑपरेशंस भी होते हैं जिनसे कि वह दूरी दूर होता है उससे।
2: जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया उन्मूलन का जो अभियान चलाया जाता है हमारे प्रदेश में, हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब से कब तक चलाया जाता है और इसके अंतर्गत जो गोली खिलाई जाती है क्या वो किसी एक निश्चित स्थान पर खिलाई जाती है?
3: हमारा जो ये फाइलेरिया अभियान होता है, उन्मूलन अभियान होता है, इसको मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में यह दो चरणों में चलता है, एक फरवरी में और एक नवंबर में। ये दो तो हमारे खत्म हो चुके हैं लेकिन अगले वर्ष फिर से यह शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर फाइलेरिया की गोली निःशुल्क देते हैं और अपने सामने खिलाते हैं। यह एक साथ खिलाया जाता है, सार्वजनिक रूप से खिलाया जाता है, इसलिए इसका उन्मूलन के लिए यही प्रयास है।
2: जी बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि जब भी उनके घर पे उन्मूलन के लिए गोलियां खिलाने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे वो इस गोली का सेवन जरूर करें। डॉक्टर, उनके मन में जरूर एक बात आ रही होगी कि यदि किसी को बुखार है या कोई और छोटी मोटी सीजनल परेशानियां चल रही हैं, तो क्या तब भी वो इस गोली का सेवन कर सकते हैं?
3: जी, ये 2 वर्ष से कम बच्चों को नहीं दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, और अगर वह किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको नहीं दिया जाता है। बाकी ये सभी प्रकार के व्यक्ति खाना चाहिए, सभी उम्र के व्यक्तियों को खाना चाहिए।
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो फाइलेरिया से बचाव की गोली है, ये क्या फाइलेरिया ग्रसित व्यक्ति खा सकता है या स्वस्थ व्यक्ति को भी खानी चाहिए?
2: जी बताइए डॉक्टर।
3: ये संक्रमित और असंक्रमित दोनों प्रकार के व्यक्ति खा सकते हैं और इनको साल भर में एक बार अवश्य सेवन करना चाहिए।
2: जी डॉक्टर साहब की तरफ से, ये भी हमारे कार्यक्रम की तरफ से आपको जरूर जाननी चाहिए कि यदि फाइलेरिया हो चुका है तो दवाओं के माध्यम से इसे उसी स्टेज पर रोका जा सकता है, इसलिए बचाव की खोली खानी जरूरी है आप सभी के लिए। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फाइलेरिया से बचाव की गोली जब भी हमें किसी को संक्रमित व्यक्ति है वो भी खा ले या सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही खाएं, दोनों के लिए कितनी फायदेमंद है ये?
3: ये दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर कोई संक्रमित है इससे तो वह उसी स्थान पे उसको दूरगामी प्रभाव से रोका जा सकता है, और इसको नहीं है उसको उसके बचाव के लिए ये उपाय है हमारे लिए,
2: तो दोनों को ही खानी चाहिए।
3: और अगर किसी को गंभीर बीमारी है, अगर उनको कोई भी शक है कि हम ये खाएं या ना खाएं, तो वह हमारे निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके वो वहां पे उनके चिकित्सा उपचार ले सकते हैं और उनसे परामर्श ले सकते हैं,
2: अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
3: जी,
2: और डॉक्टर साहब,
5: क्या फाइलेरिया की
3: जी नितिन जी, एक बार अगर आप सेवन इसका कर लीजिए तो इनके दूरगामी प्रभावों से बचा जा सकता है।
2: आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया विषय पर और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तकनीकी सलाहकार डॉक्टर सारिका सिंह जी। और डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उन्मूलन का अभियान है इसमें जन सामान्य से किस तरह के सहयोग की अपेक्षा हम कर सकते हैं?
3: ये जब अभियान चलता है हम सभी यही बोलेंगे कि आप कृपया उनका सेवन अवश्य करें, जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके घर जाते हैं तो उनका सहयोग, उनमें सहयोग प्रदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, इसका सेवन करना बहुत आवश्यक है जिससे हम इनका उन्मूलन कर सकें।
2: जी, और डॉक्टर साहब, एक चीज और बहुत जरूरी जानकारी है जो इससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जरूर मिलनी चाहिए कि क्या फाइलेरिया रोग किसी खास वातावरण, मौसम या उम्र में ही होता है?
3: नहीं, इसके फाइलेरिया के जो है वह किसी उम्र या वातावरण से संबंधित नहीं है, या किसी भी समय और किसी भी मौसम में हो सकता है और किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। यह विशेषता इसके जो कीटाणु हैं वह शरीर में जो रक्त प्रवाह है उसमें वह रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक ज्यादा परिलक्षित होते हैं। अच्छा। तो जब किसी का कोई भी, अगर किसी को जांच करानी होती है तो वह उनका जो ब्लड का सैंपल है वह रात में ही लिया जाता है।
2: जी जी, रात 10 बजे से 2 बजे तक जब आ जाता
3: है वह सबसे ज्यादा दिखते हैं। जी
2: जी,
6: तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या फाइलेरिया की कोई होम्योपैथिक दवा भी है?
2: जी बताइए।
3: इसके लिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि आप अपने निकट के चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए और वहाँ पे आप चिकित्सकीय सलाह लीजिए।
2: जी
1: श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने फाइलेरिया रोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त किया। श्रोताओं, हमने जाना है फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहिए और इसकी गोली को अवश्य खाना चाहिए। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनते रहिए रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज़ पर।
0: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
7: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।
8: नमस्कार साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, क्योंकि कहीं कहीं छोटी छोटी बरसात हो गई है, यानी छुटपुट बरसात हो गई है और हमारे किसान साथी तैयारी करने में जुट गए हैं कि जैसे ही अब अगली बार बरसात हो वैसे ही अपने खेतों में अपने बीज को लगा दें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है, कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है, उसको किस तरीके से हम समतलीकरण कर सकते हैं इससे पहले, बोनी से पहले, और साथ साथ में मेड़बंदान भी कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठते हैं यानी वैज्ञानिक बैठते हैं उनसे हम सलाह ले सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अमरूद के बागवानी के तरीके क्या होते हैं उस पर बात करेंगे। धान की बुवाई से पहले किस तरीके से बीज का उपचार करना चाहिए उस पर बात करेंगे। खासतौर पर हम पशुओं पर भी चर्चा करेंगे कि इस माह हमें पशुओं का किस तरीके से देख रेख हमें करना चाहिए इस विषय पर। साथ में हम बातचीत करेंगे, वो बातचीत होगी कि छत पर बागवानी जो हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाई जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हम देर नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी किस तरीके से तैयार की जाती है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मौसम आधारित जानकारी। आने वाले 5 दिनों में आसमान में छिटपुट से घने बादल रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस व 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा पश्चिम दिशा से 17.4 से 28.9 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 5 दिनों में वर्षा 11.0 मिलीमीटर होने के अनुमान बताया जा रहा है। अगर कृषि परामर्श की बात करें तो जिले में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से मध्यम से छुटपुट बादल छाए रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की खेती हेतु खेत तैयार कर लें। फसलों के बीज की बुवाई का समय उर्वरक व बीज का मिलाकर बुवाई कभी ना करें और फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। इस हेतु बीज उर्वरक कल्चर फपूद नाशक दवाओं की व्यवस्था भी साथ में कर लें। खरीफ फसलों की बुवाई 3 से 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करें। स्वयं से तैयार बीज की सफाई कर लें व अंकुरण की प्रतिशत अवश्य जांच लें। अंकुरण का प्रतिशत यदि 70% आता है तो ठीक है, आपका बीज अच्छा है, बोने लायक है। यदि 70% से कम आता है तो नए बीज की व्यवस्था भी साथ में कर लें। जो मक्का की फसल है उसके लिए जो परामर्श दिया गया है, बताया गया है, वो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त किस्म जो है वो JVM 421 है, HPQM 1 है, JM 216 या फिर उत्तम अवधि की संकर किस्म की व्यवस्था कर लें बीजों की। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की खेती हेतु उपयुक्त किस्म जो है JS 2069, JS 2098, RS 24, JS 2029, RVS 2001-4 आदि की व्यवस्था कर लें। उड़द के लिए उड़द की उत्तम किस्म है उत्तरा, JU 86, PU 31, प्रताप उड़द 1 की व्यवस्था अवश्य कर लें। कपास की उन्नत किस्म है DCH 32, BT 2, कपास की किस्मों की व्यवस्था कर लें। साथ साथ में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं उनमें खासतौर पर अगर नर्सरी के पौधों में पत्ती खाने वाले इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उनके रोकथाम के लिए प्रोफेनोवस दवा जो रहती है 3.0 मिलीमीटर प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव कर दें। अदरक और हल्दी की खेती हेतु प्रकंड की बुवाई करें। साथ में बुवाई के पूर्व प्रकंड को डाइएन M45 और कार्बोडाइजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर 20 से 30 मिनट डुबो कर रखें। बरसात की सब्जियों की रोपणी में जल निकास की उचित व्यवस्था भी कर लें। तो ये थे हमारे मौसम आधारित जानकारी जो हम आपको उपलब्ध करा रहे थे। साथियों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं अमरूद की बागवानी करने से पहले हम किस तरीके से सावधानी, किस तरीके से हमें अमरूद की बागवानी लगानी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस विराम के बाद।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: एक ऐसा फल जो हर उम्र के व्यक्ति को पसंद आता है। जी हाँ, साथ ही अगर हमारे किसान उसका प्रसंस्करण करके उसके उत्पाद की बिकवाली करें तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। कौन सा है ऐसा फल, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: अमरूद की बागवानी पूरे भारत में की जाती है। विटामिन सी और पेक्टिन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर इस फल को आसानी से घर के आंगन से लेकर खेतों की बाड़ और बागों में उगाया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अमरूद की खेती अधिक तापमान, गर्म हवा, बारिश, लवणीय या कमजोर मृदा, कम जल या जल भराव की दशा से अधिक प्रभावित नहीं होती है। ये सख्त किस्म की फसल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम जल निकास वाली मिट्टी भी शामिल है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छे निकास वाली रेतीली चिकनी मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी में लगाना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, एप्पल कलर, ललित, अर्का मृदुला, श्वेता, पंजाब किरण। ऐसे करें खेत तैयार। पौधे की बढ़वार अच्छी हो और जड़े आसानी से अपनी पकड़ बना ले, इसके लिए खेत की 2 बार तिरछी जुताई करें और फिर समतल करें। खेत को इस तरह तैयार करें कि उसमें पानी ना खड़ा रहे। अब बात कर लेते हैं पौधे रुपाई के बारे में। तो अमरूद का बाग लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन तैयार पौधों को खेत या बाग में रोपा जाता है। रुपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है, लेकिन यदि सिंचाई की बेहतर सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी रुपाई का काम किया जा सकता है। पौधे की रुपाई के लिए पहले 60 सेंटीमीटर चौड़े, 60 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे को तैयार करें। इसमें 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 40 से 50 ग्राम मिथाइल पैराथियन पाउडर को ऊपरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर दें। मिट्टी सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरें। इसके बाद मिट्टी पर सिंचाई करें। गड्ढों में मिट्टी पौधा लगाने के 15 से 20 दिन पहले भर देना चाहिए। इस तरह तैयार गड्ढों में नियत समय पर पौधों की रुपाई करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी करें। इस फसल में वैसे तो ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शरद ऋतु में पौधे की सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर और गर्मियों के मौसम में 7 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। साथ ही अमरूद के खेतों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालते रहे। बारिश के मौसम में इस बात का खास ध्यान रखें कि बाग में अनावश्यक पौधे ना उग पाए। इसके अलावा अमरूद में कीड़े की समस्या बारिश के मौसम में ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए नीम की पत्तियों के उबले पानी का छिड़काव करना चाहिए। वहीं अमरूद में उखटा रोग, तना कैंसर रोग के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। पौधों की मजबूती और सही वृद्धि को बनाए रखने के लिए टहनियों की हल्की छटाई करनी जरूरी होती है। इसकी कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। इस तरह कटाई के बाद नई टहनियों से ज्यादा फलोत्पादन की संभावनाएं रहती है। अब बात कर लेते हैं फलों की तुड़ाई की। पौधा रोपण के 2 से 3 साल बाद अमरूद के फल लगने शुरू हो जाते हैं। तैयार फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है। फलों की तुड़ाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। फलों को ज्यादा पकने नहीं देना चाहिए। यदि फल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है तो किसान उसे प्रसंस्कृत करके भी अच्छी आय ले सकते हैं।
1: किसान भाइयों बहनों, अगर एक ही खेत से हमें दोहरा लाभ मिले तो कितना अच्छा होगा। ये संभव हो सकता है। अगर आप धान की खेती करते हैं तो उसी में आप मछली पालन भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपके मुनाफे को दोगुना कर सकता है। कैसे, आइए जानें हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन के जरिए।
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है, जो धान की फसल के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि धान की फसल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। पानी से भरे धान के खेत में किसान एक और लाभ ले सकते हैं, और वो है मछली पालन। जी हाँ, पानी से भरे इन खेतों में किसान आसानी से मछली पालन कर सकते हैं। इस दोहरे लाभ में धान की पैदावार भी अच्छी होगी और किसान को दोहरा लाभ हो सकेगा। हालांकि धान की खेती और मछली पालन का ये कॉम्बिनेशन नया नहीं है। फिश राइस फार्मिंग चीन, बांग्लादेश, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड जैसे देशों में काफी लोकप्रिय है। इसकी बढ़ती लोकप्रियता हमारे किसानों का ध्यान भी आकर्षित कर रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से। इस तकनीक में धान की फसल में जमा पानी में मछली पालन किया जाता है। अगर किसान चाहते हैं तो धान से पहले ही मछली का कल्चर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा मछली कल्चर खरीद भी सकते हैं। ध्यान रहे कि इस तरीके से मछलियों का उत्पादन खेती, प्रजाति और उसके प्रबंधन पर निर्भर करता है। खेती की इस तकनीक में एक ही खेत में मछली व दूसरे जल जीवों को एक साथ रखा जाता है। इससे धान के उत्पादन पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता है, बल्कि खेत में पल रही मछलियों को भरपूर चारा मिलता रहता है, तो मछलियों को वेस्ट फसल के लिए जैविक खाद का काम करती है। इसके अलावा मछली पालन से धान के पौधों में लगने वाली कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। फिश राइस फार्मिंग करने के लिए निचली जमीन वाले खेत का चुनाव करें। इस तरह के खेत में काफी आसानी से पानी इकट्ठा हो जाता है। इसके साथ ही खेत को तैयार करते समय जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद से मछलियों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। फिश राइस फार्मिंग तकनीक में शुरुआत में किसान रोहू, मृगला, मुगली, कतला प्रजातियों की मछलियों का चयन कर सकते हैं। ये मछलियां उथले पानी में आसानी से रह लेती है। साथ ही बेहतर लाभ लेने के लिए धान की लंबे समय में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें, जैसे वानी धान CR26077, ADT6, ADT7। इससे मछलियों को 4 से 5 माह का समय मिल जाता है। ये मछलियां 3 माह में ही करीब 500 से 700 ग्राम की हो जाती है। किसान एक एकड़ के खेत में 400 किलो मछली का बीज या करीब 2000 मछलियां छोड़ सकते हैं। किसान इस बात का ध्यान रखे कि रोपाई के करीब 7 दिन बाद ही मछलियां छोड़े। साथ ही खेत में पानी का स्तर बनाए रखे। धान के खेत में करीब 6 इंच या इससे ज्यादा पानी रखे। पानी का स्तर 9 इंच भी रख सकते हैं। इस तकनीक से मिलने वाले लाभ: मिट्टी की सेहत अच्छी रहती है, फसल का उत्पादन बढ़ता है, प्रति यूनिट एरिया पर कमाई अच्छी होती है, उत्पादन में खर्च कम होता है, फार्म इनपुट की कम जरूरत पड़ती है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, उर्वरक पर कम खर्च होता है। इस तरह किसान उतनी ही भूमि में कम संसाधन में एक ही समय में दोगुना लाभ कमा सकते हैं।
1: तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें।
3: HS और BQ टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर लें। आज किसान कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सीमित क्षमताओं को उम्मीदों के पंख लगाकर सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। उनके ये प्रयास और उनसे मिली सफलता बाकी किसानों को भी नया करने की प्रेरणा दे रही है। लहलहाते खेतों के बीच चहलकदमी करते ये है किसान परमजीत सिंह, जिन्हें इनकी मेहनत और अलग खेती करने के लिए जाना जाता है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने संघर्ष का लंबा दौर जिया है, वो बताते हैं कि पहले उनके परिवार में पारंपरिक खेती ही हुआ करती थी, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। परमजीत बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे तभी से खेती किसानी में अपनी सेवाएं देने लगे थे और बचपन से खेतों में समय गुजारने के कारण परमजीत को खेती से लगाव होने लगा। लेकिन वो खेती में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कम संसाधन में भी अच्छा मुनाफा लिया जा सके। इसके लिए परमजीत ने बदलते वक्त के साथ खेती के तरीकों में भी बदलाव किया और पारंपरिक खेती के स्थान पर सब्जियों की खेती व बागवानी करने लगे।
4: क्योंकि सर जो पुराना समय है, जो ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, खेती तो हम करते थे लेकिन जो रवायती फसल है उसमें इतना मुनाफा भी नहीं हो पाता था। बड़ी मंदे हालात थे उस टाइम के, तो उस समय हमने बड़ा स्ट्रगल भी किया है लाइफ में। उसके साथ साथ खेती भी करते थे लेकिन उस समय ऐसे हालात थे कि हम एक जैसे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, 2.5 किलोमीटर हमारा स्कूल दूर था जी, तो हम सोचते थे कि अगर साइकिल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उस पे जाके जल्दी आ सकते हैं। लेकिन हालात ऐसे थे, वो भी नहीं था किस्मत में। तो खेती करते करते जो नया रेगुलेशन आया है उसके चलते फिर हमने भी खेती को चेंज किया और नई तकनीक से खेती करने लगे। उसमें सब्जी भी लगाई है, पहले बहुत गोभी वगैरह आलू की हम खेती करते थे, तो जब से फिर हमने खेती का काम पूरे अपने काम उससे किया है तो फिर इसको चेंज किया है और नई नई तकनीक से हमने खेती की है, हर तरह की मशीनरी का हमने प्रयोग किया है।
3: समय बीतता गया, नफा नुकसान लगा रहा, लेकिन उनकी मेहनत तब ज्यादा रंग लाई जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की। हालांकि शुरू में एक छोटे से हिस्से में स्ट्रॉबेरी की खेती की, लेकिन इससे जो मुनाफा मिला उसने परमजीत के लिए सफलता के नए द्वार खोल दिए। आज परमजीत करीब 10 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की अलग अलग किस्में लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस नई फसल के लिए कैसे बाजार तैयार किया और कैसे आया उन्हें ये आइडिया, आइए जानते हैं उन्हीं से।
4: और ये हमारी एक हिमाचल में मूंगफली बहन है जिसने हमें प्रेरित किया है ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए, जिससे मेरी पूरी लाइफ है। जो पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ, मैंने दो जो एक एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था, तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी 5 से 6 एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। पहले पहले तो लगाई हमने, स्ट्रगल भी किया है। मैं खुद जो किसान मंडियां लगती हैं चंडीगढ़ में 15 सेक्टर में है, 46 में है, 43 में है, 34 में है, मैं उनमें बैठ के किसान मंडियों में इसको सेल करता था, जिसमें पहले पहले मेरे को मार्केटिंग की समस्या के कारण मेरे को ये भी करना पड़ा है। उसमें मेरे को बहुत फायदा मिला है क्योंकि जैसे जैसे पता भी चला है कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ बेचना है, तो उसमें मैंने इसका जैम भी बनाया है जी स्ट्रॉबेरी का, और लड्डू और बर्फी भी बना के सेल किए हैं, और हम स्ट्रॉबेरी भी लूज जैसे खुली सेल करते थे।
3: स्ट्रॉबेरी भारत की जलवायु में ठीक से तालमेल बिठा सके इसके लिए स्थान के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। परमजीत जी किन किस्मों को लगाते हैं, आइए जान लेते हैं।
4: हम हिमाचल से जो पुराना पौधा है उससे पौधा तैयार होता था, वो लगाते थे, उसकी प्रोडक्शन में बड़ी दिक्कत आती थी और कम भी रहती थी, तो धीरे धीरे हमें भी जैसे जैसे काम करते आ रहे हैं तो पता चलता आ रहा है, तो फिर हमने जो इसका वैसे ये बाहर की वैरायटीज है, बाहर की फार्मिंग है, और इसका जो पौधा है वो भी कैलिफोर्निया अमेरिका से और इटली वगैरह से आता है, जो हम वहां से मंगवाते हैं। पुणे की एजेंसियां हैं 2-3, एक प्लांट पैराडाइज है, जैन ट्रेडर्स वाले हैं, और हैं 2-3, वो बाहर से मंगवाते हैं मदर प्लांट, तो मदर प्लांट उनसे लेके 70 रुपए प्रति प्लांट के हिसाब से हमें वो मदर प्लांट मिलता है, उसको हम प्लांटेशन करवाते हैं हिमाचल में। टोटल इसकी जो पूरे संसार में वैरायटीज हैं वो तो 7 और 8 के करीब हैं। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी हैं वो है कैमरोज है जी, और ऐसे है जी, जो अर्ली वैरायटी है नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती है, 10-20 रुपए का फर्क रहता है, लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज्यादा कम है। जो कैमरोज है या ऐसे है उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन 1 से लेके 5-6 दिन तक रहती है।
3: परमजीत जी आज जिस मुकाम पर है वहाँ बागवानी विभाग का काफी सहयोग रहा है। वो बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों ने हर कदम पर साथ दिया, वहीं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी मदद की। आज आलम ये है कि परमजीत सिंह का उदाहरण देकर बागवानी विभाग काफी किसानों को भी आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है।
4: जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का ब्लॉक का, उसमें HDO है युवराज भारद्वाज, उसने हमें इतना मोटिवेट किया है, उसने हमें बताया कि आप ये खेती करो आपको इसमें ये मुनाफा है, तो इसमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी, कि वो आगे जो 4-5 और मेरे गांव के लड़के हैं वो भी जैसे मशरूम वगैरह या स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहते हैं उनकी हेल्प के लिए भी जुटे हुए हैं। बढ़िया है जी, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमें बढ़िया मिला है।
5: 5 साल से जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने 1 एकड़ से 0.5 एकड़ से स्टार्ट किया था काम, उसके बहुत सी प्रॉब्लम आई। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग की आई दिक्कत, उसके बाद लेबर की बहुत प्रॉब्लम आई, जो इनकी फैमिली का और इनके जो गांव का वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम रहा, उनका साथ रहा है, उसकी वजह से जो ये हैं आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। आज इन्होंने 10.5 एकड़ लगाई हुई है, लास्ट टाइम जो इन्होंने 4.5 एकड़ लगाई थी, उन्होंने बोला इनका टारगेट जो है 25 एकड़ तक लगाने का इस स्ट्रॉबेरी का है। 2015 से मैं इनके टच में आया हूँ, तब से मैं लेके आज तक इनको तो हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इनको बुलाते हैं, जैसे कैंप लगाते हैं इनके गांव में, जैसे ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं और गांव के जो फार्मर्स हैं उनको इस हॉर्टिकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन में एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए ये उनको उत्साहित कर रहे हैं इस टाइम, और हमारे साथ हर साल 1-2 फार्मर इनकी वजह से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं।
3: आज परमजीत सिंह जी ने अपने कृषि के दायरे को आगे बढ़ाते हुए करीब 25 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वो ठंड के मौसम में स्ट्रॉबेरी तो बाकी सीजन में अंतर फसलें लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हो भी क्यों ना, इसी खेती ने आज इनके कई सपने साकार कर दिए हैं।
6: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आप सुन रहे थे इस रेडियो रिपोर्ट को और जाना कि किस तरीके से हम अमरूद की बागवानी किस तरीके से कर सकते हैं, साथ में पशु पालन किस तरीके से कर सकते हैं, किन

तरीके किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से सावधानी हमें बरतनी चाहिए, उस विषय पर हमारे विषय विशेषज्ञ की सलाह हम जान लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। अपना रेडियो अपनी बात है।

0: छाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: आज मेरा नर्सरी में आने का जो मकसद है वो बहुत सिंपल है कि हमने अगर टेरेस में या बैल्कनी में अपने गार्डन बनाना है तो हमको किस किस चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। पर नर्सरी में आने से पहले आपको अपने घर का पूरा म्योना करना पड़ेगा। समझो मैं टेरेस में खड़ी हूँ, मुझे ये देखना है कि मेरा टेरेस कौन से डायरेक्शन का है, साउथ का है, नॉर्थ का है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, या खुले टेरेस में मेरे को चारों डायरेक्शंस मिलती हैं। डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपने किस किस्म का पौधा लगाना है वो आपका डायरेक्शन ही बता पाएगा। बालकनी का भी यही हाल है। सेकंड, आपको किस चीज का शौक है, आपको फलों के पेड़ों का शौक है, आपको फूलों का शौक है, आपको ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक है, या आपको सिर्फ ग्रीनरी का शौक है, जैसे आप फॉलिएज ही लगाना चाहते हैं, तो वो सब चीजों में आपको अपना डायरेक्शन देखना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं समझा दूं, सबसे ज्यादा धूप जो है वो साउथ में और वेस्ट में रहती है, तो अगर आपको फलों के पेड़ लगाने हैं तो आपको ये डायरेक्शन जरूर आपके छत पे होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट पौधे लगाने हैं, मतलब जिनके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, तो आपको ईस्ट देखना पड़ेगा, पूर्व। और अगर आपको पानी के पौधे लेने हैं या अगेन डेलिकेट पौधों का ख्याल रखना है जिनको एक आधा घंटे की बस धूप चाहिए, तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले टेरेस को देख के आइए या अपनी बालकनी को देख के आइए और उसके बाद आप नर्सरी में आइए। अब हमको ये देखना है कि हम जो पौधा यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारी बालकनी में या हमारी छत में सूट करता है। जैसे कोई पौधा है बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं वो हाइट बहुत ले लेते हैं, कोई पौधे होते हैं वो बहुत ही नीचे ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस किस्म का पौधा लेना है जो उस डायरेक्शन में, उस सन डायरेक्शन में और उस कंडीशन में सूट करे। तो उसके लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जो माली भैया होते हैं उनको इन चीजों का बहुत जानकारी रहती है, और उनके साथ अगर आप बोलें कि बेस्ट है कि अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, थोड़ा सा अपना टेरेस का वीडियो बना के ले आइए या एक आधी फोटोज खींच के ले आइए, एंड देन अगर आप दिखाते हैं माली भैया को तो वो आपकी बहुत मदद कर देंगे।

0: जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हो। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है। दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये जरूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको जरूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप जरूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी, वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। जरूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रिपोर्टिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए माली आओ जल्दी आओ या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको एक दो दिन तो लग ही जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जरूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए, उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए।
1: जब आप एक प्लांट को अपने घर लेकर आते हैं तो आपने उसकी देखभाल उसी तरह करनी होती है जिस तरह आप एक छोटे बच्चे की देखभाल करते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि आपके प्लांट की हेल्थ कैसी है। जब एक प्लांट आपके घर आता है तो इसका एटमॉस्फेयर बिल्कुल बदल जाता है। ये देखना चाहिए कि उसकी मिट्टी कैसी है, उस प्लांट में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि अगर आप बीमारी या कहीं डिजीज वाला प्लांट अपने घर ले आएंगे तो उसकी ग्रोथ होने में डिफिकल्टी हो सकती है। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से।
0: अगर आपके डॉक्टर, आपका जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको अपने आसपास में एक लोकल नर्सरी के साथ जरूर रिलेशनशिप बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वहां से जो आप पौधा लेके आएंगे वो आपको सही पौधा मिलेगा, क्योंकि नर्सरी वाले को अपनी रेपुटेशन भी संभाल के रखनी है। बड़ी बार लोग करते हैं मैं देहरादून से पौधा ले आई, मैं ये वाला पौधा केरला से ले आई या ये वाला पौधा मैं गुजरात से ले आई। बहुत अच्छी बात है एक आधा पौधा आपके गार्डन में ऐसा हो, व्हाई नॉट, बट अगर वो पौधा खराब हो जाता है तो आप किसको पकड़ेंगे। पर आपका अगर लोकल नर्सरी वाला होगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं, और उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपका पौधा एक्सचेंज भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि मैंने गलत सीजन में गलत पौधा दे दिया है। आप बड़ी बार देखेंगे लोगों को आजकल सक्यूलेंट एंड कैक्टाई का बहुत शौक हो गया है, बहुत सुंदर वैरायटीज उसमें आती हैं, पर कब हमने वो लेनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। नर्सरी वाले भी सक्यूलेंट्स एंड कैक्टाई को एक पर्टिकुलर सीजन में नहीं संभाल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं 70% ऑफ पे आपको दे देते हैं और आप भाग के जाके सारे उठा लाते हो, पर एक एक करके वो आपके घर में खत्म होने शुरू हो जाते हैं। इम्पल्स बाय मत करिए। एग्जीबिशन देखी तो भाग के जाके सारे पौधे उठा लिए। इम्पल्स बाय में ज्यादा से ज्यादा पौधे नहीं चलते, दे आर कॉल्ड वन सीजन प्लांट। अगर आपने ट्यूलिप लाना है तो एक ही सीजन चलेगा, आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं उस बल्ब को हर साल चला पाऊंगी, मुश्किल हो जाती है। नर्सरी वालों को इतनी मुश्किल होती है तो हम लोगों को क्यों नहीं होगी। एंड नॉर्थ इंडिया में एक्सट्रीम वेदर्स हैं हमारे पास, गर्मी है तो भीषण गर्मी है, सर्दी है तो बहुत ठंड है, तो पौधों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कोई पौधा लाएं उसका पहला सीजन, हर जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं उसका हर सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया, जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है, अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी जिंदगी आपका ख्याल रखेगा। वो साउथ में और वेस्ट में रहती है, तो अगर आपको फलों के पेड़ लगाने हैं तो आपको ये डायरेक्शन जरूर आपके छत पे होनी चाहिए। अगर आपने सॉफ्ट पौधे लगाने हैं, मतलब जिनके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं, तो आपको ईस्ट देखना पड़ेगा, पूर्व। और अगर आपको पानी के पौधे लेने हैं या अगेन डेलिकेट पौधों का ख्याल रखना है जिनको एक आधा घंटे की बस धूप चाहिए, तो आप नॉर्थ में जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना सबसे पहले टेरेस को देख के आइए या अपनी बालकनी को देख के आइए और उसके बाद आप नर्सरी में आइए। अब हमको ये देखना है कि हम जो पौधा यहाँ से लेके जाएंगे वो हमारी बालकनी में या हमारी छत में सूट करता है। जैसे कोई पौधा है बहुत ज्यादा फैल जाते हैं, कोई पौधे होते हैं वो हाइट बहुत ले लेते हैं, कोई पौधे होते हैं वो बहुत ही नीचे ड्रॉप वैरायटी के होते हैं। तो सबसे जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमको किस किस्म का पौधा लेना है जो उस डायरेक्शन में, उस सन डायरेक्शन में और उस कंडीशन में सूट करे। तो उसके लिए आपको अपने जो नर्सरी में लोग घूम रहे होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, वो आपकी बहुत मदद कर देंगे। जो माली भैया होते हैं उनको इन चीजों का बहुत जानकारी रहती है, और उनके साथ अगर आप बोलें कि बेस्ट है कि अगर आजकल तो सबके पास मोबाइल है, थोड़ा सा अपना टेरेस का वीडियो बना के ले आइए या एक आधी फोटोज खींच के ले आइए, एंड देन अगर आप दिखाते हैं माली भैया को तो वो आपकी बहुत मदद कर देंगे।

जैसे हमारा फेस हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। आप कहीं जाएं और कोई कहेगा क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो, तो आप कहोगे मुझे आज बुखार है। इसी तरीके से पौधा अपनी सेहत के बारे में बता देता है, और जैसे हमारा फेस है वैसे पौधे के पत्तियां होती हैं। लीव्स आर द फेस ऑफ द प्लांट। तो आपने ये देखना है नर्सरी में कि आपको क्या पौधे में देखना चाहिए जो आपका पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहे। सबसे पहले है कि पीले पत्ते ना हो। जो पीले पत्ते होते हैं इसका मतलब है उसमें कोई बीमारी है। दूसरी बात हो जाती है जैसे रूट बाउंड हो जाती है। आप देखेंगे छोटे से गमले में जगह जगह से ठूस ठूस के जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं। इसका मतलब है वो पौधा बहुत स्ट्रेस में है। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम ठीक से काम नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से अगर पौधा स्ट्रेस में है तो वो अपनी ग्रोथ ठीक से नहीं ले पाएगा। तो आपने ये जरूर देखना है कि उस पत्ते बिल्कुल शाइन कर रहे हों, साफ सुथरे हों, उनमें चमक आ रही हो। अगर पत्तों में कहीं कीड़े हैं तो आपको जरूर पत्तों में छेद होंगे, होल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो पत्ते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, तो आप जरूर अपने पौधे को थोड़ा सा उठा के देखिए कि उसके पीछे में कोई कीड़े वीड़े तो नहीं चिपके हुए हैं। सेम तरीके से अगर आपके गमले में वीड्स हैं, जंगली बूटियां निकली हुई हैं, तो वो क्या कर रही है जंगली बूटी, वो आपके पौधे की जो ताकत है उसको साथ साथ खा रही है। ठीक है, तो आपने वो वाले पौधे भी नहीं लेने हैं। जरूर गमला उठा के देखिए उसकी जड़ नीचे से निकल तो नहीं आई है। अगर नीचे से निकल आई है इसका मतलब है अगेन वो स्ट्रेस में है, उसको मत लीजिए। बहुत बार होता है आप पन्नियों में ले लेते हैं पौधे, मे भी पन्नियों में बेटर हो जाता है क्योंकि आपने घर जाके उसको अच्छी तरीके से अपने किस्म से आपने रिपोर्टिंग करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जैसे आप कोई पौधा लेके घर जाते हैं एकदम उसको लगाने की कोशिश मत करिए। लोगों को होता है पौधा लाए, माली आओ, जल्दी आओ, या खुद लगा के आप पौधा लगा लेते हैं, वो मत करिए। पौधे को आपकी मिट्टी, आपके घर की हवा, आपके घर के पानी को एडजस्ट होने दीजिए। सिंपल चीज है, केरला से किसी को आप कश्मीर ले जाएंगे तो उसको एक दो दिन तो लगी जाएंगे ना एडजस्ट होने में। इसी तरीके से पौधे को भी एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जरूर जाके पौधों को घर में मिट्टी पे रखिए, सीमेंट पे मत रखिए या पत्थरों पे मत रखिए, उसको आपकी मिट्टी के साथ अपना रिलेशनशिप बनाने दीजिए। अगर आपके डॉक्टर, आपका जैसे जो जीपी होता है, आप जनरली अपने जीपी को फोन करते हैं कि मेरे को खांसी है या बुखार है या टांग में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। आप कहीं छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो आप उनको फोन करके पूछ लेते हैं कि मैं कौन सी दवाई लूं, क्योंकि आपको उस डॉक्टर के ऊपर फेथ है, वो आपका जीपी है। इसी तरीके से आपको हर, जैसे हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है तो हम उसका पहली दिवाली, पहली होली, हर फेस्टिवल बड़े अच्छे से मनाते हैं। इसी किस्म से अगर आप एक पौधा लेके आते हैं उसका हर सीजन आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी पहली गर्मी, पहली बरसात, पहला ठंड, वो एक बार उसने वो पार कर लिया आपके प्यार से, आपके लुकिंग आफ्टर से, फिर वो पौधा आपका बहुत ख्याल रखेगा। अगर आपने एक बड़ा पौधा लिया, जैसे फल का पौधा लिया है, तो एक कहावत है अपनी हाइट तक उस पौधे का ख्याल रखिए और उसके बाद वो पौधा सारी

चीज पे बनना शुरू हो जाता है और आप बड़े हैरान होते हो और आप कहते हो पौधा तो मैं बहुत हेल्दी लाया था या लाई थी और 10-15 दिन तक भी ठीक रहा, पता नहीं अब क्या हो गया, मेरा पौधा खत्म हो गया। तो उसका उसके बारे में आप समझिए, उस पौधे को जो प्रोटेक्शन मिली है वो प्रोटेक्शन हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए ग्रीन हाउस में जो पौधे पड़े हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनको घर लाके अपने बालकनी में या अपने छतों पे रखने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये चीजें आपको ख्याल रखनी पड़ेंगी, या तो आपको पहले ये पौधों को कुछ टाइम के लिए शेड में रखना पड़ेगा, जैसे आपके घर में कोई नीचे पेड़ है, पेड़ के नीचे में उसको रखिए, उसको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करके उसको वो हार्श कंडीशन में लेके आइए। पौधे की हेल्थ की एक और बात मैं जो बताना चाहती हूँ, पौधे का जो स्टेम होता है वो बहुत अच्छी से देखिए। बड़ी बार क्या होता है, गमले के ऊपर से ही या पन्नी के ऊपर से ही 3-4 टहनियां निकल के आ जाती हैं, वो ठीक नहीं है। मैक्सिमम आपके पास 2 टहनियां ही निकल के आनी चाहिए। आप अगर ग्राफ्टेड पौधा ले रहे हैं, एक तो वो महंगा पड़ता है, पर वो ग्राफ्टेड पौधे में आपने देखना है कि वो ग्राफ्टिंग कहां से हो रही है। अगर बिल्कुल ही जड़ के पास से ग्राफ्टिंग है तो उसको मत लीजिए, कम से कम आपके गमले में 6-8 इंचेस का एक जैसे कहते हैं ना क्लीन स्पेस होना चाहिए और उसके बाद ग्राफ्टिंग हो तो वो पौधा ज्यादा अच्छा रहता है। जो पौधा अपनी ग्रोथ कहां से लेता है, पौधा अपनी ग्रोथ स्टेम से लेता है। वो स्टेम अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो हम लोग कह सकते हैं वो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बहुत बार आप देखते हैं लोग कुप कर

के बैठ जाते हैं या सीधा बैठ नहीं पाते हैं, लेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बैकबोन स्ट्रांग नहीं होती है। अगर आपकी बैकबोन स्ट्रांग है तो आपकी सेहत अच्छी होगी। इसी तरीके से अगर आपका स्टेम स्ट्रांग है तो पौधा

0: मजेदार रंग भी है तो रखना है।
1: तो रंग बिरंगे पौधों को देख के मन मचल जाता है, खासकर फूल वाले जो गमले होते हैं उनको देख के लगता है सारे के सारे अपने घर में ले आए। पर आपको समझना आना चाहिए कि जब फूल लगे हों तो वो वाला पौधा मत लीजिए, जिसमें बड्स हों, कलियां हों, उसको लीजिए। क्योंकि जब आप ये फूल वाले पौधों को घर लेके जाएंगे, जैसे ये पौधे को आप घर लेके जाएंगे, इसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो ये ग्रीन हाउस के अंदर है। इसको आप जब घर लेके जाएंगे तो ये सारे के सारे इसके जो फूल हैं ये ड्रॉप हो जाएंगे और आप फिर वेट करते रहेंगे शायद नेक्स्ट सीजन के लिए, जब इसमें फिर से फूल आएगा। पर अगर आप कलियां लेके जाएंगे, जैसे ऐसे कलियों वाला पौधा लेके जाएंगे, तो ये पौधा आपके घर में जाके एडजस्ट हो जाएगा और स्ट्रेस में आने के कारण ये जो कलियां हैं ये फूल बन जाएंगी, और जब ये फूल बन जाएंगी आपका गार्डन बहुत ही शानदार हो जाएगा। पौधा लेने के टाइम डूज एंड डोंट्स बहुत जरूरी हैं। आप किसी स्कूल में जाएंगे तो वहां भी डूज एंड डोंट्स होते हैं। हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ ही आप चलते हैं, तो पौधों में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। अब डूज क्या होते हैं? आपके पौधे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसका स्टेम अच्छा होना चाहिए, उसमें जो ब्रांचिंग है वो अच्छी से हो, पर नीचे से पौधा उठ रहा है वहां पे आपकी ब्रांच एक या दो होनी चाहिए। एक या दो ब्रांच के बाद वो इस तरह करके अगर ब्रांचिंग करेगा तो वो पौधा आपका बहुत अच्छा हेल्थ लेगा। अननेसेसरी उसमें ब्रांचेस ना हो, जैसे इनवर्ड ब्रांचेस जो हम कहते हैं कि इधर से आपकी ब्रांच इधर आ रही है, इधर से ब्रांच इधर आ रही है, वो क्या करती है, हवा की डायरेक्शन को भी खराब कर देती है। तो आपको वो क्लिप करना है। टाइम टाइम पे आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है, टाइम टाइम पे आपको उसको खाना पीना देना है। तो जब आप पौधे को घर लेके जाएं, सबसे पहले जरूरी चीज है पौधे को एकदम तुरंत उसको लगाने की कोशिश मत करिए, उसको वहां पे छोड़ दीजिए अपने घर में मिट्टी पे, उसको एक्लिमेटाइज होने दीजिए, उसको आपकी हवा आपके एनवायरमेंट के साथ जुड़ने दीजिए। जो भी आप चीज करें स्टेप बाय स्टेप करें। पौधा जब भी लगाएं शाम को लगाएं, सुबह लगा के धूप में रख देंगे पौधा एकदम मुरझा जाएगा। बहुत अगर गर्मी है तो पौधों को घर के अंदर में ले आइए, उसको फिर शाम को फिर बाहर निकालिए। जब भी आप उस पे कोई दवाई छिड़कना चाहते हैं तो दवाई याद से शाम को छिड़केंगे, पर अगर आप उनको कोई नरिशमेंट देना चाहते हैं तो वो आप हमेशा सुबह में देंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, और आपको अपने गार्डन का पता चल जाएगा तीन चीजों से, जिसको कहते हैं 3 B's, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज। अगर आपके गार्डन में ये तीन चीजें आ रही हैं, इसका मतलब है आपका गार्डन बहुत अच्छी से चल रहा है। तो ये आपके गुड गार्डन के साइंस होते हैं। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप कोई कोर्स करते हैं, तो अगर आपको 3 B's का सर्टिफिकेट मिल गया तो इसका मतलब है आपका गार्डन इज डूइंग वेरी वेल।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी हमने जाना कि किस तरीके से हम छत पर बागवानी कर सकते हैं, किस तरीके से नर्सरी लगा सकते हैं अपनी छतों पर, कौन कौन पौधे हम अपने छत पर लगा सकते हैं, ये सारी बातों को हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। साथ में हमने किसान साथियों ने जाना कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी हम कर सकते हैं, पशुपालन में किस तरीके से सावधानी, कौन सा जो महीना चल रहा है इस बरसात के मौसम में हम किस तरीके से अपने पशुओं की सुरक्षा कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, ये सारी बातों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जाना। अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। नमस्कार।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग और मैं हूं आपकी आरजे, आपके तरानों की हमसफर आरजे तनुषा। आज कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाएंगी बट महसूस की जाएंगी। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जयपुर की एक एकदम बिंदास बट डिसिप्लिन्ड और डिटर्मिन्ड पर्सनालिटी मिसेस खुशबू पारेख। एक नॉटी बच्ची, एक एवरेज स्टूडेंट, बट फिर हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल और केबिन क्रू तक का सफर। आज एक एंटरप्रेन्योर और एक प्राउड मदर। हम दिल से स्वागत करते हैं और बहुत एक्साइटेडली स्वागत करते हैं खुशबू पारेख जी का और जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। वेलकम खुशबू पारेख जी।
2: थैंक यू सो मच।
3: खुशबू जी, हम आपकी शुरुआत से शुरू करते हैं, जैसे कि हम हमारे सारे गेस्ट को बचपन में ले जाते हैं। तो बचपन की मेमोरीज से आपने हमें बताया कि आप बहुत नॉटी थीं, बहुत मस्तीखोर थीं और एवरेज स्टूडेंट थी, बट आप अपनी लाइफ फुल ऑन जीती थीं, मतलब यू बिलीव्ड इन लिविंग लाइफ टू द फुल। तो आज इतने सालों बाद अगर हम आपसे पूछें, अगर आप छोटी खुशबू से मिलें तो उससे क्या कहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि जो बच्ची कभी इतनी बबली थी, इतनी एफर्वेसेंट थी, वो सडनली लाइफ में इतनी डिसिप्लिन्ड और यू नो एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बन जाएगी, वो किस तरह का एक फीलिंग है? अगर आज आप अपने बचपन के बारे में सोचते हैं तो कैसी फीलिंग्स आपके अंदर आती हैं और उस छोटी खुशबू से आप क्या कहेंगे?
2: अगर मैं मेरे बचपन की बात करूं तो मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था और आजकल का बचपन थोड़ा अलग होता है, आजकल के बच्चे थोड़े अलग वे में बड़े होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपने अपना अगर बचपन जी लिया तो सब कुछ ही जी लिया। तो बचपन एक चीज ऐसी है जिसको हम कितने भी बड़े हो जाए उम्र में हम मिस करते ही हैं। कुछ ना कुछ पल, कुछ यादें हमारी जुड़ी होती हैं बचपन से। अब आज माहौल इतना सेफ नहीं है, माँ बाप भी डरते हैं बच्चों को बाहर खुले में भेजने से, पार्क में खेलने से रोकते हैं, पढ़ाई का प्रेशर इतना है कि सब डरे डरे रहते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप बिंदास अपनी लाइफ जिए, अपना बचपन जिए, जितना आप इंजॉय कर सकें उतना करें। और रही बात डिसिप्लिन की और इन सब चीजों की, तो वो टाइम के साथ आ ही जाता है एक एज के बाद।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सच में आजकल बच्चे बहुत अलग तरह से पल रहे हैं, वो उनकी गलती नहीं है, एक्चुअली एनवायरमेंट ही ऐसा है। तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं हाइपर हो गए हैं, डरते हैं, बट खैर आई विश हम दोबारा उन टाइम्स में जा सके जिसमें आप और मैं बड़े हुए थे। वो बहुत ही सुंदर टाइम्स थे और उसी तरह से शायद एक स्पेस हमारे बच्चों को, आज के बच्चों को, कुछ उस तरह से नहीं बट कुछ तो एक एक एक एक उनको स्पेस मिल सके कि वो उस तरह से ब्लूम कर सके जिस तरह से हमने अपना बचपन जिया और बिंदास होके अपना बचपन जिए, क्योंकि आगे तो लाइफ में क्या है हमें पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने हमें अपने फादर के बारे में बताया कि किस तरह से आपके फादर ने आपकी मेंटालिटी को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत डीपली इन्फ्लुएंस और शेप किया और वो एक बहुत ही डिसिप्लिनेरियन पर्सन थे। तो जब आप खुद मदरहुड में एंटर किए, जब आप खुद आपका यू नो यू गॉट योर चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, तो आपने क्या कॉन्शियस चॉइसेस ली कि मैं ये कुछ चॉइसेस हैं या कुछ क्वालिटीज हैं जो मैं अपने बच्चे में उतारना चाहती हूँ? और क्या आपको लगता है कि डिसिप्लिन सच में सिखाया जा सकता है, कि आप लीड बाय डिसिप्लिन, लीड बाय एग्जांपल करें सिखाने की कोशिश करने की बजाय? आपका क्या थॉट है इस पे?
2: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीज ऐसी है कि आप सिखा नहीं सकते हैं, और आजकल के बच्चे आपकी सोच से बहुत ज्यादा परे हैं, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, हमारी तरह नहीं है। हम जैसे हुआ करते थे, हमें बोल दिया जाता था कि बैठ जाओ तो बैठ जाते थे, उठ जाओ तो उठ जाते थे, पर आजकल के बच्चों को मैनेज करना, उनको सिखाना, ये बहुत ही एक ट्रिकी हो गया है बहुत ज्यादा। और मेरे फादर की अगर मैं बात करूं तो उनको हमने देख देख के ही सीखा है, वो कितने डिसिप्लिन रहे हैं। वो गवर्नमेंट जॉब में थे और उनका टाइम मैनेजमेंट, उनका शेड्यूल वगैरह बहुत ही फिक्स रहता था। वो टाइम के बहुत पंचुअल हुआ करते थे। इवन आज भी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, इस चीज में वो काफी पंचुअल है टाइम को लेके, कि अगर 6 बजे की मीटिंग है या 6 बजे किसी से मिलना है तो ही मेक श्योर कि ही इज बिफोर टाइम। तो ये चीजें मैं चाहती हूँ कि अपन अपने बच्चों को सिखाएं, उनमें डालें, पर ये चीजें आपको खुद करके उनको दिखानी पड़ेगी। वो अपने आप नहीं सीखेंगे, आप खुद एक डिसिप्लिन लाइफ जिए, आप खुद अपना एक टाइम टेबल बनाए, सही टाइम पे उठे, सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे खाए, तो एक बच्चे का जो माइंडसेट होता है उसी तरीके से वो उसको एडॉप्ट कर लेता है और उसी के साथ वो बड़ा होता है। अभी अगर हम एग्जांपल ले आज के बच्चों का, एक बच्चा है जो फिक्स टाइम पे उठ रहा है, फिक्स टाइम पे खा रहा है, फिक्स टाइम पे सो रहा है, वो बहुत ही खुश मिजाज होगा और अच्छे से खेलेगा, अच्छे से हर चीज को कंप्लीट करेगा, उसका माइंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। दूसरी साइड जो बच्चा है जिसका टाइम शेड्यूल बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, वो कभी भी उठ रहा है, कभी भी सो रहा है, कभी भी खा रहा है, तो वो चिड़चिड़ापन आपको अपने आप दिखेगा। तो ये डिफरेंस होते हैं जो हमको बहुत ही अर्ली स्टेज पे डेवलप करना बहुत जरूरी है, खासकर में। और ये मतलब टॉडलर एज से ही, आप मान लीजिए तब से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए इन चीजों की।
3: बिल्कुल नहीं। और आप, अगर मैं आपसे एक इंस्टेंस पूछूं, मतलब या कोई एक इंस्टेंस या कुछ इंस्टेंसेस बचपन के जिसने कहीं ना कहीं एक इंडेलिबल इम्प्रिंट छोड़ा आपके अंदर, एक छाप छोड़ी कि मेरे फादर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा करना चाहिए, कोई एक ऐसा वाक्या बचपन का जिसने आपको सच में शेप किया हो, वो क्या होगा?
2: वो ऐसा था कि वो अपनी जॉब के लिए काफी पजेसिव थे। वो टाइम नहीं देखते थे कभी भी कि अभी 7 बज गए तो मुझे घर जाना है, या मेरी फैमिली कमिटमेंट है, या मुझे मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपने प्रोफेशन को अहमियत दी और पूरे दिल से और लगन से और ऑनेस्टी से उन्होंने काम किया। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो कभी भी अपना वर्कलोड घर लेके नहीं आते थे, उन्होंने हमेशा एक बैलेंस्ड लाइफ जी। और हमें भी यही सिखाया कि आप प्रोफेशनल लाइफ अलग रखें, पर्सनल अलग रखें, इनको मिक्स ना करें। आप कभी भी ऑफिस से या काम से घर जाते हैं तो आपके बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि अब हमारे पेरेंट्स आएंगे, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, हमारे साथ खेलेंगे। और अगर आप वही वर्कलोड लेके घर जाते हैं और वही टेंशन में चेहरा लेके जाते हैं तो आपके बच्चे वो चीज, आपके एक्सप्रेशंस काफी तरीके से समझते हैं काफी हद तक, कि मेरी मम्मा खुश नहीं है या मेरे पापा खुश नहीं है, दे आर अपसेट विद समथिंग, तो दे ऑब्जर्व ऑल दिस। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो जो वर्कलोड है वो हम उसको ऑफिस में ही छोड़ के आए, वहीं उसको हमारा डे एंड उसी के साथ करें, और घर जाएं तो घर की तरह, घर के माहौल में मिक्स होने की और खुशियों को बांटने की कोशिश करें।
3: बिल्कुल, बहुत ही सही बात आपने हमारे साथ साझा की कि सच है कि काम सबको होता है, काम बहुत इम्पोर्टेंट है, काम को प्रायोरिटी देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके फादर करते थे, बट एक कटआउट जोन क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि ये मेरा प्रोफेशनल डोमेन है और ये मेरा प्राइवेट डोमेन है, और इनके बीच में एक कट जोन है जहां पे आई डोंट कैरी थिंग्स इंटरमीडियरी, बिकॉज अगर वो होने लग जाता है तो फैमिली भी सफर करती है और वर्क प्लेस तो खैर सफर करेगी ही, बिकॉज आप फैमिली में भी खुश नहीं रह पाएंगे। तो बहुत ही खूबसूरती से आपने हमारे साथ ये बात साझा की। तो इन्हीं गहरे एहसासों के साथ, इन्हीं गहरी बातों के साथ हम सुनेंगे हमारा आज का पहला गीत और थोड़ी खुशियां स्प्रेड करेंगे। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहां, सोचे जो हम मतवाले।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक मैम जी। आपने हमें बताया कि होटल मैनेजमेंट आपका पहला चॉइस नहीं था, कहीं ना कहीं आप कुछ और करना चाहते थे जीवन में, बट आपने ये फील्ड चूज की और आप इसमें आगे बढ़े और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का आगे का पूरी एक आगे का जो पूरा सफर होता है उसका एक फाउंडेशन बन गया। तो क्या आप मानती हैं कि कभी कभी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती हैं हमारी चॉइसेस? जो रास्ता हम मजबूरी में लेते हैं वही हमारी असली पहचान, हमारी असली कॉलिंग, असली डेस्टिनी होती है। और हमारे लिसनर्स के लिए जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारे श्रोता, और कहीं ना कहीं अपने करंट फेज में परेशान है, शायद उनने भी कोई ऐसे डिसीजन लिए हैं जो उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, तो वो किस तरह से उसे डील कर सकते हैं, उसमें कैसे पैशन ढूंढ सकते हैं और कैसे उस रास्ते को अपनी नियति मान के अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो ये एक्सेप्टेंस की जर्नी आपकी कैसी रही, ये बताएं हमें।
1: देखिए, पहले तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी मजबूरी में वो कोर्स चुना। मजबूरी ऐसे थी कि मेरे एकेडमिक मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे कि मुझे साइंस या कोई और कॉलेज में एडमिशन मिल सके, और उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है फ्यूचर में। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि होटल मैनेजमेंट कोर्स में होता क्या क्या है। अगर इसके बारे में सुनते हैं और एक साधारण आदमी से पूछते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होटल मैनेजमेंट कोर्स, तो वो यही सोचेगा कि होटल के बारे में होता होगा, कैसे सर्विंग होती है, कैसे खाना पकाया जाता है, कैसे क्लीनिंग होती है, वगैरह वगैरह। पर जब मैं कोर्स में थी, हमारा 4 साल का कोर्स था, और इस कोर्स में मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी है, अकाउंट्स भी पढ़ी है, एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ी है, तो सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट होटल, इट इज नॉट ओनली अबाउट क्लीनिंग और सर्विंग अ पर्सन, इट इज बेसिक अवेयरनेस अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। और इस कोर्स ने मुझे इतना मोल्ड किया, इतना ग्रूम किया, इतने बेसिक एटिकेट्स सिखाए जो शायद मैं किसी और कोर्स में नहीं सीख पाती। और जैसे जैसे मैं सेमेस्टर्स पास करती गई, मेरा इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता गया और मुझे जरूरत नहीं पड़ी अपने आप के अंदर के जुनून को या पैशन को जगाने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, जिस चीज में आप घुस जाते हैं और आपको इंटरेस्ट आपका जब डेवलप होता है तो अपने आप जुनून आ ही जाता है। फिर आपको उसको करने की एक चाह रहती है कि मुझे इसमें बेस्ट देना है, मुझे इसका बेस्ट करना है। तो दैट इज व्हाट इज पैशन ऑल अबाउट। ये चीज आपको कोई सिखाता नहीं है या कोई ऐसे कोई जादू नहीं हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए बेस्ट है या ऐसे कुछ। पर हाँ, कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हुआ जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप किसी चीज की तह तक जाते हैं, कोई चीज अगर आप हाथ में लेते हैं तो आप उसको समझे, जाने, अच्छी तरह उसको कंप्लीट करें, और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी और ये मेरे लिए नहीं बना है, देन ओनली यू टेक सम स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर योरसेल्फ।
0: जी जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि जिस चॉइस में आप हैं, जिस

0: में आप हैं वो आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसमें भी ढूंढने की कोशिश करें, उसकी तह तक जाएं, शायद वही आपका कॉलिंग है, वही आपकी डेस्टिनी है। और उसमें अगर आप तह तक जाएं, जैसे कि खुशबू जी ने बताया कि वो जब उन्होंने ये कोर्स शुरू किया और उसे पढ़ना शुरू किया, तो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया एंड पैशन अपने आप डेवलप और जेनरेट होता गया। तो हो सकता है आपकी भी कॉलिंग इसी तरह से हो मेरे श्रोताओं। चलिए आगे चलते हैं। आपने ITC ग्रैंड सेंट्रल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रांड्स के साथ काम किया और आप एक बहुत केयरफ्री इंडिविजुअल थे जैसे आपने हमें बताया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरली आपको बहुत पॉलिश होना पड़ा होगा, बहुत चीजें चेंज करनी पड़ी होंगी। वो सफर, वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी आपकी कैसी थी और क्या आपको वो पहला दिन याद है कि जब आपने ये सोचा हो कि अब नहीं, बस नाउ आई नीड टू लेवल अप, अब मुझे ये करना है, अब देयर हैज टू बी अ कट टू एंड वर्जन टू ऑफ खुशबू, ऐसा कोई एक एक्सपीरियंस आया हो या कोई एक ऐसा वाक्या हो जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें?
1: देखिए ऐसा है कि जब आप थ्योरिकल पार्ट पढ़ते हैं जो मैंने कॉलेज में पढ़ा, और उसके बाद जब मेरी फर्स्ट जॉब जो ITC के साथ थी बॉम्बे, तो थ्योरिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में डेफिनेटली फर्क होता है, ये आप भी अग्री करते होंगे इस चीज को। तो जब आप प्रैक्टिकली कुछ चीजें फेस करते हैं तो आप अपने आप उन चीजों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करते जाते हैं। अगर आपके मन में सीरियसनेस है काम को लेके कि मुझे करना है, मुझे बेस्ट देना है और मुझे अच्छा करना है, तो हमारी जो इंडस्ट्री रही, हमारी जो जॉब रही, वो इस तरीके से रही कि हम जितना कस्टमर डीलिंग और गेस्ट डीलिंग जितना हम करते हैं उतना ज्यादा हम सीखते चले जाते हैं। हालांकि कॉलेज में हमें केस स्टडीज बताई जाती थी, पर वो केस स्टडीज और एक आपके सामने जीता जागता इंसान खड़ा है और उसके साथ कोई इश्यू हो रहा है और आप उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, और कई बारी आप नाइट शिफ्ट में हैं, आप अकेले हैं, आपके मैनेजर्स नहीं है, मैनेजर्स जनरली डे शिफ्ट करते हैं, तो नाइट में आप अकेले डिसीजन मेकर हैं और आपको डिसीजन लेना है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप इतने बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जहां पे आप गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते हैं, आपको गेस्ट को भी खुश रखना और उसका स्टे कंफर्टेबल हो, ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से आपको डिसाइड करनी है आप अकेले। तो वो चीजें अपने आप, वो प्रेशर वो सिखा देता है सिचुएशन के हिसाब से, और धीरे धीरे ये चीजें अपने आप आ जाती है एक्सपीरियंस करके। तो वही चीज मेरे साथ भी हुई, कुछ शुरुआत में गलतियां भी हुई, ऐसी बात नहीं।
0: कोई एक ऐसी गलती जो हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई खूबसूरत गलती, कोई फनी गलती?
1: गलती देखिए ऐसी थी कि जब आप होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपका जो गवर्नमेंट ID होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो चेक इन पे आपको लेना ही लेना होता है कस्टमर से, और VIP अराइवल था उस वक्त होटल में और उनसे मैंने उनका ID नहीं लिया और बाद में वो चले गए कहीं मीटिंग के लिए और हमको मौका नहीं मिला कि हम उनसे ID कलेक्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उनका ID नहीं लिया चेक इन के वक्त। तो ये हो जाता है, इट्स ओके, नॉट मतलब इसी से हम सीखते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल। चलिए इसी खूबसूरत गलती, इसी खूबसूरत सोच, इसी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक खुशबू जी.
1: जी,
0: आपके एक कलीग ने आपको बहुत कैजुअली कहा था कि आप एविएशन क्यों नहीं ट्राई करते, और इस सेंटेंस ने कहीं ना कहीं आपका एक पूरा डायरेक्शन बदल दिया, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात है. तो कैसा था ये पूरा इंसिडेंट, अगर आप हमारे साथ साझा करें कैसे हुआ ये पूरा इंसिडेंट शेप, और कैसे आपका ये डायरेक्शन बदला? और दूसरा पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन इज कि कैसे कोई इंसान कई बार अपनी फील्ड से बिल्कुल यू टर्न ले लेता है किसी की कहीं भी बात पे, किसी कुछ हुए हुए इंसिडेंट्स पे, कुछ यूनिवर्स के साइंस पे. तो कैसे इंसान ये समझे कि ये एक हवा की बात है, एक हवा में हुई हुई एक एक लहर है, या ये सच में एक डेस्टिनी का सिग्नल है, सच में एक यूनिवर्सल साइन है? तो अगर इसके बारे में हमारे साथ शेयर करें.
1: जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक यूनिवर्स का साइन ही था, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है, हम दोस्तों के साथ ग्रुप में होते हैं या कहीं पे हम बैठे होते हैं, कैजुअली बात कर रहे होते हैं, और कोई कुछ एक ऐसी बात कर जाता है जो आपके दिमाग से जाती नहीं है. आप बार बार बार बार उसी के बारे में सोचते हैं, और आप ये भी सोचते हैं कि लेट्स गिव अ ट्राई. तो यही चीज मेरे दिमाग में क्लिक करी थी. और ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में इतना सोचा कि हाँ, मुझे अपनी जॉब छोड़ के अब इसकी तैयारी करनी है या मुझे इसमें ही जाना है. मैंने बहुत ही कैजुअल एपीरियंस दी इसके लिए, और मेरा वेट काफी ज्यादा था उस दौरान. आई वॉज 85 kgs, एंड मुझे पता था कि मैं एयरलाइन के लिए अभी फिट नहीं हूँ, मुझे वेट लॉस करना पड़ेगा. तो मैंने मेरा पहला टारगेट जो बनाया वो वेट लॉस बनाया. इसीलिए नहीं बनाया कि मुझे एयरलाइन में जाना था, पर मैंने ऐसे ही ये एक मुझे एक मोटिवेशन, एक किक मिला कि मुझे वेट लॉस करना चाहिए. तो लेट्स डू वेट लॉस फर्स्ट, लेट्स डू दिस जर्नी, एंड देन वी विल थिंक अबाउट अदर थिंग्स लेटर ऑन. अगर वेट लॉस होता है, नहीं होता है, वो भी तो एक चीज होती है. क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि मैंने डाइटिंग करके या भूखे रह के मैंने वेट लॉस किया. मैंने बहुत ही हेल्दी तरीके से अपने जॉब के साथ साथ 6 महीने के अंदर अंदर मैंने 25 kgs वेट लॉस किया. और फिर मैंने एयरलाइंस के लिए अप्लाई किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया. हालांकि उस वक्त मैं 1-8 kilos ज्यादा ही थी जितनी उनकी रिक्वायरमेंट थी, पर फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया भगवान की दुआ से. तो फिर 10 साल मैंने जॉब की एयरलाइंस इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में, और पता नहीं चला कब टाइम निकल गया.
0: जी, टाइम भी बिल्कुल फ्लाई कर गया आपकी तरह. बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर आपके एक्सपीरियंसेस रहे. कहीं ना कहीं मैं ये जान पा रही हूँ कि भगवान का आपके ऊपर जरूर आशीर्वाद रहा, एक ब्लेसिंग रही, एक खात रहा, और आपको उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया अपने गोल्स और अपने प्लान्स और अपने डिजाइन के साथ. आपने बताया 25 kgs आपने 6 months में लूज किया, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है. जो उस जर्नी को अंडरटेक करता है सिर्फ वही जानता है. तो हमारे बहुत सारे श्रोतागण हैं जो आज हमारे अपने खुद के वेट इश्यूज से सफर करते हैं. कोई ओबेस है, कोई बॉर्डरलाइन डायबिटिक है, या कोई अंडरवेट है. तो अगर ऐसे हमारे श्रोताओं के लिए आप कोई एक मैसेज देना चाहें, क्योंकि ना आई एम श्योर आपकी भी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही होगी, बहुत बार आपने गिव अप किया होगा, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जो आप जानते हैं, जो लोग आपको जिन्होंने आपको देखा उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो नहीं जानते, बट आप जानते हैं. तो अगर आप एक बहुत पर्सनल टेक या एक पर्सनल एडवाइस हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें जो सेल्फ डाउट में है अभी भी कि पहला स्टेप कैसे लें, तो वो क्या होगा?
1: जी, पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए कि एक प्रॉपर रूटीन बनाएं आप अपना, एक प्रॉपर फिक्स शेड्यूल रखें. आपका वर्कआउट का टाइम भी फिक्स होना चाहिए, और उसको आप कंसिस्टेंसी रखें उसमें. डेली आप एक एक्सरसाइज का रूटीन बनाए और आपके खाने का, आपके डाइट का, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी बॉडी को मिलनी चाहिए। मैं ये जितने भी डाइट चार्ट्स आते हैं, कीटो और जो जिसमें कहा जाता है कि आप इतने घंटे फास्टिंग कीजिए और इतने घंटे खाइए, मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती इन सब चीजों में। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आप अगर भूखे रहेंगे तो आप कभी भी वेट लॉस नहीं कर पाएंगे एक हेल्दी तरीके से। और आप जिंदगी भर तो ऐसा है नहीं कि आप सैलेड्स और इनपे जी सकते हैं। आप प्रॉपर खाना, हम इंडियंस हैं तो डेफिनेटली वी आर फूडीज, हमको चाट भी खाना है, हमको डेजर्ट भी खाने हैं, हमको केक भी खाना है, हमको गुलाब जामुन भी खाना है। तो उसी हिसाब से आप हर चीज खाइए पर पोर्शन कंट्रोल कीजिए। अब आपको पूरा गुलाब जामुन खाने की जरूरत नहीं है आपकी क्रेविंग्स को मिटाने के लिए। आप एक टुकड़ा भी खा सकते हैं प्रसाद के समझ के या प्रसाद समझ के, और कोई भी चीज आप खाएं, सब खाइए। मैं तो ये, मैंने भी सब खाया था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने छोड़ा था। पर हाँ, कंट्रोल में, अगर आप पोषण कंट्रोल करते हैं और हमेशा रात का डिनर जो है वो आप बिल्कुल लाइट लीजिए। आप रात को हैवी खाएंगे तो आपकी, आपका जो बेली फैट है वो कभी नहीं जाएगा। आपको रात को हमेशा लाइट ही खाना है। आप एक ग्लास दूध पी के भी सो सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि आप भूखे हैं या आपके

सवालों के जवाब देते जा रहे हैं, इससे मुझे समझ आता है कि आप कितने बैलेंस्ड एक पर्सनालिटी हैं और आपकी सहजता बहुत सुंदर है। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, आने वाला पल जाने वाला है।

आपकी जो ब्रांड है पॉटरी की, बेंटोनाइट पॉटरी, ये शुरू करना, इसको लॉन्च करना, ये आपका प्रोसेस कैसा रहा? इसका बीज कब डला? किस तरह से आपने इसको एक डिजाइन और एक ड्रीम को एक

0: रियलिटी का शेप दिया? और क्या ये बिजनेस डिसीजन था या अगेन ये आपके जीवन के पैटर्न की तरह एक क्रिएटिव कॉलिंग रहा आपके लिए? और अगर आप इस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड, नेचुरली आपके आपका बच्चा आपके यू नो योर सन विल कैरी दिस फॉरवर्ड, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको क्या आप बोलेंगे कि आप यही करो, या आप उनको एक खुली स्पेस देंगे टू टेक हिज डिसीजंस और अपनी क्रिएटिव कॉलिंग फॉलो करने देंगे? किस तरह से आप इसको, इस लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं?
1: शुरुआत से ही और आई थिंक हम लेडीज में ये एक कमजोरी होती है कि हमारा जो प्यार है क्रॉकरी के लिए वो कुछ अलग ही लेवल का होता है.
0: बिल्कुल.
1: अभी आज भी अगर आप मार्केट जाते हैं, हो सकता है आपके घर में सेम टाइप का कप सेट होगा या सेम टाइप का डिनर सेट होगा और आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फिर भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये सोचेंगे कि चलो ले लेते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो वही एक प्यार था, वही एक चीज थी जो मेरे अंदर भी थी आम लेडीज की तरह, जो मैं इसको अपने प्रोफेशन में उतारना चाहती थी. इसीलिए मैंने बेंटोनाइट पॉटरी का बिजनेस सोचा. दिस इज बेसिकली अ एक्सपोर्ट बिजनेस और हर तरीके का सेरेमिक प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं, और इसमें जो जयपुर की कला है ब्लू पॉटरी वो भी शामिल है. ये कला ऐसी है जो अब लुप्त होती जा रही है. इसके जो कारीगर हैं वो पुराने कारीगर हैं और उनके जो परिवार के जो नई जनरेशन है, जो यूथ है, वो इस काम को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है. तो इस कला को जिंदा रखने के लिए, इसको आगे तक ले जाने के लिए मेरा ये डिसीजन था कि इसको अपन अच्छे लेवल पे लेके जाए ताकि इसकी डिमांड बढ़े. तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लायर्स भी बढ़ेंगे, सप्लाई भी बढ़ेगी. वो एक बहुत मेजर पार्ट है इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए. दूसरी चीज मैं लेडीज को ये कहना चाहूंगी कि जो मदर्स हैं स्पेशली, कि आपका जो करियर है उसको आपको गिव अप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. पर जो भी आप गैप लेते हैं अपने लाइफ में बेबी के बाद, 1 साल 2 साल आपकी जॉब से जो भी आप गैप लेते हैं,
0: जी
1: आप जिस दिन जिस चीज को जहां पे सोच लेते हैं वही उसी दिन से आप सवेरा समझिए. ऐसा नहीं है कि हम लेट हो गए या हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम बच्चे में फंस गए या हम घर परिवार में उलझ के रह गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. आप किसी भी एज में आप अपने पैशन को या अपने शौक को या आपकी कोई कला को या कोई और चीज भी आप करना चाहते हैं तो आप बच्चे के साथ भी बिल्कुल कर सकते हैं. दूसरी एडवाइस मैं ये देना चाहूंगी कि जब भी आप बेबी प्लान करते हैं और आप वर्किंग हैं तो आप अपनी कुछ सेविंग जरूर रखिए, साल 2 साल 3 साल तक की ऐसी सेविंग रखिए कि अगर आप जॉबलेस भी हैं तो भी आप अपना और अपने बच्चे का खर्चा आराम से उठा पाए, आप किसी पे बर्डन ना बने. हालांकि
0: बिल्कुल.
1: आपके हस्बैंड डेफिनेटली बहुत सपोर्टिव होंगे, आपकी फैमिली सपोर्टिव होगी, पर एक इंडिविजुअल इंसान की, आपकी पहचान की बात करें तो आपके पास ये सेविंग होना बहुत जरूरी है ताकि शायद आपको कभी एहसास हो कि मुझे मेरा एक बिजनेस स्टार्ट करना है या मुझे एक छोटा सा स्टार्टअप करना है. आजकल तो ऑनलाइन काफी सारी चीजें हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक बैकअप की जरूरत पड़ती है. वो एक आपके पास हो और है तो बहुत ही अच्छी बात है, और इस मदरहुड जर्नी को आप जितना एंजॉय करें उतना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे पलक झपकते ही कब बड़े हो जाते हैं एहसास भी नहीं होता है.
0: बिल्कुल.
1: कल वो अगर आपकी गोदी में थे और आज वो चलने लगे हैं, फिर आप तरसेंगे कि वो हमारी गोदी में वापस कब आएंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इसी से मेरा आखिरी सवाल आज का, जो मैं सिर्फ वुमेन फोर्स जो है हमारी, जो महिला गण हमें सुन रही हैं, हमारी आदत होती है एज वुमेन अपने आप को गिल्ट ट्रिप में डालने की. अगर हम काम और करियर साथ में करते हैं, घर और करियर साथ में लेके चलते हैं, तो हम बार बार अपने आप को उस गिल्ट ट्रिप में डालते हैं. तो आपके लिए ये जो पूरा प्रोसेस था जहां पे आपने शादी, फिर मदरहुड एंड करियर पॉज, इन सब यू नो फेजेस को आपने जिया, तो आप इसे सैक्रिफाइस कहते हैं या इसे एवोल्यूशन कहते हैं? और जो लोग, जो औरतें काम करती हैं, वो कैसे अपने आप को गिल्ट फ्री होके एक करियर पॉज ले सकती हैं और गिल्ट फ्री होके ही अपने करियर को वापस टेक ऑन कर सकती हैं जब उनके बच्चे एक सर्टन एज पे आ जाए। उस पूरे असमंजस को, उस पूरे उधेड़बुन को दिमाग के कैसे एक महिला अपने आप को बैलेंस कर सकेगी, जैसे आपने अपने आप को किया कहीं ना कहीं।
1: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई आपकी पीठ थपथपाए या ना थपाए, आप खुद इसको थपथपाए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड करेंगे, आप खुद ये नहीं सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मेरे से बेस्ट कोई नहीं कर सकता है, मैं बहुत अच्छा मैनेज कर रही हूँ, मैं काम भी मैनेज कर रही हूँ, मैं घर भी कर रही हूँ, मैं बच्चा भी कर रही हूँ, मेरे से ज्यादा सुपीरियर कोई हो ही नहीं सकता है, कोई इससे अच्छा मैनेज ही नहीं कर सकता है, तो वो चीज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। भले ही दूसरे कितना भी क्रिटिसाइज करें, कुछ भी बोलें, पर आप अपने आप में अपने आप को एक प्राउड फील कराएं कि आई एम दी बेस्ट एंड नोबडी कैन डू बेटर देन मी। दिस एटीट्यूड इफ यू हैव देन यू कैन विन द वर्ल्ड डेफिनेटली।
0: वेरी गुड, वेरी ट्रू। बहुत जरूरी है अपने आप को थपथपाना और अपने आप को ही एक कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि दुनिया शायद नहीं करेगी, वो आपके एफर्ट्स को ग्रांटेड लेती हैं कि हाँ ठीक है ना कर रहे हैं, बट अगर आप खुद खुद की पहचान को समझते हैं और उसे थपथपाते हैं जब समय आए, जब जरूरत है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं उस विश्वास के साथ और उस भरोसे के साथ जो खुद पे आता है। तो बहुत खूबसूरत बातचीत रही, आपका नाम खुशबू है और उसी तरह आपने बहुत सारी खुशबू हमारे साथ शेयर करी, आपके जीवन की, आपके एक्सपीरियंस की। बहुत बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी आज हमारे साथ जुड़ने के
1: थैंक यू
0: लिए।
1: सो मच, थैंक यू सो मच।
0: स्ट्रेट लाइन से ज्यादा कभी कभी बहुत जरूरी होता है करेज, हिम्मत। तो दोस्तों याद रखिए कि लाइफ में बेस्ट होना जरूरी नहीं है, स्कूल में टॉपर होना जरूरी नहीं है और एक परफेक्ट प्लान होना भी जरूरी नहीं है। बस नेक्स्ट स्टेप लेने का जो हौसला है, जो विजन है और जो ड्रीम करने की एक कैपेबिलिटी है, वो बहुत जरूरी है और वो जीवन में आपको बहुत आगे ले जा सकती है। आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ, एक नए रंग के साथ। नमस्कार।
2: हूँ से आरजे भावना, आप पर हंगला भाइयों नु घरु घरु स्वागत करिए से आपरा झाबुआ ना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो 10 केबल 90.8 FM झाबुआ।

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम टैंटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम
1: भावना।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और दोस्तों, आज का रंग कला और पेंटिंग की सतरंगी दुनिया का है और हमेशा की तरह आपका दोस्त आलोक कुमार आपसे मुखातिब है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनका जीवन स्वयं एक रंगों से सजा कैनवास है, समर्पण, सौंदर्य बोध और सृजनशीलता से भरा हुआ। हमारी आज की अतिथि हैं डॉक्टर अर्चना कुलश्रेष्ठ जी, एक प्रख्यात चित्रकार, शिक्षाविद और कला साधिका। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की, स्वर्ण पदक से सम्मानित रही और 4 दशकों से अधिक समय तक कला, शिक्षण, शोध और सृजन का शानदार सफर तय किया। देश विदेश में 50 से अधिक प्रदर्शनियां, अनेक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार और कला के क्षेत्र में आज भी उनका योगदान उतना ही जीवंत है जितना कि उनके चित्रों के रंग। तो आइए अर्चना जी से जानते हैं कला, सौंदर्य और जीवन के उन रंगों के बारे में जो उनके ब्रश से निकलकर समाज तक पहुंचते हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद
0: अर्चना जी। शुरुआत आपके बचपन से करते हैं क्योंकि बचपन के बारे में बातचीत करना हर किसी को अच्छा लगता है। क्या बचपन से ही आपको कला और चित्रकला में रुचि थी?
1: हाँ जी, बहुत ज्यादा रुचि थी। बचपन से ही मैं पेंटिंग्स बनाया करती थी, मूर्तियां बनाते थे हम लोग, और मेरे पास संगीत भी था, मैं संगीत भी सीखती थी, नृत्य भी सीखती थी। तो सारी कलाओं से ही मैं जुड़ी हुई थी और मुझे बहुत पसंद है ये सब चीजें। और मैंने साइंस नहीं लिया, कला ही ली, कला को ही चुना अपना विषय, इसलिए कि मेरा इसमें बहुत ज्यादा बचपन से इंटरेस्ट था। कविताएं भी करती थी मैं।
0: अरे वाह, तो आप तो पूर्ण रूपेण एक तरह से कला के लिए समर्पित थी, बहुत ही अच्छा लगा जान के। आपकी शिक्षा और ड्राइंग पेंटिंग में स्वर्ण पदक भी प्राप्त करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: एक्चुअली मैंने कभी ये प्रेरणा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरे फादर से मिली कि वही कहते थे तुम बिना पढ़े लिखे ही इतने अच्छे नंबर लाती है, टॉप करती है साइंस आर्ट्स दोनों फैकल्टीज में, तो पढ़ेगी तो कितना अच्छा होगा। और उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। तो वो एक प्रेरणा भी थी और मेरी आवश्यकता भी थी। तो मैंने खूब मेहनत करी और स्वर्ण पदक मुझे उदयपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुआ। उदयपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया था हमें, क्योंकि यहाँ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में था ही नहीं।
0: और पीएचडी के लिए आपने किस विषय पर शोध किया और उस विषय का चुनाव कैसे किया?
1: मैं जब भी सफर करती थी तो मुझे यहाँ की हवेलियों पे, मंदिरों में, बावड़ियों में, हर जगह पे भित्ति पे चित्र दिखाई देते थे और वो मेरे साथ साथ दौड़ते रहते थे। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी कि इतना काम यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली 16वीं शताब्दी से चित्र बन रहे हैं भित्तियों पे, और उसका जो इतिहास है वो आज तक किसी ने अभी ऐसा लिखा नहीं था। तो मुझे लगता था कि मैं इसी के ऊपर शोध करूं। और दूसरी, उसका ऐतिहासिक महत्व, मेरा पीएचडी का जो सब्जेक्ट का टाइटल था वो राजस्थान के भित्ति चित्र और उनका ऐतिहासिक महत्व। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी बाद में विषय खुला और मेरे को कोई गाइड नहीं मिले, तो मैंने इतिहास के ही एक विद्वान जो कि टॉप 10 में आते हैं इंडिया के, उनसे, उनको अपना गाइड बनाया और वो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट रहा और बहुत अच्छी तरीके से मैं उस पर काम कर पाई उनके साथ में।

0: भित्ति चित्र पे आपने पीएचडी की है, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही जोरदार बात है। और राजस्थान में तो जगह जगह भित्ति चित्र
1: जगह
0: हर
1: जगह
0: जगह है, जगह जगह। और
1: बिल्कुल
0: बावड़ियों का
1: बिल्कुल।
0: आपने जिक्र किया, बावड़ी
1: हाँ जी
0: भी
1: हाँ जी
0: राजस्थान में बहुत है क्योंकि यहाँ पानी की कमी
1: बहुत
0: रहती है।
1: बिल्कुल,
0: एक यहाँ
1: आपको
0: चांद
1: हर
0: बावड़ी
1: जगह
0: है,
1: चित्र मिलेंगे यहाँ पे। हाँ
0: बिल्कुल एक चांद बावड़ी है, वो भी मैंने भी देखी है, बड़ी जोरदार है, कहते हैं
1: बिल्कुल
0: बहुत बहुत फेमस है। अब थोड़ी सी आपकी शिक्षण की तरफ अपन रुख करते हैं। आपने
1: जी।
0: लंबे समय तक राजस्थान के कई कॉलेजों में ड्राइंग और पेंटिंग विभाग का नेतृत्व किया, इस सफर में
1: देखिए
0: कौन कौन सी बातें आपको सबसे अधिक संतोष देती हैं?
1: एक लेक्चरर का, एक व्याख्याता का सबसे बड़ा जो सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष होता है, वो ये होता है कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो उसको उनको पसंद करें और उनको समझें, उनकी पढ़ाई पढ़ाई हुई शिक्षा को वो ग्रहण करें तो उनको आनंद आए। तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो यही है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरे को बहुत पसंद करते थे और अभी वो सब भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों से रिटायर भी हो गए, तो वो लोग आज तक भी मुझे याद करते, तो मेरे को इस बात का बहुत संतोष होता है कि मैंने अपने फील्ड में बहुत अच्छी तरीके से काम किया है जिससे कि वो भी उससे फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। तो ये संतोष सबसे बड़ा संतोष है एज ए
0: बहुत बढ़िया
1: टीचर, एज ए लेक्चरर।
0: जी, बिल्कुल। शिक्षक का संतोष ही ये होता है कि उसके जो
1: विद्यार्थी उनको
0: विद्यार्थी
1: याद
0: है
1: करें।
0: वो बिल्कुल याद करें, बिल्कुल। एक शिक्षक से लेकर प्राचार्य और फिर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स तक की इस यात्रा में आपको किन किन चुनौतियों और उपलब्धियों का सामना करना पड़ा, कुछ इसके बारे में हमारे साथ साझा कीजिए।
1: चुनौतियां तो बहुत बढ़ गई थी क्योंकि शिक्षक तो जो है उसको कोई चुनौती इतनी, बस एक ही चुनौती होती है कि उसके बच्चे उसका पढ़ाया हुआ जो भी है वो उसको समझ सकें और उसको अपने जीवन में ला सकें। लेकिन प्राचार्य की पोस्ट पे आते ही आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, छात्रों का असंतोष, और छात्रों का ही नहीं वहाँ के जो आपके व्याख्याता है उनका असंतोष, और उसके बाद में जो है जो वो होते पियंस वगैरह सबका, मतलब बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है सबको संतुष्ट करना, और वो भी ऐसे इस कॉलेज में जहाँ 8,000 छात्र गांव से आते हैं सीधे हड़ौती में, तो वो सिर्फ आपको वो आपके हड़ताल चाकू छुरे सब तरीके से साम दाम दंड भेद, और उनकी राजनीतिक यात्रा जो वो दो जो नेता बनते हैं वो वहीं से ही शुरुआत होती है, तो उसको फेस करना आपको आना चाहिए और उनको संतुष्ट करना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप चिल्ला के करें, आप उनको समझा सकते हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि मेरा थोड़ा महारत था कि मैं उनको बड़े प्यार से बिठा करके सब समझा करके और सॉर्ट आउट कर लेती थी, और यहाँ तक कि मेरे कलीग्स को भी, तो किसी ना किसी तरीके से। तो ये एक ईश्वर प्रदत्त मेरे में कुछ ऐसा वो है कि मैं किसी को भी आराम से समझा लेती हूँ, वरना इतना मुश्किल होता था कि वो वहां पे आपकी तोड़ फोड़ चाकू छुरे आपके उस पर से उठा लेते, और प्रिंसिपल को तो वो उठा करके भी ले गए कई तरीके से, लेकिन मैं उसके अंदर बहुत सफल रही और उनको मैंने अपना बना करके और बहुत अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हमारे हमारे को इस वैल्यूज में क्यों रख दिया, हम इसकी हमारे को इसमें क्यों डाल दिया आपने, इसमें बहुत काम है, फैकल्टीज वगैरह जो हम उनको यूज करते हैं कई कई अपने कार्यक्रमों में, कि आपको ये संभालना है आपको ये संभालना है आपको, तो कई तरह की उनकी वो होती है व्याख्याताओं की भी, और स्टूडेंट्स की तो बहुत होती है, पानी नहीं है ये नहीं है फर्नीचर नहीं है फलाना नहीं है, मतलब किसी भी बात को लेके उनको राजनीति मतलब करनी है तोड़ फोड़ और हड़ताल, और राजनीति का यहीं से उनका पहली सीढ़ी चढ़ते हैं वो, तो वो बहुत जोर शोर से करते हैं, उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी फिर एक लेडी को, वो भी बॉयज कॉलेज के अंदर, लेकिन मैं
0: जी
1: पढ़ी भी
0: हाँ,
1: बॉयज कॉलेज में हूँ और मैं उनको समझती भी हूँ, तो मैंने बड़ी अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक इसको चुनौती को स्वीकार किया। और उपलब्धियों की बात यह है कि उन वो जो बच्चे थे और जो अभी भी हमारे यहाँ के कई सारे जो राजनेता हैं अभी जैसे बिरला जी हैं और चांदी धारीवाल हैं और ये सब हमारे यहाँ से ही पढ़े हुए हैं, तो ये लोग जो है इनकी जब वो देखती हूँ मैं उपलब्धियां, और कई लोग रिटायर हो रहे हैं प्रिंसिपल से और कई लोग किसी आरएएस आईएएस में जा रहे हैं, तो वो सब उपलब्धियां हैं मेरे लिए कि मैं उनके साथ में रह करके उनको संतुष्ट कर सके और अच्छी तरीके से प्रशासन संभाल सके। क्योंकि ये प्रशासनिक वो दिक्कतें हैं जो चुनौतियां और उपलब्धियां दोनों बन के सामने आती हैं। और डीन का जहां तक सवाल है, डीन में यूनिवर्सिटी में थी, कोटा यूनिवर्सिटी में, और पूरी फैकल्टी आर्ट्स फैकल्टी उसकी मैं डीन थी, तो किसी भी तरीके की कोई भी समस्या किसी भी सब्जेक्ट में थी तो मैं हर एक की बीओएस में मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज की उसमें बैठती थी बैठक में और उनको सॉल्व करती थी और फिर आती थी। और कितनी हजारों लाखों डिग्रियां आर्ट्स जो फैकल्टी है सबसे बड़ी है, लेकिन उसको भी मैंने बड़ी अच्छी तरीके से चुनौती ली और उसको फिर उसको स्वीकारा भी और फिर उसके अंदर जो भी मेरे को

0: उपलब्धि मिली वो भी मेरे सामने अभी भी खड़ी है, अभी भी लोग याद करते हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी हो, स्कूल कॉलेज हो या कुछ भी हो, वो सब लोग मेरे से आज भी जुड़े हैं, तो ये उपलब्धियां हैं।
1: बहुत सुंदरता से आपने बताया, और आई कैन अंडरस्टैंड कि कोटा का नाम भी कई तरह से फेमस भी और कई तरह से इनफेमस भी है।
0: हाँ
1: ये
0: बिल्कुल, जब तक
1: शांत
0: वहां पे ये हब नहीं बना था इसका कोचिंग वाला,
1: कोचिंग
0: उससे
1: कोचिंग
0: पहले
1: वाला
0: सारे बदमाश ही थे, सारे इंडस्ट्रियल
1: वही
0: एरिया
1: वही
0: था वो,
1: वही वही वही
0: तो
1: मैं कह
0: वहां
1: रहा
0: पे तो
1: था।
0: चाकू चूरों से पहले बात ही नहीं होती थी। और
1: बिल्कुल
0: जब भी
1: बिल्कुल
0: इतने
1: बिल्कुल
0: बड़े कॉलेज में कुछ होता तो मुझे बुलाते थे घर से, क्योंकि वो
1: बिल्कुल।
0: मेरी बात मानते थे तो यही एक सफलता उपलब्धि है, बंद
1: जेके की फैक्ट्री बंद करवा दी थी उन लोगों
0: हुई
1: ने
0: उसके
1: वहां पे,
0: बाद में
1: वहां
0: कोचिंग।
1: उसके
0: बिल्कुल
1: बाद
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कोचिंग
0: बिल्कुल,
1: करवाई।
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: मुझे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितनी डिफिकल्टी। और ये शांतिलाल धारीवाल और ये जो वहीं के वहीं से वहीं
0: वही
1: की तो
0: के,
1: पैदाइश है,
0: बिल्कुल
1: वहीं की
0: वही के हैं।
1: पैदाइश, वहीं
0: ओम
1: की
0: बिड़ला भी
1: पैदाइश है।
0: हमारे
1: हाँ,
0: कॉमर्स कॉलेज से निकले,
1: कॉमर्स
0: और मैं
1: कॉलेज से
0: लास्ट
1: निकला।
0: में जब रिटायर हुई तो कॉमर्स कॉलेज से हुई थी, तो
1: जी जी
0: बहुत
1: हाँ
0: सारे लोग निकले हैं, मैं नाम नहीं बता सकती हूँ। भुवनेश
1: हाँ
0: चतुर्वेदी, ये वो जो सेंट्रल मिनिस्टर वगैरह सब रहे, तो ये
1: हाँ
0: सारे कोटा के ही
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ
1: मैंने भी अपने स्कूल की पढ़ाई कोटा में की है, इसलिए कोटा से मेरे को काफी ही एफिनिटी है।
0: हाँ जी
1: चलिए
0: हाँ
1: आगे बढ़ते हैं।

0: आपके निर्देशन में कई शोधार्थियों ने पीएचडी पूरी की,
1: जी,
0: तो एक गाइड के रूप में, शोध मार्गदर्शक के रूप में आपकी सबसे बड़ी क्या जिम्मेवारी लगती है?
1: एक्चुअली क्या है कि आजकल जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शोधकर्ता हैं, बच्चे हैं, वो सिर्फ गूगल से लेकर के और इधर से उधर से लेकर के अपना काम करते हैं, वो कभी भी रिसर्च नहीं करते। मतलब जो चीज है उसी को हमने दोबारा सर्च करना है, तो वहां जाके आप ऑथेंटिक देखो तो सही, उसको समझो सही, पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब वो लिखते हैं तो उसको कॉपी भी एज इट इज करते हैं, मतलब जो गूगल पे लिखा हुआ है वही लैंग्वेज यूज करते हैं। तीसरी बात है कि अशुद्धियां करते हैं, हिंदी में भी अशुद्धियां करते हैं। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको गाइड करें कि भाई आप मौके पे जाके देखो। जैसे मेरा भी फील्ड वर्क था, मैंने पूरा राजस्थान घूमा है, एक एक जिला, गांव, ढाणी, मतलब सब पे, और एक एक हवेली उसकी, मतलब कितना वाइड मतलब काम था। फिर भी क्योंकि हमारे गाइड ऐसे थे कि वो कहते नहीं जाकर क्या हो, मुझे बताओ किसी दूर था क्या था। पर आजकल ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है, वो उठाएंगे किसी भी किताब को और बस उससे लिख देंगे। आप अगर जाओगे वहां पे तो वो चीज मिलेगी भी नहीं वहां पे। बल्कि मेरे जो एग्जामिनर आए थे आरपीएससी में, उन्होंने एक मारवाड़ म्यूरल्स पे एक किताब लिखी थी, उसको लेके मैं घूमी, और बाद में जब वो मेरे एग्जामिनर बन के मतलब वहां पे आए उसमें आरपीएससी में, तो पहले मेरे घर आए, फिर उनको पता लगा कल मैं बैठी, तो वापिस गए। और जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ वापिस मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी किताब को लेके मैंने बहुत पैसा गवाया, घूमा कहीं पे कुछ नहीं था। फिर उन्होंने डिलीट भी की, वो भी मेरे गुरु को उसमें करी, तो बिना उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा रही पैसे। तो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए। मेरा जो रिसर्च स्कॉलर्स है उनको मैं कहती हूँ पूरा अपना काम स्वयं जाकर के देखो, उसको समझो वो है भी कि नहीं है, तो कुछ भी लिख दोगे आप और कुछ भी मैं देख लूंगा ऐसा नहीं होगा। रिसर्च मतलब कि वो चीज होनी चाहिए उसको आप वापिस सर्च कर रहे हो, देख रहे हो। दूसरा आपकी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग बना आनी चाहिए। आप खुद जब सर्च करोगे तो आपका जब एग्जाम वाइवा होगा तो आपको याद आएगा, अगर आपने कॉपी किया होगा तो आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला। फिर वो टाइपिंग में मिस्टेक्स होती है, उसको भी वो लोग नहीं देख पाते, मतलब उसको भी उसमें भी जो गलतियां रह जाती है वैसी रह जाती है, तो फिर क्या रिसर्च करना है। तो मेरा बेसिक फंडा यही है कि आप पहले अपने आप सारा सर्च करो, उसके बाद अपने सेंटेंस को देखो, फ्रेमिंग्स को देखो क्या कर रहा है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है। फिर टंकण में जो मतलब टाइपिंग में जो होती है उसको भी आपको देखना पड़ता है एक बार कि भाई सही है कि नहीं है। तो ये सारा मेरा फोकस उस पर रहता था और वो खुद से अपना काम करें इस बात पे, यही यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है मुझे।
0: सही बात है।

0: चलिए अब थोड़ा सा अपन रुख बदलते हैं। अब आम श्रोताओं के लिए अगर आप सरल भाषा में बताना चाहें कि स्केचिंग, ड्राइंग और पेंटिंग में क्या मूलभूत अंतर है, क्या फर्क है?
1: बिल्कुल, स्केचिंग जो है, एक्चुअली स्केचिंग हम तब करते हैं कि जब हम किसी जगह पर कुछ चीज बनाने जाते हैं वहां पे, तो उसका आप या तो फोटोग्राफ लेके, तो फोटोग्राफ लेना उतना आर्टिस्टिक भी नहीं होता है क्योंकि उसको वैसा के वैसा ट्रांसफर करना मुश्किल होता है। पर आपको अगर आपको अपने ऊपर कमांड है, आपने स्टडी किया है ह्यूमन बॉडी का या पर्सपेक्टिव का, किसी सीन का, मतलब सीस्केप, लैंडस्केप या कोई भी चीज का, तो आप रैपिड स्केच करते हैं। रैपिड मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि आप जब जिस जगह चाहेंगे वहां घंटों तो बैठ नहीं सकते, और आपको वो दृश्य आपको अपनी स्केच फाइल में लाना है, उसके बाद डेवलप करना है, तो आप रैपिड स्केच करेंगे। और उसका एक तरीका होता है कि आप कभी भी रबर यूज नहीं करेंगे, और बार बार आप लाइन खींच सकते हो, उसमें से फाइनल लाइन है आप घर में से निकाल सकते हो। तो रैपिड स्केच इस काम में आता है कि आप अपनी जो पेंटिंग बना रहे हैं उससे पहले जिस जगह का आप दृश्य बनाना चाहते हैं उसके कुछ स्केचेस फास्ट एकदम जल्दी जल्दी करके और घर पे ले आए और फिर स्टूडियो में बैठ के उसको डेवलप करें, तो ये स्केचिंग है। पर स्केचिंग में आपको पहले बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, हर चीज के लिए पर्सपेक्टिव आना चाहिए, नापना आना चाहिए, अगर ह्यूमन बॉडी बना रहे हो तो हर चीज की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप रैपिड स्केच खींच पाते हो, डॉट डॉट करके नहीं। और ड्राइंग एंड पेंटिंग जो है वो आप घर पे ला करके उसकी ड्राइंग फाइन ड्राइंग्स बनाइए और फिर उसमें पेंटिंग कीजिए, ये है।
0: ओके, तो स्केचिंग में इसका मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी, अगर मतलब किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए,
1: थोड़ा सा तो जानकारी हो, तभी आप चार लाइनें खींचोगे तो भी आप बाद में उसमें से निकालोगे, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप चार लाइन भी कैसे खींचोगे, फाइन लाइन्स बाद में निकाल लो आप ड्रॉइंग करते टाइम, लेकिन थोड़ी सी आपको पहले अभ्यास करना पड़ेगा। और हमारे सबसे पहले स्केचिंग के लिए ही लेके जाते हैं बाहर,
0: अच्छा,
1: जिससे कि आपकी आदत पड़े बार बार, क्योंकि सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो आप वहाँ पे एकदम से कैच करते नहीं है, उनके जितने पोस्चर से बदलते रहते हैं, आप नृत्य में देखने जा रहे हैं तो उनके बदलते रहते हैं, कुछ भी बात अगर आप किसी को भी स्केच कर रहे हैं तो वो बदलेंगे, पर आपके लिए वो थोड़ी ना रुकेंगे स्टेज पर।
0: तो आप पेंटिंग की कई विधाएं होती है जो हम लोग में थोड़ा बहुत जानते हैं, वाटर कलर है, ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक है, म्यूरल है, कुछ बताइए ये क्या क्या है और अलग अलग क्यों हैं और इनमें क्या समानता है, और आपको कौन सी विधा सबसे अधिक प्रिय है और क्यों है वो?
1: हाँ जी बिल्कुल, वाटर कलर के बारे में सबसे पहले आपने पूछा है, तो वाटर कलर एक बहुत डिफिकल्ट विधा है।

लोग बात सोचते हैं कि ये बहुत सरल है, क्योंकि वाटर कलर में हम लोग जब ट्रांसपेरेंट कलर को यूज करते हैं शीट पे या किसी पे भी, तो व्हाइट की जगह हम व्हाइट छोड़ते हैं, उसके बाद हम बहुत लाइट कलर से शुरू करके डार्क कलर की तरफ जाते हैं। और अगर आपने गलती से पहले गलत जगह पर डार्क लगा दिया तो फिर तो आप उसको ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट कलर है और उसको नीचे जो शेड है वो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। तो आपको बहुत संभल के काम करना पड़ता है, पहले लाइट कलर लगाओ, फिर दूसरी टोन, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करके आपको करना पड़ता है। और पहले से आपको ध्यान रखना पड़ता है हाईलाइट कहाँ छोड़नी है। ये तो वाटर कलर की बात, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑयल पेंटिंग थोड़ी इजी होती है, इजी इसलिए होती है कि ऑयल पेंटिंग सूखती देर में है, और आपने अगर गलत भी लगा दिया, वैसे तो इसको आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये डार्क टू लाइट होती है, वो लाइट टू डार्क होती है, ये डार्क टू लाइट होती है। क्योंकि अगर आपने डार्क के ऊपर थोड़े हल्का फिर हल्का फिर हल्का लगाया, कुछ नहीं होगा, ब्राइटनेस रहेगी, शेड्स भी बदलेंगे। लेकिन अगर आपने व्हाइट के ऊपर डार्क लगा दिया कोई कलर, ब्लू ब्लू भी तो भी चल जाएगा, जैसे ब्लैक लगा दिया, ब्राउन लगा दिया या मिक्स कलर लगा दिया, तो ब्राउन हो जाएंगे, चौकिश हो जाएंगे, उनमें कोई चमक नहीं रहेगी और वो बिल्कुल राख जैसे हो जाएंगे। तो उसका एक अलग तरीके का है, पर उसमें फायदा ये है कि अगर आपसे गलती लग गई तो आप तुरंत प्रभाव से उसको पोंछ सकते हो कपड़े से या किसी से भी, तो फिर वो सूख जाएगा, तो उसके ऊपर दोबारा आप कलर लगा सकते हो। तो थोड़ी इजी रहती है पोर्ट्रेट्स वगैरह में, इसमें उसमें जब अपन यूज करते हैं, तो ऑयल पेंटिंग को हम थोड़ा सा पोंछ भी सकते हैं, सुखा भी सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक दो दिन बाद में वापस शुरू कर सकते हो। तो ये एक है ऑयल पेंटिंग का, ये बिल्कुल रिवर्स है वाटर कलर से, डार्क टू लाइट और वो लाइट टू डार्क। और इधर एक्रेलिक है, एक्रेलिक ओपेक कलर होते हैं, ओपेक मतलब थिक, जिसमें से नीचे ट्रांसपेरेंस नहीं होती, चीज नहीं होती, ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो वो एक्रेलिक कलर को आपको लगाने से पहले, वो सूखते बहुत जल्दी है और वैसे बहुत इजी होते हैं वो लगाने, लेकिन उसमें आपको फाइनली पहले एक लेआउट बना लेना चाहिए कि ये कलर मैं यहाँ लगाऊंगा, ये यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, फिर आप उसको बड़ा कर दो, उन कलर्स को आप फैला दो, क्योंकि उसमें भी आपको फ्रेशनेस तभी दिखेगी जब आपके फ्रेश कलर होंगे, मिक्स करोगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, वो मिक्स करने जैसे होते नहीं। बहुत कम जगह पे आप लेयर वगैरह करके यूज कर सकते हो या टेक्सचर दे सकते हो, लेकिन वो बहुत जल्दी सूखने वाले कलर हैं, तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कौन से एरिया में क्या कलर लगाना है। म्यूरल का जहां तक सवाल है, म्यूरल पेंटिंग्स में तो मेरी रिसर्च ही है, तो उसके लिए डिफिकल्ट बहुत है, क्योंकि पहले आपको वॉल बनाने को, दो तरह के होते हैं म्यूरल्स, एक सेको और एक ब्यूनो। तो जो ब्यूनो होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, जिसमें दीवार को भी तैयार करना पड़ता है आपको, भूसा और ये सब चीजें लगा लगू करके, कई सारी चीजें उसमें अंदर डाल के, और फिर उसको गीले गीले के ऊपर ही एक खाका बनाना पड़ता है,

उसके अंदर रंग भरने पड़ते हैं और वो सारा एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद वो बाहर नहीं निकलते। तो उसमें भी आपको बहुत तरीके से काम करना पड़ेगा, ज्यादातर मिट्टी के खनिज रंग ये सब यूज होते हैं, या फिर कोई अपने धातु वातु से बने हुए, जैसे तांबे पे हरा रंग आ जाता है, अपन कुछ खटाई लगा दो ये सब, तो उस तरह के रंग इन पे यूज होते हैं। और उसके बाद इनको नारियल की पोटली से ऐसे टप टप टप टप करना पड़ता है, जिससे वो अंदर तक घुस जाए और चिकनी एक लेयर आ जाए तो वो निकले भी। तो ये डिफिकल्ट है, काफी लंबा प्रोसेस है। और दूसरा सेको जो है वो बिल्कुल आपके ओपेक कलर, जैसे एक्रेलिक है, ऐसे आप किसी भी वॉल के ऊपर सूखे कलर्स ऊपर से लगा सकते हो, पर वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, मतलब ज्यादा देर तक नहीं रहते, वो निकल जाते हैं। लेकिन जो सेको है वो उसमें चले जाते हैं। और हमारे यहाँ जितने भी अजंता के और ये जो मिनिएचर बनाते हैं उसमें थोड़ा उन्होंने कभी दीवारों पे भी बनाया, वो सारे ब्यूनो टेक्निक से बनाया। तो ब्यूनो टेक्निक ज्यादा अच्छी होती है और अंदर तक चली जाती है और पता ही नहीं लगता है, वो दीवार के अंदर ही एक अपना वो ले लेती है अस्तित्व। तो ये है इसकी म्यूरल की बात। अब इसमें से मेरे को कौन सी शैली विशेष प्रिय है, तो मैंने ज्यादातर काम तो उसमें किया है ऑयल में, क्योंकि वो थोड़ा इजी रहता है और मैं पोर्ट्रेट्स और लाइफ ज्यादा बनाती हूँ, तो उसमें कई बार उसको बनाऊंगी तो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऑयल में बड़े फ्रीली आप कर सकते हो काम, बस इतना ध्यान रखना है कि डार्क पे लाइट नहीं लगनी चाहिए। तो ज्यादा काम मैंने उस पर किया है, वैसे मैंने सब में किया है, वाटर कलर में भी किया है, एक्रेलिक में भी किया है, और मैंने कोलाज भी किए हैं। मैं किसी भी शैली को कभी छोड़ती नहीं, मेरे को सब सीखने का शौक है, पर मैं ज्यादा काम मैंने ऑयल पेंटिंग पे किया हुआ और एक्रेलिक में।

0: अर्चना जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी ब्यूटीफुली आपने ये सब चीजें एक्सप्लेन की। हालांकि एज ए लेमैन ये बहुत कुछ चीजें मेरी आधी समझ में आई आधी नहीं आई, लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा और थोड़ा बहुत जानकारी भी हो गई इस आपके इस एक्सप्लेनेशन से। बहुत बहुत सुंदर, बहुत
1: मेरा एक भाग्य कि आपको थोड़ा बता सकी।
0: नहीं नहीं, ये बहुत ही टेक्निकल सा काम है। वैसे आप थोड़ा राजस्थान की लोक कला की तरफ आते हैं, कला की दृष्टि से राजस्थान की लोक कला और परंपरागत चित्र शैली जैसे किशनगढ़, फड़, पिचवाई, इसको आप कैसे देखती हैं?
1: एक्चुअली लोक कलाएं हैं वो तो मॉडर्निटी है, और दूसरी जो करते हैं ये लोग फेस्टिवल पे वो भी सब वही है। लेकिन अच्छा। आपने पूछा है कि किशनगढ़, तो किशनगढ़ शैली जो है उसमें सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर है तो एक बनी ठनी नाम की एक पेंटिंग है,
0: बनी ठनी,
1: जो कि वहाँ के राजा सावंत सिंह के टाइम में वो गायिका थी और कवित्री थी, वो बहुत सुंदर थी और उन्हीं को मॉडल रख करके और उन्होंने इस बनी ठनी को बनवाया था। तो उसका एक अलग ही अपना, अच्छा किशनगढ़ का जो काम है ना वो थोड़ा, जितने भी काम है बूंदी की शैली, किशनगढ़ की शैली, उदयपुर की, बीकानेर की, जोधपुर की, सब में थोड़ा सा फर्क है। तो जो किशनगढ़ का जो काम है उसमें तो थोड़ा येलोइश लेते हैं वो लोग स्किन के कलर में, और अच्छा। जो बूंदी का है उसमें थोड़ा रेडिश लेते हैं, ऐसे सबकी थोड़ी थोड़ी, ये जो होती है बहुत डेलिकेट होती है, आंखें इनकी बिल्कुल कान तक होती है, नाक बहुत छोटी जैसी होती है, बहुत खूबसूरत होती है, और अच्छा। वो जो बूंदी की है वो थोड़ी सी मतलब स्टाउट सी होती है, थोड़ी गुलाबी से रंग की होती है, वो सब वहाँ के जो मतलब वहाँ के जितने भी इंसान है ना क्षेत्र वाइज अलग अलग होते हैं। आप देखो जोधपुर के बहुत बड़े होंगे, बीकानेर के लंबे होंगे, मेवाड़ के ठीकने होंगे, उसी के अनुसार उन्होंने अपनी ये पेंटिंग्स बनाई है। लेकिन इसमें किशनगढ़ की शैली पे जो बड़ी ठनी बनी है उसकी तो तुलना जो वो जो उन्होंने बनाया था, क्या नाम है हमारे बहुत बड़े कौन से कलाकार हैं, उन्हें ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, बहुत लियोनार्डो विंसी, विंसी से मिलती जुलती है। तो और बाकी के ये जो आप फड़ और पिचवाई की बात कर रहे हैं तो फड़ एक कपड़े पे बनाई जाती है, पिचवाई भी, तो ये ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियों के पीछे लगाते हैं और इसमें कोई कथा या कहानी होती है अगर आप उसको देखो ध्यान से, तो वो उसी के लिए ही लगाई जाती है, उसमें पूरा चित्रण होता है उसके, जिसके भी बारे में वो बना रहे, चाहे वो किसी राजा के हो, चाहे वो किसी देवता के हो, चाहे वो कोई किसी के भी हो, तो वो उसकी कृष्ण के भी हो, और वो रामदेवरा में भी उनके पे भी कथाएं हैं बहुत सारी, कई सारी चीजें, वो सारी फड़ जो है वो कोई कहानी कहती है, मतलब उसमें कई सारे दृश्य होते हैं एक ही फड़ में, और वो पीछे लगाने का, दीवार पे लगाने का है उसका, तो वो भी बहुत अच्छी है। मतलब कलाएं तो सभी बहुत अच्छी है, मांडने भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप देखोगे ना पुराने मतलब इसके, चाहे हड़ौती के हों, चाहे उदयपुर के हों, चाहे कहीं के भी, मांडने भी इतने खूबसूरत हैं, और उन्होंने उसको भी एक अलग शैली, जो उनके दिमाग एक्चुअली जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है, जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपकी मस्तिष्क पे आपके वो इम्प्रेशन छोड़ रहा है उसको लेकर के उन्होंने बनाए, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और आज की आधुनिक शैली से मिलते भी बहुत है, वो लोग तो जान के करते हैं आज, वो अपने आप करते थे स्वतः, तो ये है।
0: बहुत बहुत सुंदर।

0: तो अब थोड़ा सा बेसिक्स पे आते हैं। एक अच्छा चित्रकार बनने के लिए किन गुणों का या एट्रीब्यूट्स की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों।
1: एक अच्छा चित्रकार होने के लिए सबसे बड़ी बात तो उसकी दृष्टि, उसका परसेप्शन, वो क्या देख रहा है, अवलोकन। और उसके बाद में आपको उसको वो जो सृजन करता है उसकी सारी टेक्निक्स, वो सारी चीजें उसको बनानी आनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वो एज इट इज कॉपी नहीं, उसके अंदर उसका अपना खुद का जो भाव और जो उसने ग्रहण किया है वो उसके अंदर आर्टिस्टिक रूप में आना चाहिए। मतलब नकल करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपने आप स्वतः काम करोगे दिल से, तो आपका अपना एक शैली खुद ही डेवलप हो जाएगी। जैसे हम साइन करते हैं तो अपने आप ही शुरू हो जाते हैं वो अलग। आप कितना भी कोशिश करो तो सबकी अलग पहचान है, तो अपनी एक अलग पहचान और सृजन शक्ति और ये मतलब देखना गहरी दृष्टि से, उसको देखना, उसकी चीजों को महसूस करना, ये चीजें। और फिर अपना मेहनत भी चाहिए उसके लिए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी करा और निकल गया। बड़े पेशेंस चाहिए उसके लिए, धैर्य चाहिए उसके लिए। तो ये सब चित्रकार के गुणों का मैं वर्णन कर सकती हूँ कि ये होना जरूरी है। और ये एक तरीके से साधना है, तो ये एक मेडिटेशन भी है जो आपको खुश रखेगी, आप खुद से बनाओगे तब। जी
0: नहीं, आपने अभी बता ही दिया, ऑब्जर्वेशन अवलोकन बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ अनुभव हमारे साथ साझा कर सकती है जब आपकी गहरी दृष्टि या आपकी ऑब्जर्वेशन ने एक बहुत ही ऑर्डनरी साधारण से दृश्य को एक अच्छी कलाकृति में बदल दिया, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
1: मेरा एक ब्लैक एंड व्हाइट का एक सीरीज थी पूरी, जिसको कि
0: अच्छा
1: बड़े बड़े चित्रकारों ने और कलाकारों ने भी सराहा है, और उसका काफी पेंटिंग का निकला भी है पेपर्स वगैरह में हर जगह से। तो वो
0: जी,
1: मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को एक्चुअली, मैं बहुत फास्ट काम करने वाली हूँ, मुझसे धैर्य से धीरे धीरे वाले जो क्राफ्टमैनशिप है ना, वो मुझे वो एक अलग चीज होती है, और फाइन आर्ट्स और अपना एक अलग आपका काम होता है। तो मैंने जब स्केचिंग करती थी तो मुझे बोरियत बहुत लगती थी, तो मैंने
0: अच्छा,
1: काजल उठाया जो कि काजल बनता है ये इसमें लघु
0: आंखों में
1: चित्रों
0: लगाने
1: में
0: वाला।
1: जिसमें लगाते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ, उसी को ही,
0: अच्छा
1: उसी को
0: वो
1: उठा के पाउडर बटा के बाजार में भी मिलता है। तो मैं अपनी स्केच फाइल ले जाती थी और जो भी मैं दृश्य देखती थी ना उसको मतलब वैसे नहीं करती थी जैसा कि आप फाइन लाइन से कर रहे हैं ये वो। एक एक आपकी दिमाग पे जो छाप पड़ती है उससे आप उसको फाइन फटाफट फटाफट, पूरी फाइल मेरी उसी से भरी हुई थी। और वो मुझे इतना एप्रिसिएशन मिला उसके अंदर, क्योंकि उसमें आपको एक फीलिंग आती है कि ये गांव की का दृश्य है, कि ये किसी हवेली का है, कि किसी गढ़ का है, कि ये क्या है। तो वो बहुत सबको बहुत अच्छा लगा और उतना उसके तारीफ हुई। और वो पूरी सीरीज बिक गई थी, कोरिया के कुछ लोग आए हुए थे, तो वो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट की सीरीज मेरी चली गई, क्योंकि उसके अंदर आभास था, उसके अंदर यहाँ का राजस्थान का एक वो जीवन तो करके दिखता था वो। लेकिन वो प्रॉपर ऐसे नहीं कि आपने इतनी ऐसे ऐसे करके बना रखा है लाइन ड्रेस, वो चला ही जाएगा। आप देखो राजस्थान में धूल बहुत होती है और गड़बड़ सब जो उससे ढके रहते हैं, तो आपको एक इम्प्रेशन आता है। और वो इम्प्रेशन अगर आपने ले लिया, खाली एक दीवार के ही मैंने खिड़कियां वगैरह बनाई है, उसको भी उसी से ही किया। तो वो मैंने, मेरे को एक शो करना था, मेरी डेट फिक्स थी अहमदाबाद में, तो मैं उसको ले गई फाड़ करके, दो दो पैसे की तो छींटती है उसकी, और तो फ्रेम करा के लगाई। वो इतनी पसंद की गई, और बाद में जब मैं आईफेक्स में मेरा शो था तब मैंने लगाई थी, तो वहां पे सकरात का दिन था, तो उस समय सारे जो बड़े आर्टिस्ट हैं वो वहां आते हैं, उनका एक डिनर होता है तो सीनियर आर्टिस्ट। तो उन्होंने जब मेरी दोनों पेंटिंग्स देखी, दूसरी भी लगा रखी थी की, तो उन्होंने कहा, अरे तुम ये क्यों कर रहे हो, ये काम तुम्हारा कितना अच्छा है। तो वो सहज काम, मतलब जो मेरे स्केचिंग के तरीके से यूज हो रहा था, उसको बहुत एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि उसमें एक अलग झलक थी और उसके अंदर वो आभास भी था जो मैं बना रही थी। तो ये एक साधारण सी चीज को देख के, दीवार को देख के, उसकी जाली को देख करके, ऐसे मैंने बहुत सारे बनाए चीजें, और उसकी बहुत तारीफ भी हुई। तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा, और इसको आप मतलब मैं अनुभवी कहूंगी अपना कि ये अनुभव मेरा बहुत अच्छा था। और गहरी दृष्टि तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को जो दिखाई दिया मैंने उसको एज इट इज उतार दिया, और वो भी किसी अलग शैली में अलग तरीके से।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

0: हाँ, एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि जो युवा आज
1: हाँ
0: कला
1: जी,
0: के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें कुछ आप सुझाव देना चाहेंगी, कोई गाइड करना चाहेंगी?
1: हाँ एक्चुअली क्या है कि अभी एआई के द्वारा इतनी चीजें बन रही हैं, मतलब
0: जी
1: एज इट इज जो जो चाहते हैं वो बना देते हैं, पर आप डिजिटल काम भी कर रहे हो तो भी उसमें उस अगर आपका कुछ का खुद का कुछ है तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो कैरियर में। लेकिन अगर आप एआई को रख करके और किसी भी चीज को वैसा के वैसा वो बना देना, एक किसी पर्टिकुलर उसको दबा के, ऐप को दबा के या किसी चीज को दबा के, तो फिर आपका क्या कैरियर बनेगा? सिर्फ आप कमा सकते हो, वो भी लोग बाग इतनी जल्दी बोर हो जाएंगे उससे, क्योंकि उसमें कोई नॉवल्टी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी जब तक कि आप उसमें
0: जी
1: टेक्निक्स और दूसरी चीजों का प्रयोग नहीं करोगे। तो
0: जी
1: मैं
0: जी
1: तो यही कहती हूँ कि भाई डिजिटल आप करो, क्योंकि आज की परिवर्तन तो बिल्कुल ऐसा सत्य है कि जिसको आप नहीं हटा सकते, लेकिन उसमें थोड़ा अपना भी डालो तो हो सकता है कि आप कुछ, मतलब जो भाव और उसके जो अंदर जो भी आप खुद करते हो उसमें जो कोमलता और वो क्रिएट करते हुए, तो वो अपना जो तुम्हारा उसमें जाता है वो ही आपको सक्सेस दिलाएगा, अदरवाइज कोई कैरियर नहीं।
0: अब थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन तक आते हैं। कोई इस पूरी जीवन यात्रा में, कला की यात्रा में, व्यक्तिगत यात्रा में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एनिक्डोट या कोई ऐसी घटना जो आज भी आपके स्मृति में जीवंत है, आप अगर हमसे
1: हाँ
0: शेयर करना चाहें तो अच्छा लगेगा।
1: नहीं, मैंने आपको एक तो कांति बाई का उदाहरण बताया,
0: जी
1: इतने बड़े आर्टिस्ट जिनके सामने मैं मतलब खड़ी भी नहीं हो सकती, तो
0: जी
1: उन्होंने से मैंने दो तीन बातें पूछी और उन्होंने इतनी अच्छी बात बताई मुझे। एक्चुअली हम लोग क्या होता है, ईगो के कारण वही है हमारे में अहम होता है, हमको पता ही नहीं होता है, और हम जो है वो सोचने लग जाते हैं कि भी ऐसे कैसे, नहीं मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। तो उन्होंने मुझे बहुत शांति से, आनंदमयी माँ के वो भक्त थे, बनाते थे उनको, बना भी रहे थे और उनके वो भी थे, तो उन्होंने कहा कि अर्चना, मैंने उनको कहा कि भाई ये फलाना जो है ना वो ऐसे आ जाता है और ये करता है वो करता है और मैं उनको मना नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे सिंपली कहा कि नहीं, तुम उनको मना इसलिए नहीं कर सकती कि तुम्हारी इमेज उनके उसमें खराब नहीं हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मतलब उन्होंने

0: बोला था कि मैं उनको इतना प्यार करती हूँ, और फिर वो मेरे से रोती हैं करती हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारा मैं आ गया ना इसलिए, तुम बचपन में वो तुम्हें मारती, तुम पल्ला पकड़ती थी, मतलब दो तीन ऐसी गहरी बातें बताई उन्होंने जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया। और मुझे समझ में आया कि सच बात है कि हम किसी को उसको बुरा लगे इसलिए नहीं, हमको कोई बुरा नहीं समझे इसलिए हम उससे ऐसी बात नहीं करते। तो एक तो ये मेरे कभी मेरे स्मृति पटल से जाएगा नहीं गांधी भाई की, दो तीन सवाल को। दूसरा, एक वशिष्ठ साहब हुआ करते थे हमारे जब मैं लेक्चरर थी भवानी मंडी में, तो वो उन्होंने बहुत कम वहां पे थे, तो मैंने दो ग्रुप्स बनाए थे। मैंने कहा कुछ लोग पहले काम करेंगे फिर वो छुट्टी पे से आ जाएंगे तो दूसरे करें, तो वो वशिष्ठ साहब बड़े अच्छे वर्कर थे, बहुत अच्छे। और
1: अच्छा
0: मेरे स्टूडेंट्स भी जो अच्छे होते हैं उनको मैं अच्छा ही करती हूँ, चाहे उनका कुछ भी हो स्वभाव या कुछ भी करें। तो वो वशिष्ठ साहब कहने लगे मैं तो आऊंगा नहीं, मेरी बड़ी पहचान है और आप तो कर लो जो करना है, मैं तो घर में रहूंगा, आप दूसरे वाले कैसे जाएं। तो मैंने उनके खिलाफ एक्शन लिया, एक्सप्लेनेशन कॉल करा मतलब उनका, तो उन्होंने मेरे को बहुत मैं ये हूं मैं ये करा दूंगा करा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उनकी एसीआर भरी गई, कुछ भी मैंने उनका
1: अच्छा
0: आपको कर लो जो, तो उसमें मैंने उनको जो दिया ना एक्सीलेंट, तो वो इतने ज्यादा वो हो गए कि मैं तो सोचता था कि आप मेरी बहुत बुरी करोगे ये करोगे। तो मेरा कहना यही है कि हमेशा जो डिजर्विंग है व्यक्ति वो चाहे कुछ भी करे व्यवहार आपके साथ, लेकिन आपको ऑनेस्टली जो डिजर्व कर रहा है वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं, तो उनको मैंने एक्सीलेंट दिया। ऐसे ही मैंने एक और को दिया तो वो अभी प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए। तो मैं हर एक से बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ये जो सीखा है ये भी किसी से सीखा है कि आप अपनी पर्सनल लड़ाई के लिए किसी और का कैरियर या उसका कोई भविष्य नहीं बिगाड़े। और फिर वो तो बेचारे एक साल तक मेरे से यही कहते रहे मैं तो सोचा नहीं था, मैंने तो आपको गलत समझ लिया। तो सब वो भी मुझे याद रहता है किस्सा, और स्टूडेंट्स के बारे में भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी मेरी स्मृति में चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि जिसने मेरे को थोड़ा सा शायद एक कदम ऊपर आना सिखाए, तो
1: बहुत
0: ये मेरे को याद
1: बहुत
0: है रहना।
1: सुंदर। और ये एसीआर वाली बात तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं
0: नहीं
1: जो
0: वो तो बिगाड़ के ही रखते हैं, मैंने मेरी एहसास
1: बिगाड़
0: देखी है ना बाद में, तो चिढ़ जाते हैं तो बहुत बिगाड़ते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि नहीं, जो व्यक्ति जैसा है वो अलग बात है कि उसने क्या किया, वो व्यवहार अलग, पर उसने काम किया था बहुत अच्छा, तो उसको आपको सराहना ही पड़ेगा और जो डिजर्विंग है उसको देना चाहिए।
1: बहुत सुंदर। आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, परिवार का कितना सहयोग रखा?
0: हाँ जी, एक्चुअली क्या था कि मैं जब 11th क्लास में थी तो मेरे फादर जो है उनकी का देहावसान हो गया, और उन्होंने मुझे कहा कि भाई तू बिना पढ़े लिखे इतना जब टॉप टॉप करती सारे स्कूल स्कूल में तो तू पढ़ा कर, क्योंकि तेरे को ही संभालना है मेरे जाने के बाद। उन्हें पता था कि मैं चाहूंगा, उनको भी किडनी की प्रॉब्लम थी। तो
1: अच्छा
0: मेरे परिवार में मेरे जो संघर्ष थे वो 11th क्लास के बाद से शुरू हो गए थे, और उन संघर्षों से लड़ करके ही मैं इतनी मजबूत बनी। जिसने कभी पानी नहीं पिया अपने घर में गिलास उठा के, वो सारे काम कर रहे थे, बर्तन माज रहे थे, झाड़ू पोछे कर रहे थे, निवाड़ की खाट बुन रहे थे, गद्दे भरवा के ला रहे थे, और किसी तरह की कोई शर्म नहीं थी। तो मुझे समझ में आया कि आदमी को मजबूत जब बनना होता है ना तो उसको हर तरीके के संघर्ष से लड़ाई करनी आनी चाहिए। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि मुझे मजबूती जो मिली आज, जो मैं इतनी सबसे लड़ सकती हूँ परिस्थितियों में, वो सिर्फ उसी के कारण है कि जब से वो गए तो मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को तो अब करना ही है, क्योंकि मुझे वो सौंप के गए ये काम कि तुम्हें ये सब करना है, मम्मी को रखना है, अपने भाइयों का देखना है, सब कुछ करना है। तो उस
1: जी,
0: संघर्ष में मैंने बहुत आनंद भी लिया और सीखा भी बहुत,
1: बहुत इसने मजबूत बना दिया आपको एक तरह से
0: बिल्कुल
1: कहना।
0: मजबूत बनाया, बिल्कुल हर परिस्थिति से लड़ना सिखा दिया।
1: तो कला यात्रा को अगर तीन शब्दों में व्यक्त करना चाहें तो कौन से वो तीन शब्द होंगे?
0: तीन शब्द मुझे तो वही लगता है कि अवलोकन, एक तो आपको देखना अच्छी तरह गहराई से आना चाहिए, आपको किसी भी चीज को परखना आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा आपको कल्पना में भी उसको ले जा सकते हैं, एज इट इज ही बनाना, वो तो वैसे भी बहुत सुंदर बनाई हुई है, कैमरा भी दे देता है आपको, और लेकिन आप उसमें अपना थोड़ा सा अपने खुद का फुट डालते हैं कल्पना का और उसका, तो बहुत अच्छा लगता है। सृजन के लिए आपको सशक्त सारी जो सृजन की प्रक्रिया है उनको सीख करके और उनको अप्लाई करना चाहिए, ये तीन चीजें।
1: तो डॉक्टर अर्चना जी, आपने जिस आत्मीयता से अपने अनुभव, विचार और जीवन की झलकियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। आपकी बातें साबित करती हैं कि कला सिर्फ रंगों और रेखाओं का संयोजन नहीं, बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। हमारी शुभकामनाएं आपके सृजन और प्रेरणा की यह यात्रा यूं ही रंगों से भरी रहे। श्रोताओं, मुझे विश्वास है आज की बातचीत आपको भी अपनी रचनात्मकता को नया आयाम देने की प्रेरणा देगी। अर्चना जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं।
0: और मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं अपनी कुछ बातें सब श्रोताओं को सुना सके, बता सकूं, जो कि मैं महसूस तो करती हूँ, कहने का कहीं मौका इतना मिलता नहीं।
1: तो श्रोताओं, इसी सुंदर भावना के साथ मैं आलोक कुमार आपसे लेता हूँ विदा। फिर मिलेंगे एक नए अतिथि, नई प्रेरणा और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

बिस्वजीत चटर्जी, जो सिंपल बिस्वजीत के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 दिसंबर 1936 में हुआ था। ये हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन भी बने। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी फिल्म के इस गीत से।

बहुत ही स्वाभाविक अभिनय और बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध थे बिस्वजीत चटर्जी। इन्होंने बंगाली फिल्मों और हिंदी फिल्मों के दर्शकों के दिलों पर सालों साल राज किया। चलिए हो जाए इनकी फिल्म का ये गीत।

बिस्वजीत कोलकाता में पले बढ़े और इनके एक्टिंग की सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई। माया, मृग और दुई भाई जैसी सफल बंगाली फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद बिस्वजीत ने हिंदी फिल्मों का रुख किया। चलिए इनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

विश्वजीत कोलकाता से मुंबई आए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाली फिल्मों की तरह इस सफल अभिनेता को सर आंखों पर लिया। परिणाम स्वरूप बेहद कम समय में विश्वजीत की झोली हिंदी फिल्मों से भर गई। चलिए उनकी फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

1962 में बिस्वजीत चैटर्जी की पहली फिल्म 20 साल बाद प्रदर्शित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। देखते ही देखते बिस्वजीत हिंदी फिल्मों के तेजी से उभरते हुए अभिनेता बन गए। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

विश्वजीत के चाहने वालों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि दी। है ना मजेदार बात। विश्वजीत पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने उनके फिल्मी करियर में चार चांद लगा दिए। चलिए हो जाए उनका ये खूबसूरत सा गीत।

बिस्वजीत चैटर्जी ने कई यादगार फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई, जिनमें मेरे सनम, शहनाई, अप्रैल फूल, दो कलियां और शरारत खास हैं। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

विश्वजीत को उस समय के लगभग सभी हीरोइनों के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला, खास करके आशा पारिख, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी हमेशा बहुत पसंद की गई। तो सुनिए उनकी फिल्म का ये गीत।

हिंदी फिल्मों में मिली सफलता के बाद भी बिस्वजीत ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। वो कोलकाता आते जाते रहते थे और चुनिंदा बंगाली फिल्मों में अभिनय करते रहे, जिनमें सुपरहिट फिल्म चौरंगी उल्लेखनीय है। चलिए उनकी फिल्म का ये गीत।

अभिनय के बाद विश्वजीत ने फिल्म डायरेक्शन की तरफ भी कदम बढ़ाए। 1975 में फिल्म बनी कहते हैं मुझको राजा, जिसका निर्माण और निर्देशन दोनों इन्होंने ही किया। इस फिल्म में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया।

बिस्वजीत की अनगिनत फिल्में आईं। उन्होंने 2002 तक फिल्मों में काम किया। चलिए बिस्वजीत की इस फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

जिसको मिले जान जा, बेदिली उसको सजती नहीं है।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदा बहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे, तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

दिल का पर्दा खोल दो, जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ

0: दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुई, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

देवरन जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

तो दिल में

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। लीजिए दोस्तों उनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हाँ छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवानंद साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम।
1: धीरे धीरे हर शम बुझी रफ्ता रफ्ता।
0: गजलों की शाम में आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शायर हमारे साथ हैं उनका नाम है ओम प्रकाश यति जी। बाकी की बातचीत हम ओम प्रकाश जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके कलाम सुनेंगे, उनकी गजलें सुनेंगे। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
2: धन्यवाद आपका।
0: तो ओम प्रकाश जी प्रोग्राम को शुरू करते हुए बस छोटा सा ही एक सवाल पूछना चाहूंगा पहले कि आपका जन्म स्थान क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, और अभी आप कहाँ रहते हैं थोड़ा उसके बारे में बताइए।
2: जी आपने पूछा जन्म स्थान के बारे में, तो मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का एक पूर्वी क्षेत्र में एक जिला है बलिया
0: जी,
2: वहाँ मेरा गाँव है छिब्बी, तो वहाँ मेरा जन्म स्थान है। और अपनी सरकारी सेवा में रहा मैं उत्तर प्रदेश सरकार की, तो जगह जगह मेरे स्थानांतरण होते रहे, और रिटायरमेंट के बाद अब मैं यहाँ दिल्ली के पास ये ग्रेटर नोएडा एक जगह है वहां मैं रह रहा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओम प्रकाश जी। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपनी गजल हमारे सुनने वालों के लिए सुनाए।
2: जी जी जी बिल्कुल, एक गजल के कुछ शेर देखें।
0: जी इरशाद।
2: कि इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है, इस पे अब क्या सोचना, अच्छा बुरा जैसा भी है, और वक्त कट ही जाएगा अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: वाह।
2: एक शेर है कि क्या जरूरत आ पड़े कब मत पड़ोसी से बिगाड़, क्या जरूरत आ पड़े कब मत पड़ोसी से बिगाड़, और बस वही काम आएगा अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: बहुत खूब।
2: बस वही काम आएगा अच्छा बुरा जैसा भी है। और एक शेर है कि गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही, गांव तक जाना है तो चलना पड़ेगा इस पे ही, बस यही है रास्ता अच्छा बुरा जैसा भी है, बस यही है रास्ता अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: बहुत खूब। एक शेर
2: कि चाहता हूँ लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते, चाहता हूँ लिख के जाऊं पीढ़ियों के वास्ते, जिंदगी का तजुर्बा अच्छा बुरा जैसा भी है, जिंदगी का तजुर्बा अच्छा बुरा। धन्यवाद आपका। और एक शेर है राजनीतिक संदर्भों का कि वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, वोट पाने के लिए इसको निशाना मत बना, देश है आखिर तेरा अच्छा बुरा जैसा भी है, देश है आखिर तेरा अच्छा बुरा जैसा भी है। और आखिरी शेर है इस गजल का कि हंस के चाहे रोके अब स्वीकार करना है इसे, हंस के चाहे रोके अब स्वीकार करना है इसे, है नियति का फैसला, है नियति का फैसला अच्छा बुरा जैसा भी है। अच्छा एक शेर और रह गया था इसका, वो भी सुनाता हूँ।
0: जी जी इरशाद।
2: कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, कोशिशें करके निभाऊंगा मैं रिश्ता उसके साथ, और है तो भाई ही मेरा अच्छा बुरा जैसा भी है, है तो भाई ही मेरा अच्छा बुरा जैसा भी है, इस पे अब क्या सोचना अच्छा बुरा जैसा भी है, वक्त कट ही जाएगा अच्छा बुरा जैसा भी है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी गजल साहब।
2: जी धन्यवाद।
0: सुन के मजा आ गया साहब। जैसा भी है तो मेरा ही, क्या बात है।
2: अच्छा,
0: बहुत खूब
2: जैसा भी है जी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो ओम जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
2: अच्छा ये तो ये गजल मुझे पसंद है, ये वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं
0: जी,
2: तो ये अब ये लता मंगेशकर जी की गाई हुई है।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो ये अगर सुना दें तो फिर
0: बहुत खूब, बहुत ही खूब। आइए दोस्तों सुनते हैं ओम प्रकाश जी के हुक्म पर ये प्यारी सी गजल लता मंगेशकर जी की गाई हुई।

0: है सफर, उम्मीद मेरे साथ है। तय करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है। और मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है। तय
1: जी
0: करूंगा मैं सफर, उम्मीद मेरे साथ है। मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है। और बात करता ही नहीं मुझसे निराशा की कोई, बात करता ही नहीं मुझसे निराशा की कोई। जानता है हर बशर उम्मीद मेरे साथ है।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: धन्यवाद जी। जानता है हर बशर उम्मीद मेरे साथ है। और राह भटकाने की कोशिश में अंधेरा है उधर, कि राह भटकाने की कोशिश में अंधेरा है उधर, रोशनी लेकर इधर उम्मीद मेरे साथ
1: क्या
0: है।
1: बात है, बहुत खूब।
0: रोशनी लेकर इधर उम्मीद मेरे साथ है। और एक शेर देखें खास तौर पे, कि वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, क्यों लगेगा मुझको डर उम्मीद मेरे साथ है।
1: उम्मीद मेरे साथ है।
0: कि वो डरे जो हो अकेला जिंदगी की राह में, क्यों लगेगा मुझको डर उम्मीद मेरे साथ है। और आखिरी शेर है मक्तावल की, कहेंगे इसको, कि दूर से ही हो गई मायूसियां वापस यति, दूर से ही हो गई मायूसियां वापस यति, मिल गई उनको खबर उम्मीद मेरे साथ है। मिल गई उनको खबर उम्मीद मेरे साथ है। तय करूंगा मैं सफर उम्मीद मेरे साथ है। और मुश्किलें तो हैं मगर उम्मीद मेरे साथ है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब साहब, बहुत खूब।
0: जी जी
1: उम्मीद
0: धन्यवाद।
1: मेरे साथ है, और उम्मीदों के ही सहारे ये पूरी दुनिया चलती है। अगर उम्मीदें ना हो तो इंसान मोटिवेटेड ही नहीं रहता कि किस तरफ आगे बढ़े, किस तरफ काम करें।
0: जी जी
1: वो
0: सकारात्मकता इसीलिए जरूरी है। जी जी
1: जी, उम्मीदें रखना बहुत जरूरी है साहब, सपने देखना बहुत जरूरी है साहब, क्योंकि
0: जी
1: तभी कुछ पाया भी जाता है, तभी कुछ आविष्कार भी होता है, तभी कुछ इजाद भी होता है। वरना अगर हम उम्मीद ही न रखें, सपने ही ना देखें, तो सब बस यूं ही चलते ही रहेंगे, और क्या। बहुत खूब।
0: बिल्कुल बिल्कुल। जी जी धन्यवाद आपका।
1: तो सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं।
0: अच्छा, ये एक गजल है, ये हमें लगता है गुलाम अली साहब ने गाई है।
1: जी
0: आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने साहब,
0: जी
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महकती हुई गजल है। आइए साहब, सुनते हैं गुलाम अली साहब की गाई हुई ये प्यारी सी गजल।

0: और शेर देखें कि सोच मत उस पर बहुत जो चीज वश में है नहीं, कि सोच मत उस पर बहुत जो चीज वश में है नहीं, एक दिन वरना यही चिंता चिता बन जाएगी
1: जी,
0: एक दिन वरना यही चिंता चिता बन जाएगी। और एक शेर खास तौर पे कि अपनी संतानों की खातिर कुछ भी कर सकती है ये, अपनी संतानों की खातिर कुछ भी कर सकती है ये, जब जरूरत आ पड़ेगी माँ पिता बन जाएगी।
1: ओह क्या बात है,
0: जब जरूरत आ पड़ेगी माँ पिता बन जाएगी। और एक शेर है कि आदतें अच्छी अगर हम डालते जाएंगे तो, कि आदतें अच्छी अगर हम डालते जाएंगे तो एक दिन आदर्श जीवन संहिता बन जाएगी।
1: क्या बात है,
0: एक दिन आदर्श जीवन संहिता बन जाएगी। और एक शेर देखें कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, इस तरह को जिंदगी प्रतियोगिता बन जाएगी।
1: वाह वाह क्या बात है,
0: कि दूसरों के पास जो है वो हमें क्यों चाहिए, इस तरह तो जिंदगी प्रतियोगिता बन जाएगी। और आखिरी शेर गजल का है कि जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, सार्थक अपनी ये रचना धर्मिता बन जाएगी।
1: बहुत खूब,
0: जन सरोकारों से इसके तार जब जुड़ जाएंगे, सार्थक अपनी ये रचना धर्मिता बन जाएगी, निर्भया श्रद्धा नताशा अंकिता बन जाएगी, क्या पता कब कौन लड़की पीड़िता बन जाएगी।
1: ओहो क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही संवेदनशील गजल जो दिल को छू के जाए, और शब्दों का और लफ्जों का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल, बहुत ही खूबसूरत गजल साहब।
0: जी जी धन्यवाद।
1: तो अगली कौन सी गजल सुनवा रहे हैं आप, आपके पसंदीदा गजल गायक की?
0: जी जी, एक गजल मुझे पसंद है, ये फिर छिड़ी रात बात फूलों की।
1: जी,
0: ये हमें लगता लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज है।
1: जी जी जी,
0: तो ये सुनना चाहता हूँ।
1: बहुत खूब जी, जरूर। दोस्तों ये सुनते हैं फिर छिड़ी रात बात फूलों की, लता मंगेशकर और तलत अजीज साहब की आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत। ओम प्रकाश साहब आगे बढ़ते हैं और एक बस यूं ही मजेदार सा सवाल, आपको खाने में क्या पसंद है और क्यों?
1: खाने में तो मैं शाकाहारी हूँ, शुद्ध शाकाहारी हूँ
0: जी।
1: तो खाने में तो बस क्या है, वही सिंपल अपना दाल रोटी वाले हम लोग हैं और हरी सब्जियां खाते हैं और बस दूध की चीजें, दूध दही पनीर ये सब खाते हैं और तो बस।
0: नहीं नहीं वो तो ठीक हुआ साहब, लेकिन फिर भी जैसे सब्जियों में, हरी सब्जियों में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, उनमें से कोई एक सब्जी होगी जो शायद आपको बहुत पसंद होगी।
1: वो आपने सही कहा, मुझे लौकी और ये तोरी, एक तोरी आती है वो पसंद है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही सीधी सादी सिंपल सी तरकारियां, सिंपल सी सब्जियां जो शरीर के लिए हल्की भी हैं और फायदेमंद भी। बहुत खूब
1: अच्छा
0: जैसे मैं जस्ट बताना चाहूं तो सब्जियों में एक कमल डंडी आती है जिसको भिस भी कहते हैं।
1: बिल्कुल, वो उसको हम कहां गए थे, जम्मू में मेरी बेटी की शादी हुई है तो उनके यहाँ बहुत, वो तो हर डिश में वो जरूर रहता है उनके यहाँ, नदरू बोलते हैं लोग उसको
0: जी
1: कश्मीरी में
0: जी।
1: हाँ हमारे यहाँ का कमल ककड़ी ही बोलते हैं।
0: जी जी जी जी
1: अच्छी लगती है,
0: बहुत बहुत अच्छी लगती है, मतलब सब्जियों में अगर बात करें तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसको कई तरह की डिश बनाते हैं
0: जी, वो गीली भी बनती है, सूखी भी बनती है।
1: बहुत
0: बेहतरीन। तो ओम प्रकाश साहब आगे बढ़ते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल और सुनाएं।
1: अच्छा एक गजल और सुनाऊं जी?
0: जी
1: तो एक गजल के कुछ शेर देखिए।

हिंदुस्तानी संगीत में और बॉलीवुड की दुनिया में सबसे बेहतरीन कलाकार मन्ना डे जी, जिनकी क्लासिकल सिंगिंग और गजल सिंगिंग बेहद मशहूर थी। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस सुनाई दे सकता है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमें दीवाना बना सकती है।

0: प्रकाश साहब, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। आप हमारे मेहमान बनकर इस प्रोग्राम में आए, आपकी गजलें हमने सुनी, आपसे बातचीत हमने करी, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस हमारे समाज के लिए, हमारे लिए काम आएगा। हम इस चीज का सख्त ख्याल रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। समीर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत सी चीजें आप इतनी सामान्य पूछी जो काफी कुछ मुझे पीछे अपने उसमें ले गई, और मुझे अच्छा लगा
0: जी।
1: ये बातें मुझे फिर याद करने का एक अवसर दिया, और मेरे पसंद के गीत आपने सुनवाए, ये जान करके और ये सुन करके भी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद, आभार आपका।
2: बरसों में मरासिम बनते हैं, लम्हों में भला क्या टूटेंगे।
0: दोस्तों, आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, क्योंकि कहीं कहीं छोटी छोटी बरसात हो गई है, यानी छुटपुट बरसात हो गई है, और हमारे किसान साथी तैयारी करने में जुट गए हैं कि जैसे ही अब अगली बार बरसात हो वैसे ही अपने खेतों में अपने बीज को लगा दें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है, कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन है, उसको किस तरीके से हम समतलीकरण कर सकते हैं इससे पहले, बोनी से पहले, और साथ साथ में मेड़बंदान भी कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठते हैं, यानी वैज्ञानिक बैठते हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अमरूद के बागवानी के तरीके क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। धान की बुवाई से पहले किस तरीके से बीज का उपचार करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। खासतौर पर हम पशुओं पर भी चर्चा करेंगे कि इस माह हमें पशुओं का किस तरीके से देखरेख हमें करना चाहिए, इस विषय पर साथ में हम बातचीत करेंगे। वो बातचीत होगी कि छत पर बागवानी जो हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाई जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हम देर नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी किस तरीके से तैयार की जाती है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मौसम आधारित जानकारी। आने वाले 5 दिनों में आसमान में छिटपुट से घने बादल रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस व 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा पश्चिम दिशा से 17.4 से 28.9 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 5 दिनों में वर्षा 11.0 मिलीमीटर होने के अनुमान बताया जा रहा है। अगर कृषि परामर्श की बात करें तो जिले में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से मध्यम से छुटपुट बादल छाए रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की खेती हेतु खेत तैयार कर लें। फसलों के बीज की बुवाई का समय और उर्वरक व बीज का मिलाकर बुवाई कभी ना करें और फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। इस हेतु बीज उर्वरक कल्चर फपूद नाशक दवाओं की व्यवस्था भी साथ में कर लें। खरीफ फसलों की बुवाई 3 से 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करें। स्वयं से तैयार बीज की सफाई कर लें व अंकुरण की प्रतिशत अवश्य जांच लें। अंकुरण का प्रतिशत यदि 70% आता है तो ठीक है, आपका बीज अच्छा है, बोने लायक है। यदि 70% से कम आता है तो नए बीज की व्यवस्था भी साथ में कर लें। जो

मक्का की फसल है उसके लिए जो परामर्श दिया गया है बताया गया है वो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त किस्म जो है वो JVM 421 है, HPQM 1 है, JM 216 या फिर उत्तम अवधि की संकर किस्म की व्यवस्था कर लें बीजों की। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की खेती हेतु उपयुक्त

0: समय है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: बहनों, एक ऐसा फल जो हर उम्र के व्यक्ति को पसंद आता है। जी हाँ, साथ ही अगर हमारे किसान उसका प्रसंस्करण करके उसके उत्पाद की बिकवाली करें तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। कौन सा है ऐसा फल, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: अमरूद की बागवानी पूरे भारत में की जाती है। विटामिन सी और पेक्टिन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर इस फल को आसानी से घर के आंगन से लेकर खेतों की बाड़ और बागों में उगाया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अमरूद की खेती अधिक तापमान, गर्म हवा, बारिश, लवणीय या कमजोर मृदा, कम जल या जल भराव की दशा से अधिक प्रभावित नहीं होती है। ये सख्त किस्म की फसल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम जल निकास वाली मिट्टी भी शामिल है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छे निकास वाली रेतीली चिकनी मिट्टी से लेकर

0: मिट्टी में लगाना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, एप्पल कलर, ललित, अर्का मृदुला, श्वेता, पंजाब किरण। ऐसे करें खेत तैयार। पौधे की बढ़वार अच्छी हो और जड़े आसानी से अपनी पकड़ बना ले, इसके लिए खेत की 2 बार तिरछी जुताई करें और फिर समतल करें। खेत को इस तरह तैयार करें कि उसमें पानी ना खड़ा रहे। अब बात कर लेते हैं पौधे रुपाई के बारे में। तो अमरूद का बाग लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन तैयार पौधों को खेत या बाग में रोपा जाता है। रुपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है, लेकिन यदि सिंचाई की बेहतर सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी रुपाई का काम किया जा सकता है। पौधे की रुपाई के लिए पहले 60 सेंटीमीटर चौड़े, 60 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे को तैयार करें। इसमें 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 40 से 50 ग्राम मिथाइल पैराथियन पाउडर को ऊपरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर दें। मिट्टी सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरें। इसके बाद मिट्टी पर सिंचाई करें। गड्ढों में मिट्टी पौधा लगाने के 15 से 20 दिन पहले भर देना चाहिए। इस तरह तैयार गड्ढों में नियत समय पर पौधों की रुपाई करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी करें। इस फसल में वैसे तो ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शरद ऋतु में पौधे की सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर और गर्मियों के मौसम में 7 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। साथ ही अमरूद के खेतों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकालते रहे। बारिश के मौसम में इस बात का खास ध्यान रखें कि बाग में अनावश्यक पौधे ना उग पाए। इसके अलावा अमरूद में कीड़े की समस्या बारिश के मौसम में ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में कीटों के प्रकोप से बचने के लिए नीम की पत्तियों के उबले पानी का छिड़काव करना चाहिए। वहीं अमरूद में उखटा रोग, तना कैंसर रोग के लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। पौधों की मजबूती और सही वृद्धि को बनाए रखने के लिए टहनियों की हल्की छटाई करनी जरूरी होती है। इसकी कटाई हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करनी चाहिए। इस तरह कटाई के बाद नई टहनियों से ज्यादा फल उत्पादन की संभावनाएं रहती है। अब बात कर लेते हैं फलों की तुड़ाई की। पौधा रोपण के 2 से 3 साल बाद अमरूद के फल लगने शुरू हो जाते हैं। तैयार फलों का रंग हरे से पीला होना शुरू हो जाता है। फलों की तुड़ाई सही समय पर कर लेनी चाहिए। फलों को ज्यादा पकने नहीं देना चाहिए। यदि फल का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है तो किसान उसे प्रसंस्कृत करके भी अच्छी आय ले सकते हैं।
1: किसान भाई।
2: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
3: नमस्कार साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, क्योंकि कहीं कहीं छोटी छोटी बरसात हो गई है, यानी छुटपुट बरसात हो गई है और हमारे किसान साथी तैयारी करने में जुट गए हैं कि जैसे ही अब अगली बार बरसात हो वैसे ही अपने खेतों में अपने बीज को लगा दें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है, खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है, कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन है, उसको किस तरीके से हम समतलीकरण कर सकते हैं इससे पहले, बोनी से पहले, और साथ साथ में मेड़बंदान भी कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठते हैं, यानी वैज्ञानिक बैठते हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अमरूद के बागवानी के तरीके क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। धान की बुवाई से पहले किस तरीके से बीज का उपचार करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। खासतौर पर हम पशुओं पर भी चर्चा करेंगे कि इस माह हमें पशु का किस तरीके से देखरेख हमें करना चाहिए, इस विषय पर। साथ में हम बातचीत करेंगे, वो बातचीत होगी कि छत पर बागवानी जो हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाई जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हम देर नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी किस तरीके से तैयार की जाती है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मौसम आधारित जानकारी। आने वाले 5 दिनों में आसमान में छिटपुट से घने बादल रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस व 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा पश्चिम दिशा से 17.4 से 28.9 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 5 दिनों में वर्षा 11.0 मिलीमीटर होने के अनुमान बताया जा रहा है। अगर कृषि परामर्श की बात करें तो जिले में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से मध्यम से छुटपुट बादल छाए रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की खेती हेतु खेत तैयार कर लें। फसलों के बीज की बुवाई का समय उर्वरक व बीज का मिलाकर बुवाई कभी ना करें और फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। इस हेतु बीज उर्वरक कल्चर फपूद नाशक दवाओं की व्यवस्था भी साथ में कर लें। खरीफ फसलों की बुवाई 3 से 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करें। स्वयं से तैयार बीज की सफाई कर लें व अंकुरण की प्रतिशत अवश्य जांच लें। अंकुरण का प्रतिशत यदि 70% आता है तो ठीक है, आपका बीज अच्छा है, बोने लायक है। यदि 70% से कम आता है तो नए बीज की व्यवस्था भी साथ में कर लें। जो मक्का की फसल है उसके लिए जो परामर्श दिया गया है, बताया गया है, वो मक्का की खेती के लिए उपयुक्त किस्म जो है वो JVM 421 है, HPQM 1 है, JM 216 या फिर उत्तम अवधि की संकर किस्म की व्यवस्था कर लें बीजों की। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की खेती हेतु उपयुक्त किस्म जो है JS 2069, JS 2098, RS 24, JS 2029, RVS 2001-4 आदि की व्यवस्था कर लें। उड़द के लिए उड़द की उत्तम किस्म है उत्तरा, JU 86, PU 31, प्रताप उड़द 1 की व्यवस्था अवश्य कर लें। कपास की उन्नत किस्म है DCH 32, BT 2, कपास की किस्मों की व्यवस्था कर लें। साथ साथ में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं उनमें खास तौर पर अगर नर्सरी के पौधों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उनके रोकथाम के लिए प्रोफेनोवस दवा जो रहती है 3.0 मिलीमीटर प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव कर दें। अदरक और हल्दी की खेती हेतु प्रकंड की बुवाई करें। साथ में बुवाई के पूर्व प्रकंड को डाइएन M45 और कार्बोडाइजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर 20 से 30 मिनट डुबो कर रखें। बरसात की सब्जियों की रोपणी में जल निकास की उचित व्यवस्था भी कर लें। तो ये थे हमारे मौसम आधारित जानकारी जो हम आपको उपलब्ध करा रहे थे। साथियों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं अमरूद की बागवानी करने से पहले हम किस तरीके से सावधानी, किस तरीके से हमें अमरूद की बागवानी लगानी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस विराम के बाद।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, क्योंकि कहीं कहीं छोटी छोटी बरसात हो गई है, यानी छुटपुट बरसात हो गई है और हमारे किसान साथी तैयारी करने में जुट गए हैं कि जैसे ही अब अगली बार बरसात हो वैसे ही अपने खेतों में अपने बीज को लगा दें, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है। खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है, कहीं ऊबड़ खाबड़ जमीन है, उसको किस तरीके से हम समतलीकरण कर सकते हैं इससे पहले, बोनी से पहले, और साथ साथ में मेड़बंदान भी कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठते हैं, यानी वैज्ञानिक बैठते हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अमरूद के बागवानी के तरीके क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। धान की बुवाई से पहले किस तरीके से बीज का उपचार करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। खासतौर पर हम पशुओं पर भी चर्चा करेंगे कि इस माह हमें पशुओं का किस तरीके से देखरेख हमें करना चाहिए, इस विषय पर साथ में हम बातचीत करेंगे। वो बातचीत होगी कि छत पर बागवानी जो हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाई जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हम देर नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी किस तरीके से तैयार की जाती है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मौसम आधारित जानकारी। आने वाले 5 दिनों में आसमान में छिटपुट से घने बादल रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस व 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा पश्चिम दिशा से 17.4 से 28.9 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 5 दिनों में वर्षा 11.0 मिलीमीटर होने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर कृषि परामर्श की बात करें तो जिले में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी, क्योंकि कहीं कहीं छोटी छोटी बरसात हो गई है, यानी छुटपुट बरसात हो गई है, और हमारे किसान साथी तैयारी करने में जुट गए हैं कि जैसे ही अब अगली बार बरसात हो वैसे ही अपने खेतों में अपने बीज को लगा दें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समस्या होती है, खासतौर पर अगर झाबुआ जिले की बात करें तो पथरीला इलाका है, कहीं उबड़ खाबड़ जमीन है, उसको किस तरीके से हम समतलीकरण कर सकते हैं इससे पहले, बोनी से पहले, और साथ साथ में मेड़बंदान भी कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठते हैं, यानी वैज्ञानिक बैठते हैं, उनसे हम सलाह ले सकते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से अमरूद के बागवानी के तरीके क्या होते हैं, उस पर बात करेंगे। धान की बुवाई से पहले किस तरीके से बीज का उपचार करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। खासतौर पर हम पशुओं पर भी चर्चा करेंगे कि इस माह हमें पशुओं का किस तरीके से देखरेख हमें करना चाहिए, इस विषय पर। साथ में हम बातचीत करेंगे, वो बातचीत होगी कि छत पर बागवानी जो हम लगाते हैं वो किस तरीके से लगाई जाती है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम में हम देर नहीं करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से अमरूद की बागवानी किस तरीके से तैयार की जाती है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं मौसम आधारित जानकारी। आने वाले 5 दिनों में आसमान में छिटपुट से घने बादल रहने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस व 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा पश्चिम दिशा से 17.4 से 28.9 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना बताई जा रही है। आगामी 5 दिनों में वर्षा 11.0 मिलीमीटर होने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर कृषि परामर्श की बात करें तो जिले में मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 5 दिनों में आसमान में मध्यम घने से मध्यम से छुटपुट बादल छाए रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की खेती हेतु खेत तैयार कर लें। फसलों के बीज की बुवाई का समय और उर्वरक व बीज का मिलाकर बुवाई कभी ना करें और फसलों की बुवाई से पूर्व बीज उपचार अवश्य करें। इस हेतु बीज उर्वरक कल्चर फफूदनाशक दवाओं की व्यवस्था भी साथ में कर लें। खरीफ फसलों की बुवाई 3 से 4 इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करें। स्वयं से तैयार बीज की सफाई कर लें व अंकुरण की प्रतिशत अवश्य जांच लें। अंकुरण का प्रतिशत यदि 70% आता है तो ठीक है, आपका बीज अच्छा है, बोने लायक है। यदि 70% से कम आता है तो नए बीज की व्यवस्था भी साथ में कर लें। जो मक्का की फसल है उसके लिए जो परामर्श दिया गया है,

उत्तम किशन है उत्तरा, जीयू 86, पीयू 31, प्रताप उड़द 1 की व्यवस्था अवश्य कर लें। कपास की उन्नत किस्म है DCH 32, BT 2, कपास की किस्मों की व्यवस्था कर लें। साथ साथ में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं उनमें खास तौर पर अगर नर्सरी के पौधों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उनके रोकथाम के लिए प्रोफेनोवस दवा जो रहती है 3.0 मिलीमीटर प्रति लीटर घोल बनाकर छिड़काव कर दें। अदरक और हल्दी की खेती हेतु प्रकंड की बुवाई करें, साथ में बुवाई के पूर्व प्रकंड को डाइएन M45 और कार्बोडाइजिम 2.0 ग्राम प्रति लीटर में घोल बनाकर 20 से 30 मिनट डुबो कर रखें। बरसात की सब्जियों की रोपणी में जल निकास की उचित व्यवस्था भी कर लें। तो ये थे हमारे मौसम आधारित जानकारी जो हम आपको उपलब्ध करा रहे थे। साथियों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जान लेते हैं अमरूद की बागवानी करने से पहले हम किस तरीके से सावधानी, किस तरीके से हमें अमरूद की बागवानी लगानी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस विराम के बाद।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो आपकी बातें।
1: एक ऐसा फल जो हर उम्र के व्यक्ति को पसंद आता है। जी हाँ, साथ ही अगर हमारे किसान उसका प्रसंस्करण करके उसके उत्पाद की बिकवाली करे तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। कौन सा है ऐसा फल, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में।
2: अमरूद की बागवानी पूरे भारत में की जाती है। विटामिन सी और पेक्टिन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर इस फल को आसानी से घर के आंगन से लेकर खेतों की बाड़ और बागों में उगाया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि अमरूद की खेती अधिक तापमान, गर्म हवा, बारिश, लवणीय या कमजोर मृदा, कम जल या जल भराव की दशा से अधिक प्रभावित नहीं होती है। ये सख्त किस्म की फसल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम जल निकास वाली मिट्टी भी शामिल है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 पीएच वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छी निकास वाली रेतीली चिकनी मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी में लगाना चाहिए। बेहतर उत्पादन के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49, चित्तीदार, एप्पल कलर, ललित, अर्का मृदुला, श्वेता, पंजाब किरण। ऐसे करें खेत तैयार। पौधे की बढ़वार अच्छी हो और जड़े आसानी से अपनी पकड़ बना ले, इसके लिए खेत की 2 बार तिरछी जुताई करें और फिर समतल करें। खेत को इस तरह तैयार करें कि उसमें पानी ना खड़ा रहे। अब बात कर लेते हैं

पौधे रुपाई के बारे में। तो अमरूद का बाग लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इन तैयार पौधों को खेत या बाग में रोपा जाता है। रुपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है, लेकिन यदि सिंचाई की बेहतर सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी रुपाई का काम किया जा सकता है। पौधे की रुपाई के लिए पहले 60 सेंटीमीटर चौड़े, 60 सेंटीमीटर लंबे और 60 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे को तैयार करें। इसमें 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 250 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 40 से 50 ग्राम मिथाइल पैराथियन पाउडर को ऊपरी मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को भर दें। मिट्टी सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर तक भरें। इसके बाद मिट्टी पर सिंचाई करें। गड्ढों में मिट्टी पौधा लगाने के 15 से 20 दिन पहले भर देना चाहिए। इस तरह तैयार गड्ढों में नियत समय पर पौधों की रुपाई करें, साथ ही हल्की सिंचाई भी करें। इस फसल में वैसे तो ज्यादा

0: खेत में 400 किलो मछली का बीज या करीब 2000 मछलियां छोड़ सकते हैं। किसान इस बात का ध्यान रखे कि रुपाई के करीब 7 दिन बाद ही मछलियां छोड़े। साथ ही खेत में पानी का स्तर बनाए रखे। धान के खेत में करीब 6 इंच या इससे ज्यादा पानी रखे। पानी का स्तर 9 इंच भी रख सकते हैं। इस तकनीक से मिलने वाले लाभ: मिट्टी की सेहत अच्छी रहती है, फसल का उत्पादन बढ़ता है, प्रति यूनिट एरिया पर कमाई अच्छी होती है, उत्पादन में खर्च कम होता है, फार्म इनपुट की कम जरूरत पड़ती है, किसानों की आमदनी बढ़ती है, उर्वरक पर कम खर्च होता है। इस तरह किसान उतनी ही भूमि में कम संसाधन में एक ही समय में दोगुना लाभ कमा सकते हैं।
1: तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए जानें।
2: एचएस और बीक्यू टीकाकरण के 10 से 15 दिन पहले सभी पशुओं की डीवॉर्मिंग कर देनी चाहिए। ऐसा करने से टीकाकरण प्रभावी हो जाता है। पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 20 ग्राम नमक प्रतिदिन देना चाहिए। गर्मियों के मौसम में लगाई गई ज्वार फसल पशुओं को ना दें, इस समय ये हानिकारक हो सकता है। बरसात के मौसम में हरे चारे की अच्छी पैदावार लेने के लिए ज्वार व मक्का की बुआई करें। हरे चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करें। जून का महीना काफी गर्म रहता है, इसीलिए पशु के लिए अलग से शेड बनाएं। इस समय पशु को ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं। अधिक दूध देने वाले पशुओं को तरल कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा 70 से 100 ग्राम प्रतिदिन दें। पशुओं को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह पर दवा का प्रयोग नियमित रूप से करें। यदि पिछले माह भेड़ के ऊन कतरने का कार्य ना किया हो तो इस माह कर ले। आज किसान कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और अपनी सीमित क्षमताओं को उम्मीदों के पंख लगाकर सफलता की नई कहानी गढ़ रहे हैं। आज हम ऐसे ही किसान से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। उनके ये प्रयास और उनसे मिली सफलता बाकी किसानों को भी नया करने की प्रेरणा दे रही है। लहलहाते खेतों के बीच चहलकदमी करते ये है किसान परमजीत सिंह, जिन्हें इनकी मेहनत और अलग खेती करने के लिए जाना जाता है। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन्होंने संघर्ष का लंबा दौर जिया है। वो बताते हैं कि पहले उनके परिवार में पारंपरिक खेती ही हुआ करती थी, जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। परमजीत बताते हैं कि जब वो 14 साल के थे तभी से खेती किसानी में अपनी सेवाएं देने लगे थे और बचपन से खेतों में समय गुजारने के कारण परमजीत को खेती से लगाव होने लगा। लेकिन वो खेती में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कम संसाधन में भी अच्छा मुनाफा लिया जा सके। इसके लिए परमजीत ने बदलते वक्त के साथ खेती के तरीकों में भी बदलाव किया और पारंपरिक खेती के स्थान पर सब्जियों की खेती व बागवानी करने लगे।
3: क्योंकि सर जो पुराना समय है, जो ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, खेती तो हम करते थे लेकिन जो रवायती फसल है उसमें इतना मुनाफा भी नहीं हो पाता था। बड़ी मंदे हालात थे उस टाइम के, तो उस समय हमने बड़ा स्ट्रगल भी किया है लाइफ में। उसके साथ साथ खेती भी करते थे लेकिन उस समय ऐसे हालात थे कि हम एक जैसे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, 2.5 किलोमीटर हमारा स्कूल दूर था जी, तो हम सोचते थे कि अगर साइकिल मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, उस पे जाके जल्दी आ सकते हैं। लेकिन हालात ऐसे थे, वो भी नहीं था किस्मत में। तो खेती करते करते जो नया रेगुलेशन आया है उसके चलते फिर हमने भी खेती को चेंज किया और नई तकनीक से खेती करने लगे। उसमें सब्जी भी लगाई है, पहले बहुत गोभी वगैरह आलू की हम खेती करते थे, तो जब से फिर हमने खेती का काम पूरे अपने काम उससे किया है तो फिर इसको चेंज किया है और नई नई तकनीक से हमने खेती की है, हर तरह की मशीनरी का हमने प्रयोग किया है।
2: समय बीतता गया, नफा नुकसान लगा रहा, लेकिन उनकी मेहनत तब ज्यादा रंग लाई जब उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती करनी शुरू की। हालांकि शुरू में एक छोटे से हिस्से में स्ट्रॉबेरी की खेती की, लेकिन इससे जो मुनाफा मिला उसने परमजीत के लिए सफलता के नए द्वार खोल दिए। आज परमजीत करीब 10 एकड़ खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की अलग अलग किस्में लगा रहे हैं। उन्होंने अपनी इस नई फसल के लिए कैसे बाजार तैयार किया और कैसे आया उन्हें ये आइडिया, आइए जानते हैं उन्हीं से।
3: और ये हमारी एक हिमाचल में मूंगफली बहन है,

0: जिसने हमें प्रेरित किया है ये स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग के लिए, जिससे मेरी पूरी लाइफ है। जो पिछले 5 साल से मैं स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करता आ रहा हूँ, मैंने दो जो एक एकड़ होती है उसमें से चौथा हिस्सा हमने पहले लगाया था, तो धीरे धीरे करते करते पिछले साल हमारी 5 से 6 एकड़ थी, तो इस बार हमने 10 से 11 एकड़ हमारी जो स्ट्रॉबेरी की काश्त है वो हम कर रहे हैं। पहले पहले तो लगाई हमने, स्ट्रगल भी किया है। मैं खुद जो किसान मंडियां लगती हैं चंडीगढ़ में, 15 सेक्टर में है, 46 में है, 43 में है, 34 में है, मैं उनमें बैठ के किसान मंडियों में इसको सेल करता था, जिसमें पहले पहले मेरे को मार्केटिंग की समस्या के कारण मेरे को ये भी करना पड़ा है। उसमें मेरे को बहुत फायदा मिला है, क्योंकि जैसे जैसे पता भी चला है कि इसको कैसे सेल करना है, कहाँ बेचना है, तो उसमें मैंने इसका जैम भी बनाया है जी, स्ट्रॉबेरी का, और लड्डू और बर्फी भी बना के सेल किए हैं, और हम स्ट्रॉबेरी भी लूज जैसे खुली सेल करते थे।
1: स्ट्रॉबेरी भारत की जलवायु में ठीक से तालमेल बिठा सके, इसके लिए स्थान के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। परमजीत जी किन किस्मों को लगाते हैं, आइए जान लेते हैं।
0: हम हिमाचल से जो पुराना पौधा है उससे पौधा तैयार होता था, वो लगाते थे, उसकी प्रोडक्शन में बड़ी दिक्कत आती थी और कम भी रहती थी, तो धीरे धीरे हमें भी जैसे जैसे काम करते आ रहे हैं तो पता चलता आ रहा है, तो फिर हमने जो इसका वैसे ये बाहर की वैरायटीज है, बाहर की फार्मिंग है, और इसका जो पौधा है वो भी कैलिफोर्निया, अमेरिका से और इटली वगैरह से आता है, जो हम वहां से मंगवाते हैं। पूना की एजेंसियां हैं 2-3, एक प्लांट पैराडाइज है, जैन ट्रेडर्स वाले हैं, प्योर हैं 2-3, वो बाहर से मंगवाते हैं मदर प्लांट, तो मदर प्लांट उनसे लेके 70 रुपए प्रति प्लांट के हिसाब से हमें वो मदर प्लांट मिलता है, उसको हम प्लांटेशन करवाते हैं हिमाचल में। टोटल इसकी जो पूरे संसार में वैरायटीज हैं वो तो 7 और 8 के करीब हैं। जो इंडिया में कामयाब वैरायटी हैं वो है कैमरोज है जी, और एसए है जी, जो अर्ली वैरायटी है नई है, और विंटर डॉन और विंटर स्टार। डिमांड सभी की एक है, लेकिन मार्केट में भाव तकरीबन 10-20 रुपए का 2 किलो का डब्बा रहता है, उसमें 8 डिब्बी छोटी रहती है, 10-20 रुपए का फर्क रहता है, लेकिन उसकी स्टोरेज क्षमता है जो विंटर डॉन और विंटर स्टार बहुत ज्यादा कम है। जो कैमरोज है या ऐसे है, उसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तकरीबन 1 से लेके 5-6 दिन तक रहती है।
1: परमजीत जी आज जिस मुकाम पर है वहाँ बागवानी विभाग का काफी सहयोग रहा है। वो बताते हैं कि कृषि विशेषज्ञों ने हर कदम पर साथ दिया, वहीं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी मदद की। आज आलम ये है कि परमजीत सिंह का उदाहरण देकर बागवानी विभाग काफी किसानों को भी आगे बढ़ने में सहायता कर रहा है।
0: जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ का ब्लॉक का, उसमें HDO है युवराज भारद्वाज, उसने हमें इतना मोटिवेट किया है, उसने हमें बताया कि आप ये खेती करो, आपको इसमें ये मुनाफा है, तो इसमें आपको ये सब्सिडी मिलेगी, कि वो आगे जो 4-5 और मेरे गांव के लड़के हैं वो भी जैसे मशरूम वगैरह या स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करना चाहते हैं, उनकी हेल्प के लिए भी जुटे हुए हैं। बढ़िया है जी, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स हमें बढ़िया मिला है।
2: 5 साल से जैसे मैं इनको देख रहा हूँ, इन्होंने 1 एकड़ से हाफ एकड़ से स्टार्ट किया था काम, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आई, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है मार्केटिंग की आई दिक्कत, उसके बाद लेबर की बहुत प्रॉब्लम आई, ये इनकी फैमिली का और इनके जो गांव का वो सारा कोऑपरेटिव सिस्टम रहा, उनका साथ रहा है, उसकी वजह से जो ये हैं आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। आज इन्होंने 10.5 एकड़ लगाई हुई है, लास्ट टाइम जो इन्होंने 4.5 एकड़ लगाई थी, उन्होंने बोला इनका टारगेट जो है 25 एकड़ तक लगाने का ये स्ट्रॉबेरी का है। 2015 से मैं इनके टच में आया हूँ, तब से मैं लेके आज तक इनको तो हमारा हॉर्टिकल्चर का एक्टिविटीज हैं वो सारी इनको बुलाते हैं, जैसे कैंप लगाते हैं इनके गांव में, जैसे ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और गांव के जो फार्मर्स हैं उनको इस हॉर्टिकल्चर के लिए डाइवर्सिफिकेशन में, एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए ये उनको उत्साहित कर रहे हैं इस टाइम, और हमारे साथ हर साल 1-2 फार्मर इनकी वजह से हमारे साथ जुड़ते आ रहे हैं।
1: आज परमजीत सिंह जी ने अपने कृषि के दायरे को आगे बढ़ाते हुए करीब 25 लोगों को भी रोजगार दे रखा है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। वो ठंड के मौसम में स्ट्रॉबेरी तो बाकी सीजन में अंतर फसलें लगाकर मुनाफा कमा रहे हैं, जिसमें परिवार का हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। हो भी क्यों ना, इसी खेती ने आज इनके कई सपने साकार कर दिए हैं।
3: रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अभी आप सुन रहे थे इस रेडियो रिपोर्ट को और जाना कि किस तरीके से हम अमरूद की बागवानी किस तरीके से कर सकते हैं, साथ में पशुपालन किस तरीके से कर सकते हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, धान की बुवाई हम कैसे कर सकते हैं, सफल किसान की कहानी को भी जाना कि किस तरीके से हमारे पंजाब के किसान ने स्ट्रॉबेरी करके अपनी आय में वृद्धि की है। तो ऐसी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ तीन ही खेती में फसलें उगाई जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें देखना होगा कि हमारे मिट्टी में कौन तत्व, किस तत्वों की कमी है, उस तत्वों को हम पूर कर हम किसी भी फसल को हम लगा सकते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यानी विराम लेते हैं, इसके बाद हम छत पर बागवानी करने के तरीके किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से सावधानी हमें बरतनी चाहिए, उस विषय पर हमारे विषय विशेषज्ञ की सलाह हम जान लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम। आपका रेडियो अपनी बात है।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और अब हमारे किसान साथी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मध्यम गति से ये बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग क्या कहता है इस पर आज नजर डालेंगे। साथ साथ में साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज हम काफी विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं, जैसे कि कपास की खेती। चूंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो यहाँ पर कपास की खेती का विशेष ध्यान दिया जाता है, किसान विशेष तौर पर इस खेती को करते हैं। कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे इसको करना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ में मधुमक्खी पालन एक अच्छा व्यवसाय है तो हमारे किसान साथी इसको भी, मधुमक्खी पालन भी हमारे किसान साथी कर सकते हैं। साथ साथ में सफल किसान की कहानी पर भी हम एक नजर डालेंगे। लेकिन इन बातों से पहले हम साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि भारत का मौसम विभाग इस बार का क्या कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जिसकी उत्तरी सीमा पोरबंदर, बड़ौदा, शिवपुरी, रीवा, चक्र से होकर गरज रही है और प्रदेश के चंबल संभाग के जिले तथा ग्वालियर, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, आगरा जिलों को छोड़कर प्रदेश के शेष जिलों में आ चुका है मानसून। आज अगर बात करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर रीवा, इंदौर एवं चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े अगर देखा जाए तो छपारा, गोहरगंज, नागदा, पचौर और परसवाड़ा, अनूपपुर, बहोरीबंद, देवेंद्र नगर, गुलाबगंज, रायसेन, खाच रोड और नर्मदापुरम में 5 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान ग्वालियर संभाग के जिलों में काफी गिरे और शेष संभागों में जिलों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्वालियर संभागों के जिलों के सामान से विशेष रूप से कम है और सागर संभागों के जिलों में सामान्यता काफी कम, इंदौर और उज्जैन संभागों में सामान्य, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में सामान्य से कम और शेष संभागों में जिलों में सामान्य वर्षा हो रही है। आपको बता देना चाहते हैं कहां पर किस तरीके की वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है, मौसम विभाग क्या कहता है। वर्षा या गरज चमक के साथ बौछार किन किन स्थानों पर होनी है। रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिलों में संभावित है। आगामी 24 घंटों में भारी और मध्यम वर्षा कहां कहां होने वाली है। कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई जा रही है, जहां पर डिंडोरी आएगा, बैतूल, बालाघाट, राजगढ़, रायसेन, धार, उज्जैन, अनूपपुर, मंडला एवं सिवनी जिलों में, और कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के अल्पकालीन तेज हवा की संभावना, उसमें रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभागों के जिले इसमें आते हैं। तो ये थी हमारे जानकारी जो अभी आप सुन रहे थे मौसम की। अगर झाबुआ जिले की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का जो रहा है वो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा है, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। वर्षा अभी तक नहीं हुई है, बहुत कम हुई है। 1 जून से अभी तक जो वर्षा कुल आंकी गई है वो 15.9 मिलीमीटर आंकी गई है। तो ये मौसम आधारित जानकारी आपको हम दे रहे थे क्योंकि इस आधार से हमारे किसान साथी चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें फसलों का चयन करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम में जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी कपास की खेती कर सकते हैं। साथ साथ में जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान साथी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो आइए इस रेडियो रिपोर्ट को हम सुनते हैं। बने रहिए आपके अर्जे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आप लो रेडियो अपनी बात है।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम, आप लो रेडियो अपनी बातें।
3: किसानी में हम आपको बताएंगे कपास की खेती।

0: बारे में। जी हाँ, कपास की अगर हम बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से इसका काफी महत्व है और इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। लेकिन कई तरह की बातें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि कपास की अच्छी पैदावार हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
1: कपास नकदी फसल है जो हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं, जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती हैं। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुवाई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश शुरू होने पर ही कपास की बुवाई करें। बुवाई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत जातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज जबकि संकर व बीटी जातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुआई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल के सही विकास और बेहतर उत्पादन के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश, करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नत्रजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश, 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है। साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत जातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी फरवरी तक, संकर जातियों की अक्टूबर नवंबर से दिसंबर जनवरी तक, बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखें कि चुनाई ओस सूखने के बाद ही करें, गीले घेटों की चुनाई ना करें। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां, डंठल ना आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है।
0: ये हमारा पशुधन पर, पशुधन में आज हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। जी हाँ, सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है और आज के समय में युवाओं के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। खास बात यह है कि मधुमक्खी पालन से न सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि होती है बल्कि साथ ही साथ उनकी फसलों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो कैसे करें मधुमक्खी पालन और कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रखना जरूरी है, आइए डालते हैं नजर।
1: हमारे देश में मधुमक्खी पालन के कई फायदे हैं। इससे जहां परागण में सहायता मिलती है वहीं अतिरिक्त आय भी होती है। हाल के कुछ वर्षों में मधुमक्खी पालन में खासी दिलचस्पी बढ़ी है जिससे भूमिहीन किसानों के सामने रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। मुनाफे की ओर ले जाने वाले इस व्यवसाय में मधुमक्खी पालकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लाभ के साथ साथ मधुमक्खी का भी ख्याल रखें जिससे उनकी घटती संख्या में कमी लाई जा सके। मौजूदा समय में तापमान में हो रही बढ़ोतरी के साथ कुछ खास प्रबंधन करने होते हैं जिससे मधुमक्खियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। तो इस समय कौन से हैं वो खास बिंदु, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की राय।
2: गर्मियों का मौसम है, मधुमक्खी पालक के लिए जरूरी है कि कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखे ताकि मधुमक्खी पालक अच्छे से मधुमक्खियों का देखभाल कर सके तो अच्छे से उनको लाभ मिल सके। सबसे जरूरी है क्योंकि गर्मी का समय है, इस समय जो तापमान है वो 40 के ऊपर है, तो इसलिए जरूरी है कि मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खियां हैं उनको ऐसे स्थान पर